सुप्रभात। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 25 तारीख, तदनुसार 16 सितंबर वर्ष 2026। इस समय प्रातः के 5:58:36 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। आप सभी सुनने वालों का दिन शुभ हो, हार्दिक स्वागत।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही क्षणों में प्रातः के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

श्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रखा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर

0: देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इससे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता है, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए विविध भारती मुंबई से सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज का चिंतन वंदनवा।

俊等。परमात्मा का वास सभी इंसानों में है, लेकिन सभी इंसानों में परमात्मा का भाव भी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से दुखी है। ये कथन श्री रामकृष्ण परमहंस का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है झरोखा, हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता होगा 6:45 पर। पुराने फिल्मी गीत सुनिए भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में 7:00। कार्यक्रम हम है राही प्यार के होगा 7:30 पर। कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिए पहले 8:15 पर और फिर दिन में 2:00। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक होगा पहले 8:30 पर और फिर रात 8:15 पर। जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम आज का अखबार पेश किया जाएगा 9:30 पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुनेंगे 10:05 पर। आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना। आज दिन में 11:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुर बहार यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 12:05 पर। प्रादेशिक हिंदी समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर और प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 1:10 पर। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। सुरीला सफर इस कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे 1:30 पर। दिन में 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3:00। 4:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आज के मेहमान। आज साहित्यकार एवं लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से सुनिए ममता सिंह की बातचीत। पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:10 पर यह समय रहेगा प्रादेशिक हिंदी समाचारों का। आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से 1:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार।

0: पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, 7:47 पर और सुर सांझ कार्यक्रम में 10:32 पर। 7 बजे लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम जयमाला। कार्यक्रम हवा महल होगा रात 8 बजे। आज सुनिए नाटिका पर्दा फाश। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित रहेगा संगीतकार राम लक्ष्मण पर। कार्यक्रम छाया गीत का प्रसारण समय रहेगा रात 10 बजे और सुर सांझ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 10:32 पर। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस की अगली कड़ी। ये कार्यक्रम हम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आइए सुनवाते हैं।

हे राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूँ। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहाँ से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है, उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े, उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

0: आज से हम संगीत श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर सौदाहरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आज हम आपको ख्याल के बारे में बताएंगे। ख्याल का अर्थ है चिंतन, ध्यान। योगी, ज्ञानी, ध्यानी उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो पहले उस आकार को मन मस्तिष्क में बैठा कर फिर चिंतन करते हैं, क्योंकि केवल मेडिटेशन करना कोरी कल्पना है। पहले इमेज बनाकर फिर इमेजिनेशन करने के बाद मेडिटेशन करने की प्रणाली है। यही ख्याल प्रणाली अर्थात चिंतन प्रणाली का स्वरूप है। राग के स्वरूप की आउटलाइन बनाकर बढ़त करते हुए राग रंग भर के उस आकार को साकार करना ही राग को साकार करना है। इस प्रकार चिंतन से चयन करके स्वरों के द्वारा चयनदारी उत्पन्न करना ही ख्याल है। स्वर साधना ईश्वर की वह आराधना उपासना है जिससे वासना दूर होती है। तो प्रस्तुत है मेरी स्वरचित बंदिश राग जनसम्मोहिनी में।

ख्याल गायन में हारमोनियस सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। एक एक स्वर की क्रमबद्ध बढ़त करने से माधुर्य उत्पन्न होता है। एक एक स्वर का स्वाद लेना चाहिए, उसका लुत्फ उठाना चाहिए। गायन में बेतरतीब भी नहीं होनी चाहिए। क्रम व राग की प्रकृति, चलन एवं उसके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। गायन में उद्दंडता या व्यतिक्रम होने पर चिंतन अर्थात ख्याल बेख्याल होने लगता है। जिस प्रकार प्रत्येक नागरिक को नागरिकता के नियमों का बोध होना व पालन करना जरूरी है, उसी प्रकार शास्त्रीय गायन की दुनिया में सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। बढ़ी हुई लय में ख्याल गायन में दो आवृत्ति में बंदिश पूरी करनी होती है, किंतु इस गायकी की विशेषता यह है कि विलंबित लय में एक ही बार में पूरी रचना और राग का सौंदर्य मुखरित होने लगता है। तो सुनिए राग नटभैरव में यह बंदिश जो झूमरा ताल में निबद्ध है।

ख्याल विलंबित लय, मध्य लय तथा द्रुत लय में गाए जाते हैं। विलंबित में झूमरा, एक ताल, आड़ा चौताल, तिलवाड़ा, तीन ताल, रूपक ताल आदि आदि तालों में गाए जाते हैं। मध्य लय एवं द्रुत लय में तीन ताल, एक ताल, आड़ा चौताल, रूपक, सूल ताल, झपताल आदि तालों में प्रायः गाए जाते हैं। किंतु इंदौर घराने के संस्थापक उस्ताद आमिर खां विलंबित ख्याल प्रायः झूमरा ताल में ही गाते थे। यही क्रम स्वर्गीय उस्ताद बहरे अब्दुल वहीद खान साहब का आमिर खान से पूर्व रहा। तो सुनिए राग दरबारी की यह बंदिश, जिसमें एक ढंग अपना ही रंग लिए हुए है।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में आज आपने इस श्रृंखला की पहली कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर इनका साथ दिया था पुरुषोत्तम वालावलकर ने। तबले पर संगत की थी ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांग

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीबी को।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गणपति बप्पा।
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं बड़ी बहन इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और प्रेम लता ने। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, हुस्नलाल भगतराम का संगीत।

रमेश शास्त्री का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, जिसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था बरसात।

अभी आपने ही सुना चांदनी रात फिल्म का गीत अमीर बाई कर्नाटकी और सादत की आवाजों में, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म आन से, आवाज मोहम्मद रफी की। शकील बदायूनी ने इसे लिखा है और धुन बनाई है नौशाद ने।

0: बाय।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
0: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
0: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, तलत महमूद ने इसे स्वर दिया है, फिल्म का नाम दाग।

हसरत जयपुरी और शैलेंद्र का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने। मुकेश ने इसे गाया है, फिल्म का नाम दीवाना।

0: मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए सुनते हैं ये गीत, सबसे पहले मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम सावन भादो, इसे लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीतबद्ध किया है सोनिक ओमी ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सच्चाई फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: परदेसी फिल्म का गीत अब सुने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू ने इसे शब्दबद्ध किया है, धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का गाया ये गीत। फिल्म का नाम अप्रैल फूल। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
4: मस्ताना फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में. आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.
5: जब जब हम तुमको देखे हैं रिठेला मन

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है और सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, आज समय की कमी के चलते इस गीत का सिर्फ मुखड़ा हम आपको सुनवा पा रहे हैं। किसी दिन ये पूरा गीत आपको सुनवाया जाएगा किसी और कार्यक्रम में। फिलहाल हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है।

0: रिपोर्ट।
1: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रा

0: कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
4: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
5: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
6: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर

0: सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। विविध भारती मुंबई से आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी में आपका स्वागत है। हम सूर्य को अक्सर एक पिता की उपाधि देते हैं जो अपने बच्चों के जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए लगातार जलकर इस धरती को प्रकाशमान और जीवित रखता है। किंतु सूरज की इन जीवनदायी किरणों में कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी शामिल हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिता के प्यार के साथ उनका गुस्सा। और उस समय याद आती है माँ। यहाँ सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने के लिए एक माँ की तरह हमारी ढाल बनती हैं ओजोन परत, जो इन पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुँचने ही नहीं देती और हमारी रक्षा करती हैं।

0: में कभी।
1: ओजोन की ये परत तो हमारी रक्षा करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफार्म जैसी कई खतरनाक रसायनों के लगातार प्रयोग से हमने इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है और ये पतली हो गई है, जिसे ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहा गया। इसका नुकसान ये हुआ कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचने लगी हैं और त्वचा के कैंसर, असमय मोतियाबिंद, कमजोर होती इम्यूनिटी के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन देर से ही सही, हमने ओजोन परत के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि हमें इसका महत्व समझ आ चुका है।

ओजोन परत के संरक्षण की ओर जागरूकता का परिणाम ये हुआ कि अब ओजोन होल कुछ हद तक बंद होने लगा है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव भी कम होने लगे हैं। इस जागरूकता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयासों से अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे पुराने फ्रिज एयर कंडीशन की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहें, उपयोग न होने पर एसी न चलाएं, हानिकारक रसायनों वाले हेयर स्प्रे और अन्य पदार्थों का प्रयोग न करें, पुराने उपकरणों को रिसाइकल के लिए दें, यूं ही ना फेंकें, वाहन का इस्तेमाल तभी करें जब अति आवश्यक हो, अन्यथा सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, CFC मुक्त उपकरणों को ही खरीदें। इस तरह ओजोन परत के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं ताकि प्रकृति से मिले अनमोल उपहारों का केवल लाभ ही ना उठाएं बल्कि इनके महत्व को भी बनाए रखें, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं।

तो प्रकृति के उपहारों का लाभ उठाने के साथ साथ कीजिए उनका संरक्षण भी, ताकि बनी रहे जिंदगी। इस संदेश के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। अम्बिका
4: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम चित्रलोक होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए कुछ पलों का इंतजार।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर

0: की शुभकामनाएं।
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
0: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: आइए अब सुनते हैं चित्रलोक।

ये फिल्म, ये गीत अभी आपने सुना बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म से ये थी गणेश वंदना गणेश आरती। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। साथियों, आज हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार कवि और लेखक प्रसून जोशी का जन्मदिन है। उनके गीतों में प्रेम रिश्ते सपने और देश के प्रति भावनाएं बेहद सहज अंदाज में दिखाई देती हैं। उन्हें अपने गीतों के लिए 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार भी मिल चुका है। साल 2015 में उन्हें कला साहित्य और विज्ञापन के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
4: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन। इस फिल्म का गीत नेहा भसीन की आवाज में, इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, सोहेल सेन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज इंटरनेशनल डे फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर साउथ है, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस। इस अवसर पर विकासशील देशों के बीच विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञान, शोध, तकनीकी अनुभव और नवाचारों को साझा करना है, ताकि दक्षिणी देशों की विकास क्षमता मजबूत हो। ये दिवस वैज्ञानिक प्रगति के लाभों को समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक था टाइगर फिल्म का गीत। तरन्नुम मलिक की आवाज में साथ दिया है मोहित चौहान ने। कौसर मुनीर ने इसे लिखा है सोहेल सेन का संगीत।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस समय वक्त है एक ब्रेक का।
1: अरोड़ा प्लाईवुड
2: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
1: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
3: मैं टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तां फिर यार मार वाली।

साथियों, आज इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी भी है, यानी कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हृदय स्वास्थ्य और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ये अवसर है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एक एंजियोलॉजी स्वास्थ्य में सुधार करती है, जीवन

0: 1977 को की गई थी। सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी, के नीति मोहन और बप्पी लाहिड़ी की आवाजों में गुंडे फिल्म का गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, सोहेल सेन का संगीत।

श्रोताओं, एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम के बारे में आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब सुनिए एक सूचना। एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा आर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है, किसी शंका का समाधान चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: बैंग बैंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना हर्षदीप कौर और बैनी दयाल की आवाजों में। अन्विता दत्त ने इसे लिखा था और विशाल शेखर का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: AR रहमान के संगीत निर्देशन में सुनिए इरशाद कामिल का लिखा ये गीत। अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने इसे स्वर दिए हैं और फिल्म का नाम है तमाशा।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ABCD फिल्म का गीत हार्डकोर की आवाज में। मयूर पुरी ने इसे लिखा है, सागर जिगर का संगीत।
1: Let's go!

0: एबीसीडी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: मैं तो टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
3: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
6: आज का अखबार।
1: नमस्कार दोस्तों, आज का अखबार कार्यक्रम में आज मैं रहूंगी आपके संग, आपकी रेडियो संगनी बबिता कपूर अपनी साथी
7: नानी सिंह के साथ। नमस्कार दोस्तों।
1: तो नानी, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और करते हैं बात की 16 सितंबर में क्या है खास। तो दोस्तों, आज हम मना रहे हैं विश्व ओजोन दिवस।

वर्ल्ड ओजोन डे 2026। ओजोन लेयर वो परत जो जीवन की एक नाजुक ढाल सी है जो हमें और हमारी धरती को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है और पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करती है। ये अदृश्य ढाल यूवीबी को अवशोषित करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिनकी वजह से कई घातक बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, जीवन के लिए ऑक्सीजन जिस तरह जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है ओजोन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और उद्देश्य रहा पृथ्वी की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना और ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। एसी, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, डिओड्रेंट से निकलने वाली गैसेस, गैजेट्स का अत्यधिक इस्तेमाल और बढ़ता पॉल्यूशन, ये सभी नुकसानदायक हैं ओजोन के लिए। तो ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट सेलिब्रेटिंग 10 इयर्स ऑफ सस्टेनेबल कूलिंग अंडर द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस थीम के साथ आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे। दोस्तों, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और तभी हमारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी। अब दिल की बात की है तो आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, यानी कि हृदय संबंधी रोगों की जटिलताओं, आधुनिक तकनीकों, रोकथाम, देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाता है आज का ये दिन। तो दोस्तों, अपने दिल की माने, अपने दिल की सुने भी, लेकिन उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखें, क्योंकि दिल तो बच्चा है लेकिन आप तो समझदार हैं, है ना।

0: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दीआं दिलो वधाईआं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब समय है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचारों का। यूपीआई में व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन पर किसी राशि की कोई सीमा या शुल्क नहीं, वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट। एमडीआर केवल 2,000 रुपए से अधिक के विशिष्ट व्यापारी लेन देन पर लागू। एमडीआर ना तो है कर और ना ही है सरकार या एनपीसीआई द्वारा वसूला जाने वाला प्रभार। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की समग्र श्रम बल सहभागिता दर LFPR इस वर्ष अगस्त में बढ़कर हुई 55.6%। जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया जल संचय जन भागीदारी अभियान का गान। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की संगीतमय आवाज शंकर महादेवन की। एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में RSS तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई की किताब का हुआ विमोचन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में RSS के योगदान की दस्तावेज है ये किताब। नेपाल त्रासदी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 पहुंची। खोज और बचाव अभियान जारी। अब भी 5,000 लोग लापता। 25 शिविरों में 2,500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ित। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामले सीधे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के पोर्टल पर रिपोर्ट करेगी फेसबुक इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा। सत्रह साल बाद मीनाक्षी अम्मन मंदिर में 17 सितंबर को होगा महाकुंभ अभिषेक। 5 टन फूलों से सजा मंदिर। सुरक्षा यातायात भीड़ प्रबंधन के किए गए विशेष इंतजाम। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड में शुरू। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत बनाना। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में जारी की चेतावनी। कनाडा से अपराधों से जुड़े भारतीय समेत 111 विदेशी नागरिक डिपोर्ट। लॉरेंस गैंग का भारतीय एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। अब कुछ खेल समाचार। दूसरा T20 भारत ने अफगानिस्तान को लगातार 10वीं बार हराया। 800 प्लस रेटिंग वाली पहली भारतीय बॉलर बनी चरणी। अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग दूसरे नंबर पर दीप्ति शर्मा। तो श्रोताओ, ये तो थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के साथ कुछ खेल समाचार। यहाँ लेंगे एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद एक गीत।
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार, वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV

0: असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ। बाहर क्यों बैठे थे, रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी ले डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वालों जनहित विच जारी।
1: कार्यक्रम आज का अखबार में क्षेत्रीय समाचारों के साथ अब मैं नानी सिंह।

पटियाला में भारत का पहला एआई इंजन तैयार। पक्षियों के घोंसलों से लेकर टूटी तारों तक हर खतरे को पल भर में भांपेगा एआई पावर्ड लोको। पीजीआई की गाइडेंस पर राजेंद्र अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट सफल। 79 साल में हुआ ये पहली बार। जीरकपुर से संचालित 70 करोड़ से अधिक नकली सिक्कों के बड़े नेटवर्क का सहारनपुर पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना, पंजाब को नशा मुक्त बनाने तक चैन से नहीं बैठेगी सरकार। पंजाब में नशे की सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ने का आदेश। उल्लास परीक्षा में 7,000 लर्नर्स को शामिल कराने के लिए अंबाला में शिक्षा विभाग ने तैयार की माइक्रो प्लानिंग। यमुना बेसिन में पानी की उपलब्धता बढ़ाने वाली किशाओ परियोजना अब आगे बढ़ेगी। हरियाणा और हिमाचल समेत 6 राज्यों में समझौता। इस बार हिमाचल के चंबा जिले में पिछले साल की तबाही के खौफ के कारण भीड़ 75% घटी। मणिमहेश यात्रा के 4 दिन बाकी, अब तक सिर्फ 50,000 श्रद्धालु पहुंचे। हिंदी दिवस के अवसर पर हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने हिंदी दिवस पर साहित्यकार प्रकाश पंडित के योगदान को किया याद। देवनागरी में उर्दू साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में निभाई अहम भूमिका। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में महत्वपूर्ण संकेत आया सामने। मांसपेशी कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं मच्छर भगाने वाले रसायन। तो आज का अखबार कार्यक्रम में ये थे क्षेत्रीय समाचार।

आज का अखबार कार्यक्रम में हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं और एक जानकारी एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम के बारे में। तो दोस्तों, आज बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़, और विषय रहेगा आर्थराइटिस यानी गठिया रोग। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। आप पूछिए कोई भी सवाल, किसी शंका का समाधान या अधिक जानकारी। कार्यक्रम आज का अखबार में अब कुछ स्थानीय समाचार, ट्राइसिटी से जुड़ी कुछ खबरें, तो चलिए चलते हैं शहर की ओर। शहर का मौसम बदलेगा करवट। अगले 24 से 48 घंटों के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, पैचेस में होगी बारिश। करीब 1.5 दशक तक पुलिस के लिए पहेली बने सीरियल किलर मोनू कुमार को चंडीगढ़ जिला अदालत ने दुष्कर्म कर 3 हत्याओं के मामले में सुनाई उम्र कैद की सजा। मंगलवार के शक्ति प्रदर्शन की कीमत में 4 घंटे जाम में फंसा रहा आधा शहर। एक तरफ प्रोटेस्ट करते नेता, दूसरी तरफ उनकी कारें और जाम में फंसी पब्लिक। पीजीआई में इंजीनियर्स डे पर पीजीआई इंजीनियर्स एसोसिएशन चंडीगढ़ की ओर से लगाया गया 5वां रक्तदान शिविर। पीजीआई के डायरेक्टर सहित 400 डोनर्स ने किया रक्तदान। जैन समाज का 10 दिवसीय दशलक्षण पर्व आज से शुरू। जैन मंदिरों में गूंजेंगे धार्मिक अनुष्ठान। 23 सितंबर को विश्व पंजाबी दिवस 2026 का पंजाब कला भवन सेक्टर 16 में होगा आयोजन। चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के पे फिक्सेशन और पेंशन प्रोसेस को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए उठाया कदम। सर्विस में ही दूर होंगी खामियां, रिटायरमेंट पर नहीं होगी परेशानी। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बैठक आज, नीड बेस्ड चेंज, रूफटॉप सोलर, लिफ्ट और बकाया भुगतान अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। दशहरे पर मचेगी धूम। 221 फीट ऊंचे रावण का पुतला 80% तैयार। 18 रिमोट कंट्रोल वाले ब्लास्टिंग पॉइंट और 2000 आतिशबाजी। सेक्टर 5 पंचकुला स्थित शालीमार ग्राउंड बनेगा आकर्षण का केंद्र। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने मंगलवार को मनाया 80वां स्थापना दिवस, वीरों को किया नमन।

0: शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हुआ गणेश महोत्सव सांस्कृतिक आयोजनों का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ खबरें शहर से। यहाँ लेंगे अंतराल और फिर एक गीत।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए

0: विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: तो दोस्तों ये तो था कार्यक्रम आज का अखबार। दोस्तों आज है बुधवार और हम हाजिर होंगे लेकर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ 10:05 पर। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना, इस विषय पर होगी बात। आप सभी शाद रहें, आबाद रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आपकी रेडियो संगनी बबीता कपूर अपनी साथी
1: नानी सिंह के साथ
0: कार्यक्रम से लेती है विदा। नमस्कार।
2: आज का अखबार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल ₹2,000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। ₹2,000 से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं ₹75,000 या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने आशा का

0: कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीक क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहा है। इस दौरान श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैक्काल में भी आज स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में अगले 2 दिन में बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं केरलम के एर्नाकुलम, पथनमथिट्टा और इडुकी जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच भी कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
3: गणपति बप्पा
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करती है आपकी रेडियो संगिनी बबीता कपूर। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना, इस विषय के साथ आज हम हाजिर हुए हैं लेकर आज का हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम। दोस्तों कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा व्यवहार भी ठीक वैसा ही है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से साफ झलक जाते हैं। तो चलिए मिलाइए ये नंबर और कर लीजिए हमसे बात आज के इस विषय पर। हमारे नंबर हैं 2660615, 2660617 और 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। और हमारे कुछ कॉलर्स हमसे जुड़ भी चुके हैं, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कर रहा है हमसे बात। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: बबीता कपूर जी, मैं सतपाल सिंह बिंद्रा, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से।
0: सतपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैडम, ये जो कहावत है बहुत सही है, हमारा व्यवहार ही बताता है हम अंदर से कैसे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और जैसे आईना चेहरे को दिखाता है, वैसे ही हमारा वर्ताव हमारे विचारों, संस्कारों और व्यक्तित्व को दुनिया के सामने रख देता है।
0: जी बिल्कुल।
1: जो व्यक्ति शांत होगा, विनम्र होगा और सोच समझकर बोलता है, उसका जीवन भी संतुलित और सम्मानपूर्ण दिखता है, ऐसा मेरा मानना है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे, देखिए जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर भी नज़र आ जाता है, हमारी बोली के जरिए, हमारे व्यवहार, हमारे बर्ताव के जरिए, और यही हमारी देर तलक पहचान बनाए कर रखता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अच्छे से बात करेंगे किसी के साथ तो वो नज़र आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में कि आप अंदर से कैसे इंसान हैं।
1: और एक मैं ऐड करना चाहूँगा
0: जी,
1: जो हम सभी कोई हम में से कोई झूठ बोलता है या गुस्सा या अहंकार से भरा व्यवहार करता है, उसका जीवन भी उसी का प्रतिबिंब बन जाता है, ऐसा मेरा मानना है।
0: जी बिल्कुल, और उसके इर्द गिर्द का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, क्योंकि जो एनर्जी आप रिलीज करते हैं वही एनर्जी आप रिसीव भी करते हैं। अगर आप किसी के साथ गुस्से से पेश आएंगे, अगर आप किसी को कटु वचन या अभद्र वचन या अपशब्द कहेंगे, तो वो लौट कर किसी ना किसी रूप में आप तक जरूर एक ना एक दिन पहुंचेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने कोशिश करें कि अपने व्यवहार को हम संयमित रख के चलें।
1: जी मैडम
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
3: जी मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
2: जी राकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर आप?
3: जी आज के विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका जो विषय है खुशहाल कुशल व्यवहार। जी जी जी
2: जी, तो कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना।
3: जी जी, आपके जीवन का आईना। ठीक ठीक ठीक। तो मैं इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जो हमारा जो कुशल व्यवहार है, जैसे कि हम कई बार हम खुश रहते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे कि हम खुशी का राज जो है होता है जो हम जो है ना कभी झूठ नहीं बोलता। कई बार हम क्या होता है जैसे कि कई बार उदास होते हैं हम क्या करते हैं जैसे कि परिवार के सामने खुश रहने की कोशिश करते हैं, ये होता है। लेकिन हम जो है आदमी का जो है व्यवहार जो है जब पता लगता है कि कोई कितना आदमी खुश है कितना उदास है, इस जो है हमें पता लग जाता है। वो चाहे कितना भी छिपाए, वो चाहे कितना भी अपनी बात छिपाए कि देखो मेरा जो है गम जो है किसी के सामने नहीं आना चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ या ऐसा करती हूँ, तो मैं खुश रहने का मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन खुश रहने की कोशिश में हो उनके जो है हाव भाव जो है सामने आ जाते हैं।
2: देखिए राकेश जी, ये भी एक बहुत ही कुशल व्यवहार का आपने नमूना पेश किया है कि सामने वाला जो है वो आपके हाव भाव से अंदाजा लगा रहा है। तो ये बहुत ही एक व्यवहारिक सा उदाहरण आपने दिया है कि किसी के दिल में अगर उतर कर देखना है तो उसके चेहरे को देखिए, उसकी आंखों को पढ़िए, तो उसके जरिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो हंस रहा है क्या वो वाकई में खुश है या वो सिर्फ एक अभिनय कर रहा है कि मैं खुश हूँ, वो दिखाना चाह रहा है। तो किसी के दूसरे के दुख को, उसकी हंसी के पीछे छिपे हुए दुख को जो है वो देखना, ये भी एक कुशल व्यवहार का ही नमूना है कि हर एक को ऐसा भगवान ने ऐसी देन नहीं दी होती है कि वो किसी के चेहरे या किसी की आंखों को पढ़ सके, लेकिन अगर आप में वो काबिलियत है तो वाकई आप कुशल व्यवहार रखते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे?
3: मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि अभी परसों की बात है, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं है, जैसे मैं आकाशवाणी से जुड़ता हूँ, एक श्रोता थी तो वो उसका हाव भाव सुना, मैं फोन पे पता लगा देता उसकी। लोग सोचते हैं, मुझे पूछते रहते कि आपको पता कैसे चलता कि किसके मन में क्या है, तो मैं उसकी किसी मैं बातों से पता लगा देता कि भी आपको क्या परेशानी है। तो फिर उस परेशानी से मैं

0: मैं घुमा फिरा के पूछता हूँ तो मैं उस परेशानी का हल निकाल तो फिर वो आदमी जो है खुश हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस तरह से करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो तो अपनी अपनी मगन अपने धुन में खुश है, हमें कोई परेशानी नहीं है, वो तो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है, वो खुश रहने का जो है कोशिश करता है।
1: मतलब आप आवाज के पीछे जो है छिपा हुआ दर्द उसको भी पहचानते हैं।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जानकर कि आप कुशल व्यवहार रखते हैं और अपनाते हैं अपने जीवन में, और अपने आसपास के लोगों को भी आप अपने व्यवहार से प्रोत्साहित करते हैं कि किसी दूसरे का दुख भी समझें। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। कार्यक्रम में बात करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना। जी हाँ, ये है हमारे आज के हेलो चंडीगढ़ का विषय। दोस्तों, कुशल व्यवहार सिर्फ मीठा बोलना ही नहीं है, बल्कि सामने वाले की स्थिति को समझना, जिसे कि हम एम्पैथी भी बोलते हैं, और सही समय पर प्रतिक्रिया देना, हर परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना, ये भी कुशल व्यवहार ही है। चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: गुड मॉर्निंग भूमिका जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। जी, कौन बात कर रहा है?
1: मैं शिमला कुफरी से बात कर रही हूँ।
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: किरण।
0: जी किरण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय पर क्या कहेंगे आप?
1: मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें अपना व्यवहार सही ढंग से रखना चाहिए।
0: जी, आप चल रही हैं क्या?
1: जी मैम।
0: हाँ, तो आप कहीं रुक जाइए, क्योंकि जो आपकी आवाज है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है चलने की वजह से। आपके कदमों की जो आवाज है वो भी साथ में सुनाई दे रही है।
1: जी मैम, अब आ रही
0: है? जी जी, अब बोलिए, क्या कह रही थी आप?
1: मैम, हमें अपना व्यवहार शांत रखना चाहिए।
0: जी,
1: क्योंकि मतलब जब हम कभी दुखी होते हैं, मैं अपनी बात ही कहना चाहूंगी मैम।
0: जी,
1: जब मैं दुखी होती हूँ मैम, तो मतलब मेरे हस्बैंड मेरी परेशानियों को समझ जाते हैं।
0: जी,
1: तो मैम मतलब ना उनके सामने मतलब जब हंसने का बहाना भी लगा लेती है किस बार कि नहीं, कुछ नहीं हुआ।
0: जी बिल्कुल, लेकिन वो समझते हैं आपको,
1: क्योंकि अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हमारे हस्बैंड या फैमिली वाले किसी को भी परेशानी है हमारी वजह से।
0: जी,
1: तो मैम मैं उनके सामने तो हंसने की ही कोशिश करते हैं हम।
0: जी, क्योंकि आपकी ये मंशा रहती है किरण जी कि आपकी वजह से उनका जो मूड है वो खराब ना हो, उन्हें दुख ना पहुंचे, इसी वजह से आप ऐसा करती हैं, क्योंकि छिपाना भी एक कला ही है।
1: जी मैम, जैसे कई मतलब मैंने कई चिड़ापन है ना।
0: जी,
1: तो मैम सबसे पहले तो हमें वो सुधारना चाहिए अपना चिड़ापन, उसकी वजह से हमारा मतलब मन जो होता है वो शांत नहीं हो पाता।
0: जी बिल्कुल,
1: उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं।
0: देखिए, अपने आप पर हमें हमेशा ही लगातार ही काम करते रहना है, अपने व्यवहार पर, अपने बर्ताव पर, अपनी वाणी पर। ये एक ऐसी चीज है या एक ऐसी हमारी परिस्थिति है जिस पर कि हम लगातार काम करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी दूसरे को देखकर भी हम लोग सीखते हैं कि वो लोग किस तरीके से बात करते हैं। जी जी,
1: जैसे मतलब हम अपने बच्चों के ऊपर कई बार मतलब चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे डिप्रेशन में आ सकते हैं।
0: जी, डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, और ये जो आपका बर्ताव है वो बच्चे जो हैं कहते हैं कि बच्चे बहुत नकलची होते हैं, नकलची,
1: क्योंकि जो हम खुद अपने व्यवहार से करेंगे, बच्चे वही आगे सीखेंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे।
0: बिल्कुल, अगर बच्चों के सामने आप अच्छे उदाहरण पेश नहीं करेंगे, एक अच्छा उदाहरण आप खुद नहीं बनेंगे, तो बच्चे कभी भी उस अच्छाई को नहीं अपना पाएंगे। घर का जो माहौल है उसको भी सकारात्मक रखना हम सभी की, हमारे जो मतलब जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के सामने एक अच्छे उदाहरण बने। ये बिल्कुल एक जायज़ सी बात है कि हम सभी का मूड कभी ना कभी ख़राब भी होता है, हमें कभी ना कभी गुस्सा भी आता है। ऐसी नहीं है बात कि हम एक बहुत ही आदर्श नागरिक हैं, आदर्श व्यक्ति हैं कि हम हर वक्त ही एक अच्छे मूड में रहेंगे या हम वैसा अभिनय कर पाते हैं। कभी कभार मूड खराब भी होता है, कभी कभार हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन उस गुस्से पर भी नियंत्रण रखना और कहाँ तक और किस लहजे में आपको अपनी बात कहनी है उस पर नियंत्रण रखना आपको बखूबी आना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे आप ही को कॉपी करते हैं। जैसा वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार वो भी करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने, तो उनके सामने हमें भी अच्छा बनना ही होगा। जी किरण जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपका कार्यक्रम में बात करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।

0: अरोड़ा प्लाईवुड
1: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
0: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस

0: विनर्स 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5 अते 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ और हमारा आज का विषय है कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत कामयाबी आपकी बातें शायद ही कोई याद रखे, लेकिन आपने किसी दूसरे को कैसा महसूस करवाया अपने व्यवहार से, ये हमेशा याद रखा जाता है। तो मुस्कुराइए, सम्मान दीजिए और सम्मान पाइए। छोटी सी मुस्कान दिलों के दरवाजे खोलने के लिए काफी है। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
2: बबीता मैम जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सेक्टर 51 से जी।
1: जी सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत
2: बहुत
1: है।
2: अच्छा सब्जेक्ट आज आपका विषय बहुत अच्छा है
1: जी।
2: कुशल व्यवहार जो है ये दूसरों के मन को जीत लेता है, और हम जो अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने बैठे वाला भी प्रसन्न होगा कि मेरी कोई समस्या है तो उसका समाधान करने में मेरी सहायता कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज
1: जी। बिल्कुल आपका अच्छा व्यवहार।
2: दूसरा ये है कि जो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द मैन, ये पता लगाते हैं कि हम कैसे हैं, किससे व्यवहार कैसा करते हैं, हमारी बोलचाल में कैसी मिठास है, ये बहुत जरूरी है जीवन में, तभी हमें सफलता मिल सकेगी मैम।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जो आपका अच्छा व्यवहार है वो आपके व्यक्तिगत, और सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, सिर्फ पारिवारिक ही नहीं, आप जिस वर्क प्लेस पर हैं, आपके प्रोफेशन में, आपके पेशेवर जीवन के लिए भी बहुत ही कारगर जो है वो साबित होता है, बदल सकता है जी। आप जी, रेडियो से थोड़ी दूरी बनाइए सुरेंद्र जी, क्योंकि आवाज जो है वो सुनाई पड़ रही है जी। कुछ और कहना चाहेंगे
2: जी?
1: हाँ जी सुरेंद्र जी, कुछ और विचार, कोई और विचार साझा करना चाहेंगे आप? हेलो।
2: हाँ जी, तो ये है जी, हमें बहुत ही मतलब ये व्यवहार में काम आता है, और हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, और उस समय जब वो किसी विपत्ति में हो तो हमें ये देखना है कि हम उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनकी समस्या का कोई समाधान कर पाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा जी।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी।
3: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
4: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
5: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
4: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
5: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम के बारे में एक सूचना। श्रोता, एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से 4 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा आर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है, किसी शंका का समाधान चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आज बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619, और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम के लिए हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फ़ोन कॉल्स का। तो चलिए हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार जी। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: बिल्कुल, देखो जी, अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो दूसरे भी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे
0: जी।
1: और अगर आपका व्यवहार अच्छा ही नहीं है तो दूसरे लोग आपसे दूर ही भागेंगे। तो मतलब व्यवहार को अच्छा करने के लिए इंसान को चाहिए कि थोड़ा सब्र संतोष रखे। सब्र संतोष के साथ ही आपके अंदर जो शांति आएगी तो उससे आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होगा। हम तो ये तो चाहते हैं कि दुनिया हमारी तरह से चले, लेकिन हम दुनिया के मगर नहीं चलना चाहते। हम कहते हैं जो मैं कहूँ वो होना चाहिए। तो मतलब ये जो भावना है ये नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। मतलब दूसरों के साथ मिलजुल कर जो भी समस्या का समाधान है वो निकालना चाहिए। और घर परिवार, आजकल हम इसलिए घर परिवार टूट रहे हैं कि हमारे में गुस्सा इतना बढ़ गया है कि हमको कंट्रोल ही नहीं होता गुस्से के ऊपर। तो छोटे से गुस्से के लिए कई बार तलाक तक की नौबत भी आ जाती है
0: जी। आपने बिल्कुल,
1: मतलब इंसान को चाहिए कि मतलब वो अपने आपके ऊपर कंट्रोल रखें। चलो गुस्सा तो हर एक को आता है, क्योंकि ये एक स्वभाव है इंसान का, गुस्सा तो हर एक को आता है, लेकिन गुस्से में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है ना, वो इंसान को आना चाहिए। मतलब इतना ना गुस्सा ऊपर हो जाए कि मतलब वो एक तरह से फट जाए। मतलब बैलेंस रख के चलना चाहिए। गुस्सा कीजिए लेकिन अच्छी अच्छी अपने जो आदतें हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, उसके ऊपर चाहे गुस्सा करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं।
0: देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, एक बात कहना चाहेंगे हम भी यहाँ पर आपको रोक रहे हैं कि कहा जाता है कि जो गुस्सा करता है या जो लड़ाई झगड़ा करता है उसमें बहुत ताकत है। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति शांत रहता है, असली ताकत उसी इंसान में है जो कि शांत रहकर बातों को सुनता है, वही उसकी असली ताकत है। और जैसा कि आपने कहा कि तनाव, आजकल बिल्कुल आपने सही कहा कि तनाव बहुत बढ़ गया है और तनाव की वजह से हम छोटी छोटी बातों पर अपनी जो पेशेंस है उसको हम लूज़ कर जाते हैं। हमारे में पेशेंस की कमी है, सहानुभूति की कमी है, सकारात्मकता की

0: की कमी है, तो इन कमियों पर हमें गौर करना है और इन्हें सुधारना भी है। जहां आपने स्ट्रेस की बात की, तो एक और स्ट्रेस है जिसे कि हम स्ट्रेस ट्रांसफ़र भी कहते हैं, कि लोग अक्सर क्या करते हैं, जो घर का तनाव है उसे ऑफिस में ले आते हैं और जो ऑफिस का तनाव है उसे
1: वो घर पे ले जाते हैं।
0: जी जी, घर का तनाव ऑफिस में और ऑफिस का तनाव घर पर, इसको बोलते हैं स्ट्रेस ट्रांसफर। तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
1: एक बात ये भी है कि आजकल जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो इसी वजह एक मोबाइल भी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मोबाइल हमारी जिंदगी से इस तरीके से जुड़ गया है कि ये अब हमको इस्तेमाल कर रहा है, हम नहीं इस्तेमाल कर रहे मोबाइल को, ये हमको इस्तेमाल कर रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो मतलब
0: सही,
1: घर में शांति रखनी है ना, तो मतलब जो भी पति पत्नी है जो घर पे आए, तो अगर घर में शांति रखनी है तो अपने अपने मोबाइल एक तरफ रख दे
0: जी,
1: और बच्चों के साथ बैठ के बातें करें, मतलब जो भी जरूरी है वो आधा घंटा देख लो बस।
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद उसको रख दो।
0: बिल्कुल, समय
1: घर
0: तो
1: में अगर मोबाइल चलेगा तो वो लड़ाई झगड़े का कारण जरूर बनता है।
0: बिल्कुल, समय सीमा को तय करना लाजमी है, जरूरी है, आप बेशक इस्तेमाल करें। देखिए, जो दुनिया में जो चल रहा है उसके साथ भी जुड़कर रहना है, लेकिन अपने घर के साथ भी जुड़कर हमें रहना है। ये तालमेल जो है वो हमें ही बिठाना है। हमें दुनिया भर की जानकारी होती है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बिल्कुल ही अनजान बने रहते हैं। तो बेशक मोबाइल का इस्तेमाल करें, जो आजकल की ज़रूरत बन गया है, लेकिन उसकी समय सीमा को तय करना बहुत ज़रूरी है। कि आप एक टाइमर लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, जिससे आपको पता चले कि मैंने आधा घंटा इस्तेमाल कर लिया या मैंने 15 मिनट इस्तेमाल कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के सामने आप एक एग्जांपल भी सेट करेंगे, अगर आप खुद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कम से कम आप अपने बच्चों को रोक सकते हैं, उन्हें टोक सकते हैं। तो अभी पहले भी
1: मैडम हम ही रोक सकते हैं अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करें।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम बच्चों को क्या कह सकते हैं।
0: जी, हमें ही उदाहरण बनना है उनके सामने, तो हम एक अच्छा उदाहरण पेश करें। तो ये बहुत ही, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, तो बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में बात करने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर की हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और हमारा आज का विषय है कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए।
1: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला 4 सेक्टर से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है मिसेस बेदी आपका कार्यक्रम में।
1: हाँ, वैसे मैं सबसे पुरानी, सबसे बड़ी लिसनर हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पुराने लिसनर हमें याद करते हैं, याद रखते हैं। तो आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: देखो, ये जो कहते हैं ना, एक मिनट, जो हम कहते हैं ना व्यवहार कुशल बनना, ये सारा, जैसे मदर सबसे बड़ी टीचर है, ये सब उनके हाथ में होता है
0: जी,
1: कि बच्चे को कैसा ट्रेंड करना है। आपको, हम लोग बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, कजन्स वगैरह सारे मिलके रहते थे
0: जी।
1: तो हमें बहुत कुछ सहना और सीखना मिल गया
0: जी, बिल्कुल।
1: कि कैसे किसी की बात को टॉलरेट करें, कैसे अच्छे से अपनी बात के आगे रखें, बड़े बुजुर्गों के आगे कैसे बोलें
0: जी।
1: पर आपको अब बताऊं, मेरे और मेरे हस्बैंड में यही जमीन आसमान का फर्क था। मैं बहुत सोशल,
0: मतलब वो आप आसमान और वो जमीन है क्या?
1: नहीं नहीं बिहेवियर में कि मैं ऐसी थी कि बड़ी स्टॉक और लोगों की हेल्प करने वाली, आगे बढ़ के बोलने वाली, बात करने वाली
0: जी।
1: कोई आ जाए तो उसको बिल्कुल अपना बनाना
0: जी।
1: तो मेरे हस्बैंड, उनको साइकोलॉजी में कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर, कि एकदम से शाउट करना फिर नीचे बात बैठ जाना, वो आपके रिश्ते सारे तोड़ देता है
0: जी। तो आपने तो गांठ बांध कर रखी हुई है, आपने तो परिवार को जोड़ कर रखा हुआ है।
1: हाँ, मैंने इतने साल हो गए, मेरे मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा नेटवर्क है मेरा।
0: जी।
1: मैं चाहे छोड़ दूं पर वो लोग बार बार फोन कर करके, क्योंकि एक तो मैं योगा क्लास की हेड रही 19-20 साल, 27 साल में क्लास बंद किया मैंने
0: जी,
1: दिल्ली से एफिलेटेड थी हमारी क्लास
0: जी।
1: पर वो क्लास में अगर मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में थी तो मैं दोस्त बहुत थी उनकी
0: जी।
1: किसी को जरूरत है हाथ पकड़ो चलो मैं लेके चलती हूँ। ये होता है कि आपको उनपे अंदर छा जाना किसी के दिल में, वो बिहेवियर सबसे बेस्ट है।
0: बिल्कुल जी, मीठा अगर आप बोलेंगे तो, और मीठा व्यवहार अगर आप करेंगे, किसी दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे और जोड़कर रखने की अगर आप में काबिलियत है तो वाकई आप कुशल व्यवहार रखती हैं।
1: आज के टाइम में लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं पर मेरे हजारों हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
1: मेरे रिश्ते प्यार के इतने पक्के हैं, इतने सालों हो गए, बेटा बेटी दो बने हुए, पर आज मैं उनको अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अभी तक उन जड़ों को जो है वो आप मजबूत बनाकर रखे हुए हैं।
1: जड़ों को मैं

0: छोड़ा नहीं, बल्कि उसको सींच दिया और पानी, प्यार का पानी डाल डाल के।
1: बिल्कुल, यही जरूरत है आज के दौर की कि मोहब्बत अगर है तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। अपना पराया कोई भी नहीं होता, सब व्यवहार के ऊपर है आपके। अगर
0: अपने
1: आप
0: अपने तो वही है जो आपके हैं पास
1: जी,
0: रिश्तेदारी वगैरह तो बिल्कुल भूल चुके हैं हम लोग।
1: जी जी,
0: तो इसलिए जैसे आप लोग हो, सबसे बड़े रिश्ते मेरे यही हैं।
1: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे भी रिश्ते आप लोगों से ही हैं। अगर आप लोग हैं, आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो यही हमारे लिए, ये हमारा हासिल है।
0: हाँ, हम... नहीं नहीं, आप लोगों ने बहुत मैसेज दिया मेरे को, तो रेडियो ने जिंदा रखा हुआ है।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके और आपकी बातों को सुनकर, आपके एक्सपीरियंसेस को जानकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी कॉल करने के।
0: चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, कुदरत के इनाम की चीज़ है। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कुशल व्यवहार, आपके जीवन का आईना, इस विषय पर। चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: मैं सूरज बात कर रहा हूँ मैम, तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से।
0: जी सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे? और समय की थोड़ी सी कमी हो चली है तो अपनी बात रखने की कोशिश।
1: मैं अपनी बात मैम
0: जी जी बोलिए।
1: जहाँ तक मैम आज अच्छे व्यवहार की बात चलिए ना, अच्छे मतलब वो बिहेवियर की बात।
0: जी जी
1: तो मैम सबसे बड़ी बात तो मैम अच्छा बिहेवियर तो सबसे पहले मैम आदमी फैमिली से सीखता है।
0: बिल्कुल, हमारे संस्कार।
1: क्योंकि मैम फैमिली का तो ऐसा है ना मैम कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे से वो आराम से बात करे और प्यार से बात करे।
0: जी
1: तो मैम पेरेंट्स का भी तो फर्ज बनना चाहिए ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कभी बोला था ये बात।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव तो पहले आपके घर से ही शुरू होता है। कि भाई
1: वो भी मतलब उस आराम से और मतलब सभ्य तरीके से बात करे अपने बच्चों से कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन वो अपने बच्चों से रखते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: क्योंकि मैम कहती मैम एक ताली में एक हाथ से तो नहीं बजती ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात हम कर चुके हैं पहले भी। सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कार्यक्रम में बात करने के लिए। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर अपने बच्चों को आप कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद उदाहरण बने ताकि बच्चे आपसे सीखें, अपने घर से सीखें, क्योंकि शुरुआत हमेशा घर से होती है।

0: तो दोस्तों, जैसा आईना वैसी तस्वीर, किसी से प्यार से बात करके देखें, किसी की मदद करें, किसी का दर्द बांटें और फिर देखें जिंदगी का आईना कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाता है। आज के हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। आपके साथ अब कार्यक्रम से अपनी रेडियो संगिनी बबीता कपूर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो हेलो, कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
4: गणपति बप्पा।
5: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका।

0: लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वदाइयां।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पेड़ियां।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। वैदिक काल में यह संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचालक था, परंतु इस काल में अनेक बुराइयां एवं कुप्रथाएं समाविष्ट हो गई हैं। इन्हीं विकृतियों के फलस्वरूप हमारे देश में बाल विवाह का प्रचलन हुआ, जो कि हमारे समाज एवं सांस्कृतिक जीवन के लिए घोर अभिशाप है। बाल विवाह यानी कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देना। बाल विवाह करने से उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास के साथ साथ खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। कम उम्र में शादी करने से पूरे समाज में पिछड़ापन आ जाता है। इसलिए हमारे देश के कानून में लड़के और लड़कियों की शादी के लिए एक निश्चित उम्र तय कर दी गई है। बाल विवाह की बुराइयों को देखकर समय समय पर समाज सुधारकों ने जन जागरण के उपाय किए और उसके साथ साथ भारत सरकार ने इस संबंध में कठोर कानून बनाए हैं और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम तथा लड़कों की उम्र 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना कानूनी निषेध कर रखा है। फिर भी बाल विवाह निरंतर हो ही रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी अनिवार्य हो गया है। बाल विवाह प्रथा अधिनियम शारदा एक्ट 1929 में 1 अप्रैल 1930 को बाल विवाह प्रथा को पहली बार समाप्त किया गया था, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन संशोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 की गई। इतने कड़े और सख्त नियम निकालने के बावजूद भी आज भी समाज में आंखों में पट्टी बांध कर इस काम को धड़ल्ले से किया जाता है, जिसके कारण हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिप्राय है। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: रिया बेटी, जरा दाल में छौंक लगा दे, तब तक मैं आटा गूंध देती हूँ, तेरे पापा आते ही होंगे।
2: ठीक है माँ।
3: रिया
2: आई पापा।
3: शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश।
1: अच्छा जी, मुझे कोई शाबाशी नहीं, मैं भी तो रसोई में काम कर रही हूँ।
3: अरे नहीं रिया की माँ, मैं तो इसे शाबाशी किसी और काम के लिए दे रहा हूँ।
1: किसी और काम के लिए?
3: हाँ ये लो।
1: इतने सारे पैसे?
3: हाँ रिया की माँ, पूरे 1500 रुपए हैं और ये सब अपनी रिया की वजह से हैं।
1: मैं समझी नहीं।
3: अरे भाई, इस हफ्ते का पूरा हिसाब किताब रिया ने ही तैयार किया था और लाला जी भी हैरान थे, कह रहे थे अरे रिया के पापा, तुम्हारी बेटी बड़ी समझदार है।
1: पापा, और ये गुड़िया?
3: गुड़िया ये तुम्हारे लिए और ये कमीज सोनू के लिए। अरे भाई, सोनू कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है।
1: सोनू सो गया है। चलिए आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
2: आ गया बेटा।
1: देखो ना दादी, मेरी गुड़िया बिल्कुल दुल्हन लग रही है।
2: हाँ हाँ देखी है।

0: अपनी शादी में बिल्कुल ऐसी ही लगेगी। एक दो साल में एक अच्छा लड़का ढूंढ के।
1: अरे माँ, मुझे जेल नहीं जाना है।
0: अरे जेल जाएं तुम्हारे दुश्मन, ऐसा क्यों बोल रहा है?
1: माँ, 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी करना कानूनी अपराध माना जाता है।
2: हाँ माँ, और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी गैर कानूनी है।
0: अरे हमारे जमाने में तो लड़की की शादी 10-12 साल की उम्र में कर देते थे और 14-15 साल की उम्र में तो उसकी गोद भर जाती थी।
2: माँ, ऐसी छोटी सी उम्र में तो लड़की खुद बच्ची होती है, वो भला क्या बच्चा पैदा करेगी। 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ ना शरीर से शादी के लायक होती हैं और ना ही समझ से।
0: कह तो तू भी ठीक रही है बहू। अच्छा भाई, मैं तो चली सोने।
2: ठीक है माँ।
1: अरे मजा आ गया, आज खाना बहुत स्वाद बना है।
2: पापा।
1: हाँ बेटा।
2: पापा, क्या यह सच है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर उसके माता पिता को जेल हो सकता?

0: और ना ही समझ से।
1: कह तो तू भी ठीक रही है बहू। अच्छा भाई, मैं तो चली सोने।
0: ठीक है माँ।
2: अरे मजा आ गया, आज खाना बहुत स्वाद बना है।
0: पापा।
2: हाँ बेटा।
0: पापा, क्या यह सच है कि लड़की की शादी 18 साल से पहले करने पर उसके माता पिता को जेल हो सकती है?
2: हाँ बेटा, सच है। और हाँ रिया की माँ, आज मुझे भोला भी मिला था।
0: अच्छा, वो भोला जिसे कुछ सालों पहले जेल हुई थी?
2: अरे उसे किसी झूठे आरोप में पकड़वा दिया था।
0: तो क्या कह रहा था भोला?
2: अपनी बेटी सीमा की शादी का न्योता दे रहा था और कह रहा था कि पास ही के गांव का कोई लड़का है 20 साल का।
0: पापा, इसका मतलब भोला चाचा को फिर से जेल जाना पड़ेगा?
2: क्यों?
0: अभी अभी तो आपने दादी से कहा था कि 18 साल से पहले शादी की तो, लेकिन सीमा दीदी तो अभी 15 साल की भी नहीं हुई।
3: तुम्हें ये सब कैसे पता रिया? क्या सीमा तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है क्या?
0: नहीं माँ, सीमा दीदी तो आज तक स्कूल ही नहीं गई।
2: है?
0: रामू की बहन और सीमा दीदी का जन्म एक ही दिन हुआ था। रामू ने ही पूरी क्लास को यह बात बताई थी कि अगले महीने वो 15 साल की ही होगी, तो उस हिसाब से सीमा दीदी भी अगले महीने 15 साल की पूरी होगी। तो अभी उसकी उम्र 15 साल से कम हुई ना?
2: हाँ, इसका मतलब भोला मुश्किल में पड़ सकता है। चलो भाई, मैं तो चला सोने।
0: बेटा रिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी।
4: हाँ माँ, मैं तैयार हो गई।
0: अरे पिंकी, आज स्कूल में कितना मजा आया था ना। अरे सीमा दीदी, आप?
1: अरे रिया, स्कूल से आ रही हो?
0: हाँ दीदी।
1: स्कूल में मजा आता होगा ना, कितना कुछ सीखने को मिलता होगा।
0: हाँ दीदी। दीदी एक बात पूछूं?
1: हाँ हाँ रिया, पूछो।
0: दीदी आप भोला चाचा जी से कितना प्यार करती हैं?
1: हाँ, तुमने ऐसा क्यों पूछा रिया?
0: दीदी अगर भोला चाचा फिर से जेल चले गए तो?
1: रिया तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो?
0: मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे कल मेरे पापा ने सब बताया है कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 से पहले करने पर उसके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है।
1: ओहो, ऐसा भी होता है क्या?
0: हाँ दीदी, मैंने स्कूल में अपनी मैम से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा। सच में दीदी?
2: अरे भाई, सीमा तो चुपचाप अपने घर की तरफ चली गई और रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई।
5: अरे आ गई बेटा सीमा।
1: बाबा, मैं ये शादी नहीं करूंगी।
6: क्या, शादी नहीं करेगी?
1: हाँ माँ बाबा, मैं नहीं चाहती कि आपको फिर से जेल जाना पड़े।
5: जेल? ये क्या कह रही है तुम?
0: चाचा, सीमा दीदी ठीक कह रही है।
6: रिया, ये क्या कह रही हो तुम?
0: हाँ चाची, मेरे स्कूल में मैम ने बताया कि लड़की की शादी 18 और लड़के की शादी 21 साल से पहले करने पर उनके माता पिता को जेल जाना पड़ सकता है।
7: भोला, ओ भोला।
6: हे भगवान, ये तो रामलाल जी की आवाज है।
7: अरे भोला कहाँ हो?
5: अरे समधी जी, आप सब ठीक तो है?
7: अरे भाई, ठीक तो तब होगा ना जब तू हमें 50,000 रुपए देगा।
5: 50,000? लेकिन बात तो 20,000 की हुई थी।
7: हाँ हाँ, बात तो 20,000 की हुई थी, लेकिन हमें 50,000 रुपए चाहिए, साथ में गहने और गाड़ी भी चाहिए।
0: अरे सीमा दीदी, ये तो दहेज मांग रहे हैं।
7: अरे भाई, ये किसकी लड़की है, बड़ी बदतमीज है।
5: अरे बदतमीज नहीं, रिया बिटिया तो सही कह रही है।
7: अजी कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हो आप?
5: एकदम सही बात कर रहा हूँ रामलाल जी। जाओ, मुझे नहीं करनी है अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे लालची आदमी के बेटे के साथ।
7: अच्छा ठहर जाओ, मैं अभी पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट लिखाता हूँ और शादी तोड़ता हूँ।
5: अरे जाओ लिखवा दो रिपोर्ट, तुम्हें भी जेल में डाल देगी पुलिस। 21 साल से पहले लड़के की शादी करना भी कानूनी अपराध है, समझे?
7: अरे अरे, तुम्हें ये बातें कैसे पता? ना तो तू पढ़ा लिखा है, ना तेरी सीमा पढ़ी लिखी है, फिर भी तुझे कैसे पता?
5: मेरी सीमा नहीं लिखी पढ़ी, लेकिन रिया तो पढ़ी लिखी है। बोलो रामलाल, अब क्या करना है, बुलाऊं पुलिस?
7: ना बाबा ना।
5: भाग गया लालची। रिया बेटी, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी है।
6: अरे अब तो हम अपनी सीमा बिटिया की शादी उसके 18 साल पूरे होने के बाद ही करेंगे।
8: बिल्कुल सही कहा आपने भोला भैया और कांता दीदी, जरा सीमा की तरफ से देखिए, अभी तो उसका बचपन भी नहीं गया। और अभी इसका शरीर और इसका

0: मन, दोनों शादी के लिए तैयार नहीं है।
1: जी मैडम जी, और ऐसा करना कानूनी जुर्म भी है।
0: हाँ ठीक कहा आपने, और अब तो स्कूल जाना और पढ़ना लिखना हर बच्चे का अधिकार भी है।
2: हमें माफ कर दीजिए मैडम जी। धन्यवाद मैडम जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी।
0: धन्यवाद मेरा नहीं, कांता बहन रिया का कीजिए। उसी ने मुझे बताया कि सीमा इतनी परेशान क्यों थी।
1: बहुत समझदार है अपनी रिया। भाई वाह, मान गए अपनी रिया को।
0: किसी ने खूब ही कहा है, लाड प्यार से पली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं तो। मुझे डाल से अभी ना तोड़ो, मुझे डाल से अभी ना तोड़ो, मेरा रिश्ता अभी ना जोड़ो।

तो श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आज के नाटक के द्वारा हमारे समाज में होने वाली बाल विवाह कुप्रथा के कारण आज हमारे आंतरिक जीवन की आंखों को खोल दिया है और इस नाटक के माध्यम से हमने सीखा है कि किस प्रकार से रिया के सूझबूझ और शिक्षित होने से उसने सिर्फ अपने पड़ोसी सीमा को ही जागरूक नहीं बल्कि उसके माता पिता के आंखों में पड़े हुए पर्दे को हटा दिया और सीमा का बाल विवाह होने से बचाया। और श्रोताओं, इतना ही नहीं बल्कि साथ ही दहेज के लोभियों को भी सबक सिखाया। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि बाल विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों के क्षति नहीं बल्कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया। इस बाल विवाह को करना या करवाना संशय और गैर जमानती अपराध है। जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्रियों का बाल विवाह कराते हैं तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1,00,000 रुपए दंड देने का प्रावधान है। इसलिए आइए और अपने समाज में होने वाली कुप्रथाओं का घोर विरोध करके उन्हें जागरूक करें और अपने समाज को अच्छा समाज बनाएं। और इस विषय में आपके क्या विचार है हमें अवश्य बताएं।

श्रोताओं, आपको हमारा ये नाटक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

0: 1412867 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुर बहार। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से जो गाया है सोनू निगम ने।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सब

श्रोताओं, एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम के बारे में एक सूचना दे दें। एफएम लाइफलाइन प्रोग्राम में आज बाद दोपहर 3:30 से 4 बजे तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन का इस बार का विषय रहेगा अर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़े आपका कोई सवाल है, किसी शंका का समाधान चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज बाद दोपहर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त। और अगला गीत है कैलाश खेर की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर बहार।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपया तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर और अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम संजीवनी का।
4: संजीवनी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में आपको मालूम है हर बार हमारे साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट होते हैं जो हमारी सेहत से जुड़ी जानकारी हमें देते हैं। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं मोहाली की जानी मानी आयुर्वेदाचार्य कमलप्रीत धीमन इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले कमलप्रीत जी प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
5: थैंक यू धन्यवाद सर। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और पिछले लगभग 15 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही हूं और मुझे आकाशवाणी के केंद्र में आकर बहुत अच्छा लग रहा है।
4: हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो करेंगे स्किन के बारे में, अपनी त्वचा के बारे में, हमारी त्वचा और आयुर्वेद कि आयुर्वेद की दृष्टि में त्वचा की संभाल कैसे होती है, त्वचा से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे होता है, हमें अपनी त्वचा का किस तरह से ख्याल रखना है, आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। स्किन की केयर तो एलोपैथी में भी होती है, होम्योपैथी में भी होती है, हर पैथी में होती है। एक आयुर्वेदाचार्य त्वचा को किस तरह से देखता है?
5: आयुर्वेदा में त्वचा को अंदर से देखा गया है। त्वचा की सुंदरता को सिर्फ बाहर से नहीं देखा गया है बल्कि हमारे आहार, पाचन, लाइफस्टाइल और इंटरनल हेल्थ से जोड़ा गया है।
4: यानी जिस तरह से हमारी अंदर की स्थिति होगी, जितनी वो सेहतमंद होगी वही हमारी स्किन पर रिफ्लेक्ट करेगी, आप ये कहना चाहते हैं?
5: अनियमित खानपान, प्रोसेस्ड फूड और बहुत ऑयली फूड, स्ट्रेस, नींद की कमी, पोल्यूशन, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, ये सारे स्किन की हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से जो आयुर्वेदा में कहा गया है कि अगर हमारा अंदर से हम स्वस्थ होंगे तभी हमारी स्किन भी स्वस्थ दिखेगी।
4: अंदर से स्वस्थ होंगे यानी कि हमें पहले अपने भीतर से काम करना होगा, लेकिन दमकता चमकता चेहरा हर कोई चाहता है, तो सबसे पहले जब सुबह उठ के अपने आप को देखते हैं, वो निहारते हैं, उन्हें भीतर नज़र नहीं आता है, जो सामने है वही शीशे में नज़र आता है। तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि उन्हें पिगमेंटेशन हो रही है, चेहरा कहीं कहीं से थोड़ा सा उसका रंग जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये सब क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? एक पर्टिकुलर एज में जाके ये ज़्यादा देखा गया है, आप क्या समझती हैं?
5: सबसे पहले तो हमारा खान पान, जैसे मैंने आपको बताया, पोल्यूशन, एक्सेसिव स्ट्रेस, फास्ट फूड, ये आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। दूसरा आपकी एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी स्किन भी चेंज होती जाती है। जैसे हम बच्चे होते हैं तब हमारे में कफ ज़्यादा होता है, तो बच्चों की जो स्किन होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसमें लस्टर ज़्यादा होता है।
4: अच्छा, कफ की वजह से?
5: कफ की वजह से। और जैसे ही हम अडल्टहुड में आते हैं, जवान होते हैं, तो पित्त बढ़ जाता है। तो आपने देखा होगा जवानी के टाइम पे एक्ने और जैसे
4: कील मुहांसे
5: ये ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा आने शुरू हो जाती है, तो हमारी एज का इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। और जैसे ही हम बूढ़े होते हैं तो रिंकल्स हो गए और हमारी जो स्किन है वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो जाती है।
4: कफ, पित्त और वात, तो यहाँ भी आधार वही है। तो मतलब ये सब कुदरती

0: हैं, लेकिन जो समय के साथ और उम्र के साथ होना है वो होना है।
1: हम आपकी उम्र बढ़ रही है उसको चेंज नहीं कर सकते, वात पित्त कफ के जो उसका लेआउट है उसको चेंज नहीं कर सकते, उनकी प्रोग्रेस को हम नहीं चेंज कर सकते,
0: लेकिन कंट्रोल कर सकते,
1: कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम अपना आहार विहार और ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पे हमारे वात पित्त कफ कंट्रोल में रहें, बैलेंस में रहें, तब इन सब सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता।
0: तो डॉक्टर कमलप्रीत, हम सबसे पहले आपसे जो हमारी जवानी होती है उस अवस्था की हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा तवज्जो दी जाती है अपने चेहरे को लेके, उसकी सुंदरता को लेकर, हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब इस दौर में हम कदम रखते हैं, हमारा चेहरा साफ सुथरा रहे, कील मुहांसे ना हो, उसके लिए हमें घर पर रह के किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, हमारा आहार, हम क्या खाते हैं, अगर हमारी वातज प्रकृति है, अगर हम और भी ज्यादा वातज खाना खाएंगे, आहार लेंगे, तो हमारे शरीर में ड्राइनेस और बढ़ जाएगी। तो उस बात को पैसिफाई करने के लिए हमें वात को कंट्रोल करने वाले आहार लेना पड़ेगा, स्किन फ्रेंडली लेने पड़ेंगे। अगर आप में कफ ज़्यादा है, अगर और भी आप कफज आहार लोगे तो कफ और बढ़ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपने उसके अकॉर्डिंग आहार करना है। अगर पित्त है तो ज़्यादा गर्म चीज़ें लोगे, जितना आप आग में और घी डालोगे उतना वो बढ़ती जाएगी। तो अगर आप और पित्तज फूड, जैसे कि अगर आप जंक फूड ज़्यादा लोगे, फर्मेंटेड फूड ज़्यादा लोगे, सिरका ज्यादा लोगे, चाइनीज फूड ज्यादा लोगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि जवानी के टाइम में पित्त बढ़ता है, तो जवानी के टाइम में ज्यादा फास्ट फूड भी खाते हैं, है ना, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते
0: हैं। वही मैंने कहा ना, एक ऐसी अवस्था होती है जवानी, जब हम कुछ भी खाना पसंद करते हैं और ज्यादा नहीं सोचते हैं कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, जब तक कि हमें कोई ये ना बता दे या जब तक कोई समस्या ना आन पड़े। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि क्या इस अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, किसी आयुर्वेदाचार्य से मिल लेना चाहिए?
1: हाँ जी, आपको एक प्रॉपर आयुर्वेदाचार्य से मिलकर उनसे अपनी डाइट बनवानी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, और अपनी स्किन की एक प्रॉपर रूटीन आपको बनवानी चाहिए कि हमें स्किन के ऊपर क्या क्या चीज़ें लगानी
0: है। मेरे शरीर का स्वभाव क्या है, कई बार खुद पता नहीं होता कि हम वात प्रकृति के हैं या हम पित्त के हैं या हम कफ के।
1: हाँ, इसके बारे में एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी। जो वात डोमिनेंट स्किन के पर्सन होते हैं उनकी स्किन ड्राई और रफ रहती है।
0: अच्छा, अगर आपको मालूम है आपके बात है,
1: हाँ,
0: तो स्किन ड्राई
1: और रफ रहेगी, हाँ, थोड़ी खुरदरी रहेगी, जैसे सर्दियों में स्किन उतने लग जाती है, परत उतने लग जाती है, तो वैसी आपको लगेगी। और अगर हम पित्त डोमिनेंट स्किन कहेंगे, पित्त सेंसिटिव है, तो उसमें स्किन आपकी गर्म रहेगी थोड़ी, उसमें लाली रेडनेस ज़्यादा रहेगी, पिगमेंटेशन जिसे कहते हैं कि काले दाग, हाँ, कील मुहांसे ज़्यादा होंगे, तो इनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर कफ डोमिनेंट स्किन हम कहें तो उनमें उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है और वेल हाइड्रेटेड होती है, ग्लो करती है।
0: अच्छा, जिनके कफ होती है,
1: कफ सबसे अच्छी स्किन कफ वाली मानी जाती है, तभी बच्चों की स्किन सबसे सॉफ्ट और अच्छी लगती है, क्योंकि
0: तो डॉक्टर कमलप्रीत, हम सबसे पहले सिलसिलेवार इसको विस्तार से जानते हैं और बात करते हैं वायु प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो जवान लोग होते हैं, वो अपना ख्याल किस तरह से रखें, वो अपने आहार में खास चीज क्या लें, रूखापन ना रहे, उसके लिए क्या करें?
1: जो वात प्रकृति वाले हैं वो गर्म, ताज़ा और पौष्टिक भोजन ले सकते हैं, ताज़ा बना हुआ भोजन लेना, उन्हें ठंडक देने वाला गर्म ताज़ा हल्का,
0: वायु वाले
1: जी, उनके गर्म ताज़ा हल्का तैलीय और पौष्टिक भोजन लेना है, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल, घी, तिल, पकी हुई सब्जियां, और बहुत अधिक ठंडा और सूखा भोजन कम लेना है।
0: अच्छा, ठंडा और सूखा भोजन
1: कम लेना है। और वो अपनी त्वचा पे चंदन का लेप लगा सकते हैं, चंदन का लेप लगा सकते हैं, उससे उनकी जो सूखी हुई, जो उनको शुष्क लगती है त्वचा अपनी, उसमें ठंडक आएगी।
0: इसी तरह से लगाना कि उसके लगाने का कोई ढंग है?
1: उसमें आप रोज वाटर मिला सकते हैं, चंदन का पाउडर, उसमें रोज वाटर मिला के लगा सकते हैं
0: जी। हाँ जी। तो दिन में कितनी बार उसको इस्तेमाल करना है?
1: दिन में उसमें हफ्ते में 2 बार आप यूज करेंगे, उसी से आपको इफेक्ट दिखना शुरू पड़ जाएगा
0: जी।
1: हाँ जी, बाकी आपको अपने आहार से ज्यादा उसको ठीक करना है।
0: हाँ, वो तो भीतर से करना ना,
1: भीतर से करना,
0: और बाहर से अगर आपने चेहरे को चमकाना है तो चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, जो पित्त प्रकृति के होते हैं वो क्या करें?
1: पित्त दोष वाले लोगों को अपने फेस के ऊपर नीम, मुलेठी और एलोवेरा, इसको मिला के शहद के साथ या रोज़ वाटर के साथ मिला के इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी ठंडक देते हैं, पित्त वालों में गर्मी होती है तो वो इसको लगा सकते हैं।
0: यानी जो चीज़ें ठंडक पहुँचा

0: शीतल और शांत स्वभाव की हो उनको वो लगा सकते हैं। और खाने में भी हमने वही ध्यान रखना है कि ठंडक देने वाला हल्का और कम मसालेदार भोजन उनको खाना है, जैसे कि खीरा, नारियल, लौकी, मीठे फल और हरी सब्जियां। बहुत तीखा, खट्टा और तला हुआ भोजन कम लेना है।
1: जी, अगर कभी दिल करे तो लेना है, लेकिन रेगुलरली वो नहीं लेना है,
0: जैसे हम कहें कि महीने में एक बार ले सकते हैं, पर रेगुलरली नहीं ले सकते
1: नहीं
0: हैं,
1: सकते।
0: नहीं सकते।
1: अच्छा, जो कफ वाले हैं जिनके बारे में आपने बताया, उनकी त्वचा जो है चमकती है, ग्लो करती है।
0: उनमें कफ ज्यादा होता है तो कफ जो होता है वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होएगा तो उनको हर टाइम चिपचिपा लगेगा अपना फेस ना।
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ, तो वो हल्का गर्म और कम तैलीय भोजन लेंगे, अपने भोजन में तेल कम
1: अच्छा
0: डालेंगे,
1: जी,
0: जैसे कि वो मूंग दाल ले सकते हैं और मसालेदार सब्जियां वो खा सकते हैं, क्योंकि कफ को कम करना है तो मसाला वो खा सकते हैं।
1: जी,
0: और जौ और बाजरा, क्योंकि वो रूखे होते हैं, कफ की प्रकृति से ऑपोजिट होते हैं, तो जौ और बाजरा की रोटी वो खा सकते हैं। और बहुत अधिक मीठा और तला हुआ भारी भोजन उन्होंने नहीं खाना है।
1: नहीं खाना है।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: ये श्रोताओं, तीनों हमारी अवस्थाएं हैं आयुर्वेद के मुताबिक। अगर इनके बारे में हमें थोड़ी सी भी समझ आ जाए या इनको हम फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि हम अपने शरीर का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। क्यों डॉक्टर जी?
0: हाँ जी, बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: आम तौर से लगभग हर कोई शिकायत करता है कि जो मेरी त्वचा है उसमें काले दाग नज़र आने लगे हैं, पहले वो त्वचा बिल्कुल साफ थी। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है और ये क्यों होता है?
0: आयुर्वेदा में हम इसको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम माना जाता है कि रक्त और पित्त स्किन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा दुष्ट होते हैं, तो इसमें शोधन हम आयुर्वेदा में करते हैं। शोधन हम जैसे कहते हैं कि पित्त को बाहर निकालने के लिए हम लोग पेशेंट का शोधन करते हैं, ये एक आयुर्वेदाचार्य ही प्लान कर सकता है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो इसमें जब पित्त और रक्त की विकृति होती है तो वर्ण का परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें त्वचा की में विकार आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पिगमेंटेशन हो गया, काले दाग होने और स्किन का अनइवन टोन हो जाना, खुरदरी हो जानी, कहीं से आपको लगता है कि सफ़ेद है,
1: पैच
0: कहीं
1: पैच
0: से
1: नजर आना
0: दाग है।
1: शुरू हो
0: हाँ जी,
1: गए।
0: पैची अपेयरेंस होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स को हम कहते हैं कि मेलेनोसाइट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर हम इसको एक फ्रेमवर्क से देखें कि ये जो रक्त और पित्त है वो दुष्टि है मेलेनोसाइट्स की, मेलेनोसाइट्स जब ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन आनी शुरू हो जाती है। तो
1: तो
0: इसके
1: ये जो
0: लिए
1: ज्यादा बढ़ते हैं इन्हें कम भी किया जा सकता है आयुर्वेद
0: इनको,
1: में,
0: हाँ जी,
1: या इसे
0: इन
1: कंट्रोल किया जा
0: हाँ
1: सकता
0: जी
1: है?
0: इनको कम किया जा सकता है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे वर्ण्य हर्ब्स का वर्णन है, जैसे कि जो हमारी स्किन के लस्टर को, ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं,
1: जी,
0: तो उन हर्ब्स का, उन मेडिसिन का काम है कि उस टायरोसिनेज जो एंजाइम है उसकी वर्किंग को कम करना, उसको कम करके वो मेलेनोसाइट्स को हम कम कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारी स्किन की जो ब्राइटनेस है वो वापिस आ सकती है और जो पैचीनेस है वो खत्म हो सकती है।
1: कुछ एक उदाहरण बता सकते हैं ऐसे हर्ब्स की?
0: हर्ब्स में जैसे हम कहते हैं मंजिष्ठा आता है इसमें,
1: जी
0: मुलेठी आता है और चंदन भी वर्ण्य में आता है और मुल्तानी मिट्टी, ये सारी द्रव्यों में आती है।
1: तो उसमें वो त्वचा के रंग को थोड़ा
0: हाँ जी, है।
1: ब्राइटनेस लेकर आती
0: और
1: है।
0: आयुर्वेदा में अगर हम कहें कि इसमें बहुत सारी ऐसे पंचकर्मा प्रोसीजर भी होते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ आयुर्वेद में सीरम और ऊपर की एप्लीकेशन को, ऊपर से क्रीम्स लगा ली, उसको हम नहीं कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। ऊपर की केयर के साथ साथ हमें इंटरनली शोधन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोग पहले पेशेंट की शोधन करते हैं, जैसे उसको ऑयल से मसाज करना जो उसकी सूटेबल हो उसकी स्किन के लिए, उसके बाद उसको शोधन जिसे हम कहते हैं विरेचन, विरेचन हम लोग अलग अलग द्रव्यों के साथ करते हैं, किसी को उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, किसी को चूर्ण के साथ करते हैं, किसी को इच्छा विधि रस के साथ करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू
1: वो सब
0: पेशेंट।
1: बातें मिलने के
0: हाँ,
1: बाद,
0: मिलने
1: देखने
0: के
1: के बाद।
0: देखने के बाद
1: हाँ
0: वो अपने आप लेने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है, ये आयुर्वेदाचार्य ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता
1: जी
0: है।
1: जी हम तो आपसे केवल ये जानना
0: हाँ
1: चाहते हैं कि
0: जी,
1: घर पर रहते हुए अपनी दिनचर्या में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे की जाए।
0: इसके लिए आप बहुत सारे लेप यूज़ कर सकते हो,
1: हाँ,
0: ऑयल यूज़ कर सकते हो,
1: उबटन
0: जो,
1: के बारे में बताया जाता है।
0: हाँ जी, उबटन आयुर्वेद में उबटन को लेपा के नाम से जाना जाता है,
1: अच्छा,
0: तो हाँ
1: लेपा।
0: हाँ जी। और
1: हाँ
0: तो जो भी आप, अगर मान लो आप मुलेठी का लेप अपनी बॉडी पे लगाते हैं या हल्दी का लेप अपनी बॉडी पे लगाते हैं,
1: तो मुलेठी का इस्तेमाल कैसे करना है?
0: हाँ, मुलेठी का आपने वही, आपने मुलेठी लेनी है, उसका पाउडर लेना है, उसके बीच में आपने शहद डाल लेना है, तो उसको आपने थोड़ा सा पतला कर लेना है रोज़ वाटर डाल के, तो उसको आपने आधा अंगुल मोटाई में लो लेप अपनी फेस पे लगाना है, जहाँ
1: और
0: पे भी आपको
1: कितने
0: डार्कनेस।

0: कितनी देर?
1: आपने 15 मिनट रख के उसके बाद उसको हल्का हल्के हल्के हाथों से उसको रब करना है। रब करोगे तो वहाँ पे जो डेड स्किन है वो बाहर निकल जाएगी, जिसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो मॉडर्न साइंस में इसको माइक्रोडर्मा एब्रेजन ऐसी चीज़ों से नाम दिया जाता है, बट
0: टेक्निकल टर्म्स
1: हाँ
0: हैं। हाँ
1: टेक्निकल टर्म्स दिए जाते हैं, बट आयुर्वेदा में इसका वर्णन एंशियंट टाइम से है।
0: जी, तो
1: यस
0: फर्क पड़ता है इससे?
1: हाँ जी, इन सबसे फ़र्क पड़ता है, बट आपको रेगुलर होना पड़ेगा। और ये जो हम लेप लगाते हैं, तो लेप के बाद अगर जैसे मैंने आपको बोला रब करना है, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हफ्ते में एक बार ही करना है, उसके ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा आप स्किन को रगड़ोगे तो उसमें ज़्यादा
0: और
1: इंजरी हो जाएगी। हाँ,
0: हाँ,
1: हम इंजरी नहीं करना
0: समस्याएं
1: चाहते।
0: हो
1: हाँ,
0: सकती
1: और
0: हैं।
1: समस्याएं हो सकती हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि धूप में निकलना पड़ता है, और ये भी कहा जाता है कि विटामिन डी के लिए आपको धूप में भी रहना है और धूप से बचना भी है, तो ये दोनों काम बड़े मुश्किल हैं कि धूप में जाना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, और उससे अगर बचते रहते हैं तो विटामिन डी की कमी भी होती है। तो मुझे ये बताइए कि धूप में अगर ज़्यादा समय बिताना हो, तो एक आयुर्वेदाचार्य के नाते आप क्या सलाह देना चाहती हैं? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि SPF 50 है, 30 है, तो लोग जाते हैं, जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, आमतौर से मालूम नहीं होता। आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, आयुर्वेदाचार्य की क्या दृष्टि है इस मामले में कि क्या लगाना चाहिए, या जो हम लगाते हैं उनमें किन चीज़ों का हम ख्याल रखें?
1: अगर हम धूप की बात करें, धूप का जैसे आपने बोला कि विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारी हड्डियों के लिए और स्किन की अपनी हेल्थ के लिए भी विटामिन डी
0: जी
1: बहुत ज़रूरी है। बट इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप धूप में कब निकलें, और हाँ,
0: हाँ
1: तो आप कोशिश करें कि उस टाइम निकलें जिस टाइम धूप कम हो, जैसे 12 बजे से लेके आप 3 बजे के टाइम के बीच में धूप में कम निकलें, उसमें बाहर ना जाएं, ताकि आपको मैक्सिमम यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर ना हो, कम से कम हो। तो
0: और
1: सुबह,
0: अगर निकलना पड़े तो क्या करें?
1: हाँ, अगर निकलना पड़े तो कोशिश करें अपने चेहरे को थोड़ा ढक के निकलें, कैप या दुपट्टा या किसी कपड़े से चेहरे को ढक के निकलना है आपने। और दूसरा, अगर हम कहेंगे कि मार्केट में आजकल बहुत सारी आयुर्वेदिक वेल रिनाउंड ब्रांड्स आ गई हैं, जो कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से सनस्क्रीन बनाती हैं, जो कि बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव हैं और रिसर्च बेस्ड हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं।
0: जी जी
1: अगर
0: जी
1: आप केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक बहुत सारी ब्रांड्स हैं, उनको आप लगा सकते
0: इस्तेमाल कर
1: हैं।
0: सकते हैं,
1: यस, उनको
0: लेकिन
1: आप
0: सबसे पहले आपको ये अपने बारे में जानना है कि आपकी त्वचा चाहती क्या है,
1: चाहती क्या है।
0: उसके लिए आपको किसी न किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करना होगा,
1: हाँ
0: मिलना
1: जी,
0: होगा, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी, हाँ जी,
0: अपने बारे
1: क्योंकि
0: में जानना ज़रूरी है।
1: क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स जितने भी मार्केट में आ रहे हैं, या फिर अगर हम होम रेमेडीज़ भी कहते हैं, सारी होम रेमेडीज़ की पोटेंसी, कंसिस्टेंसी और किस त्वचा पे क्या लगना चाहिए वो अलग है। अगर आप अपने आप उसको डिसाइड करेंगे, तो आप उसको ठीक करने के बजाय और ख़राब कर सकते हो।
0: जी, बातचीत तो हम जारी रखेंगे आपके साथ, लेकिन इस प्रोग्राम में हम अपनी मेहमान की पसंद का एक गाना भी शामिल करते हैं। कोई अपनी पसंद का गाना बताइए।
1: अजीब दास्तां है ये।
0: लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना हम आपके लिए प्ले करते हैं, दिल अपना और प्रीत पराई, इस
1: थैंक यू
0: फिल्म से
1: सर।
0: ये गाना है।

0: संजीवनी प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य कमलप्रीत धीमन, जो हमें स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में जानकारी दे रही हैं। एक आयुर्वेदाचार्य की नज़र में हमारी त्वचा क्या है और इसकी संभाल कैसे होनी चाहिए। अब हम मौसम की बात करते हैं, तो मौसम आते हैं जाते हैं, हर तरह का मौसम है हमारे यहाँ, तो वो भी हमारी त्वचा पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं।
1: जैसे हम कहेंगे आदान काल, जिसे समर सोलिस्टिस कहते हैं हम, समर सोलिस्टिस होता है, जैसे विंटर हमारा हो गया और स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, इन ऋतुओं में स्किन नेचुरली ड्राई हो जाते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो इन ऋतुओं में हम फील करेंगे कि हमारी स्किन ड्राई हो गई है, फ्लेकी हो गई है और इचिंग की प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल की मसाज कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल की यूज़ कर सकते हैं और तिल के तेल की मसाज अपनी बॉडी पर कर सकते हैं, जिससे ड्राइनेस जो है वो कम हो सकती है।
0: लगा सकते हैं।
1: जैसे हम बात करेंगे विंटर सोलिस्टिस की, तो इनमें ऋतुएँ आती हैं जैसे शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और वर्षा की ऋतु जो होती है, ये सारी विंटर सोलिस्टिस में आती हैं। तो इन ऋतु में मोस्टली स्किन ऑयली होती है, तो हमने ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे नहीं लगाएंगे और ना ही खाने में ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट हम लेंगे। तो उसमें हम मुल्तानी मिट्टी का लेप अपनी फेस पे लगा सकते हैं, ताकि जो ऑयल हमारी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कम कर सकें।
0: जी, हमारी त्वचा ग्लोइंग
1: रहेगी,
0: कंडीशन में रहेगी। अच्छा डॉक्टर, स्ट्रेस का कितना असर त्वचा पर होता है?
1: ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाते हैं, तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे सेल्स को अंदर से डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन में रिंकल्स, पैचिनेस और ड्राइनेस ये सारा आना शुरू हो जाता है।
0: जी, हाँ जी। तो स्ट्रेस तो देखो होता है सभी को, कोई इनकार नहीं करता। मुझे लगता है स्ट्रेस एक हिस्सा है, बस डिपेंड ये करता है कि हम उसे कैसे मैनेज करते हैं।
1: हाँ जी, तो स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं योग के द्वारा। तो योग में ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं, मुद्राएं हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जब आप तनाव में होते हैं तो उस वक्त आप कौन सी ऐसी योग क्रियाएं हैं या आसन हैं जिन्हें करके अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं?
1: आप सबसे पहले इसमें फिजिकल का

0: ही आता है कि आप सूर्य नमस्कार रेगुलर करें, क्योंकि उससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। और अगर हम ध्यान की बात करें तो उसमें हम लोग बहुत सारी प्राणायाम आते हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये सब आप कर सकते हैं।
1: आजकल फैशन में भी है और हमेशा बात होती है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो डिटॉक्स करना स्किन के लिए बेहतर रहता है
0: डिटॉक्स करना
1: कि
0: बहुत
1: किसी
0: है।
1: खास कंडीशन में ही करना होता है?
0: हाँ जी, मैं इसके बारे में बात करूँगी कि ये आजकल फैशन में चल गया है कि हमने रूटीन में डिटॉक्स करवाना है अपनी बॉडी को। बट ऐसा नहीं है कि डिटॉक्स आपको अपनी मर्जी से आप साल में 3 बार 4 बार ऐसे करवा रहे हैं। तो किस पेशेंट को डिटॉक्स की ज़रूरत है वो आपका आयुर्वेदाचार्य ही डिसाइड
1: हाँ,
0: करेगा कि किस पेशेंट को करना है, किसको नहीं करना है।
1: वही आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद,
0: हाँ जी,
1: आपसे बात करने के बाद
0: हाँ
1: एक
0: जी,
1: आयुर्वेदाचार्य इस बात को तय
0: हाँ
1: करता
0: जी। तो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है कि चलो हम
1: है।
0: चलते हैं डिटॉक्स करवाने,
1: हाँ,
0: बट ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी कौन सी प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि आपको कैसा डिटॉक्स करना है और करना भी है कि नहीं करना है।
1: मतलब किसी खास कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने आयुर्वेदाचार्य से मिलना
0: मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: वो आपको बताएगा कि आपकी स्किन क्या चाहती है, वो क्यों खराब हुई है, उसे कैसे वापस किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर, हमारी बातचीत में आपने ये बताया कि आहार का, भीतर से हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं ना,
0: हाँ जी,
1: उसका हमारी स्किन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें बताइए कि मोटे तौर से कि अपने आहार में किन-किन चीज़ों को शामिल किया जाए, किन चीज़ों को ना शामिल किया जाए।
0: 3 चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में। कहा गया है कि अति आहार, अति आहार होता है ओवर ईटिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, टेस्टी लग रहा है खाना, अच्छा लग
1: चलो
0: रहा है,
1: आने
0: तो चलो
1: दो
0: आने दो
1: आने
0: आने दो, एक रोटी खाई, दो खाई,
1: दो।
0: 3 खाई, तो ऐसे समोसे आ रहे हैं, एक की जगह दो खा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वो होता है अति आहार। और एक होता है मिथ्या आहार। मिथ्या आहार होता है इम्प्रॉपर डाइट, हॉट और स्पाइसी फूड खाना ज़्यादा, रोटन फूड खाना, पुराना फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाना, वो हो गया मिथ्या आहार, इम्प्रॉपर फूड खाना। विरुद्ध आहार, जैसे कि दो चीज़ों, जो दो फूड, एक ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको हम कंबाइन नहीं कर सकते, उनको कंबाइन करके खाना। जैसे हम कहते हैं घी और शहद, इनको मिला के नहीं खाना चाहिए, इकट्ठे नहीं लेना चाहिए,
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: जी
0: इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। दूध और मछली, इनको नहीं खाना चाहिए। तो एंशियंट टाइम में इनको 3 चीज़ों में लिया गया है, अति आहार और मिथ्या आहार और विरुद्ध आहार। तो इन सब चीज़ों से हमने बचना है। जैसे हम कहेंगे कि एक्सेस में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हमें चाइनीज़ फूड, अचार, चाट, पूरी, परांठा, पिज़्ज़ा, बर्गर,
1: मतलब स्वाद के
0: कचौरी,
1: तौर पर कभी कभी आप इस्तेमाल कर
0: हाँ
1: सकते
0: कभी
1: हैं।
0: कभी खा सकते हैं। अब इडली डोसा, कुछ लोग समझते हैं कि इडली डोसा बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बट उसको भी अगर आप एक्सेस में खाओगे तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो उससे भी आप, हाँ जी,
1: अच्छा,
0: तो और जैसे हम कहते हैं कि तिल है, तिल का तेल हेल्दी माना जाता है खाने के लिए, पर तिल के तेल को अगर आप ज़्यादा लोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खाना शुरू कर दोगे, तो वो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम लेके आएगा।
1: यानी एक चम्मच काफी है दिन
0: हाँ
1: में?
0: जी, हाँ जी,
1: जी
0: तो ऐसा नहीं है कि आप तिल का तेल अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करने शुरू हो जाओगे, तो उसको हम आयुर्वेद में कहते हैं कि उसमें कुष्ठ की जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ जी,
1: तो कौन सा तेल बेहतर रहता है आमतौर से हमारे रसोई घर में इस्तेमाल जो होता है? सरसों का तेल।
0: सरसों का तेल भी अच्छा होता है। हमें तेल का अगर हम बात करें तो तेल की हमें रोटेशन में रहना चाहिए। तेल जो है, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया आपका, सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इनको आपने यूज़ करना है, बट इनको रोटेशन में यूज़ करना है। जैसे एक दिन आपने कोकोनट ऑयल में खाना बनाया, दूसरे दिन आपने सरसों के तेल में खाना बनाया, तीसरे दिन ऑलिव ऑयल में
1: मदद
0: बनाया,
1: चेंज
0: चौथा,
1: करते रहे।
0: चेंज करते रहना,
1: तो
0: ताकि,
1: आयुर्वेद में ऑलिव ऑयल का जिक्र है?
0: हाँ जी, जैतून के तेल का,
1: है
0: हाँ जी, जैतून
1: जी
0: एक तरह से हर्ब है, तो उसका जिक्र है।
1: जी
0: हाँ जी,
1: डॉक्टर कमलप्रीत, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई संजीवनी में, और आज आपने आयुर्वेदाचार्य की नज़र में हमारी त्वचा कैसी होती है, उसकी देखभाल कैसे की जा सकती है, इन तमाम बातों के बारे में बताया। जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहें?
0: मेरी तरफ से यही संदेश रहेगा कि अच्छा खाएं और अच्छा विहार करें, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें और खुश रहें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहें। इससे आपकी स्किन भी शाइन करेगी, ब्राइटर रहेगी, और आपकी अपनी हेल्थ भी ब्राइटर रहेगी।
1: तो डॉक्टर कमलप्रीत, आप हमारे संजीवनी प्रोग्राम में आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पधारने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी प्रेम सिंह ने। अब अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना

0: और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अभी आपने सुना कार्यक्रम संजीवनी।
2: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।

0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओ, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ गीत लेकर आए हैं। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे संगीतकार राम लक्ष्मण को भी। तो पहले सुनते हैं राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में ये गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर, एसपी बालसुब्रमण्यम और साथियों की, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां। बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण का संगीत। नूर कसकार का लिखा गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा की, फिल्म का नाम महबूब मेरे महबूब।

0: राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में रविंद्र रावल का लिखा गीत आपने सपना अवस्थी का गाया हुआ सुना। फिल्म का नाम था दुल्हन बनू मैं तेरी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
6: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
7: क्या बात है।
6: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
5: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
6: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
7: बिल्कुल।
5: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत, और अब सुनते हैं गीतकार प्रसून जोशी की गीत रचनाएं। फिल्म का नाम है दिल्ली सिक्स, आवाजें रेखा भारद्वाज और साथियों की प्रसून जोशी के बोल ए आर रहमान की धुन।

कार्यक्रम में आप सुनिए जतिन ललित का संगीत, प्रसून जोशी के बोल, शान और कैलाश खेर की आवाजें, फिल्म का नाम है फना।

0: कार्यक्रम का अगला गीत A.R. रहमान के संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का ही लिखा हुआ, स्वर हैं बेनी दयाल श्रेया घोषाल के, फिल्म का नाम है गजनी।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम तुम का युगल गान, आवाजें अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की, गीत प्रसून जोशी का और धुन जतिन ललित की।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपको बता दें कि आज हमारे केंद्र से कौन कौन से कार्यक्रम किस समय पर पेश किए जाएंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद 1:05 पर हमारे केंद्र से प्रादेशिक हिंदी समाचार और 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बजकर 15 ये समय रहेगा फिल्म संगीत का। 5:05 पर एक बार पुनः आप आनंद उठाएंगे फिल्मी गीतों का। 5:20 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम लम्हे और 5:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। साय 6:10 पर प्रादेशिक हिंदी समाचार हमारे केंद्र से पेश किए जाएंगे। 7:45 पर भी और 10:30 पर भी। 6:20 ये समय रहेगा प्रादेशिक पंजाबी समाचारों का, जो आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे। सात बजकर 47 पर आप आनंद उठा सकते हैं पंजाबी गीतों का। 8:15 ये समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी का।

सूर्यसांझ कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 10:32 पर। अगर हिंदी समाचारों की बात करें तो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 2:15 पर, सायं 5 बजे, 6 बजे और 8:45 पर समाचार संध्या, ये कार्यक्रम थे जो आज हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं।

अब आपको बता दें कि विविध भारती से मुख्य कार्यक्रम कौन से हैं और उनका प्रसारण समय क्या है। 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आज के मेहमान साहित्यकार लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ से ममता सिंह की बातचीत। आठ बजे सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम हवा महल, जिसमें नाटिका आप सुनेंगे पर्दाफाश। 9:30 पर आज के फनकार में संगीतकार होंगे राम लक्ष्मण। तो ये थे विविध भारती से आज पेश किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय।

श्रोता एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम से संबंधित एक सूचना आप सुनिए। आज 3:30 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम का इस बार विषय रहेगा अर्थराइटिस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल, कोई शंका जिसका आप समाधान चाहते हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज दोपहर बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619 और एसटीडी कोड है 0172। हमें आपके फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। सूचना समाप्त हुई।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि चुनिंदा व्यापारी लेन देन पर एक संशोधित यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क पेश किया गया है, जो अगले महीने की 15 तारीख से प्रभावी है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई को मुफ्त रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2,000 रुपये से अधिक व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर 0.4% का नाममात्र मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया जाएगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के उच्च मूल्य वाले लेन देन के लिए MDR प्रति लेन देन 300 रुपये तक सीमित किया जाएगा। यूपीआई ऐप प्रदाताओं को प्लेटफॉर्म शुल्क या छिपे हुए शुल्क लगाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान के लिए ग्राहकों को MDR शुल्क न दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता होने के साथ साथ हमें जीवन जीने की सकारात्मक प्रेरणा भी देते हैं। गणेश जी का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसके जीवन में कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। मुख्यमंत्री फरीदाबाद में आयोजित भव्य गणेश महोत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। गणेश उत्सव में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष व प्रथम महिला मित्रा घोष ने भी शिरकत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से शुरू हो रहे सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए पलवल में अधिकारियों की बैठक ली। खेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि नागरिकों तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर मिलकर प्रयास किए जाएं। मीडिया से बातचीत में श्री गौरव गौतम ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत समाज में सेवा, सहयोग और जन भागीदारी की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए सेवा को केवल एक गतिविधि तक सीमित रखने की बजाय इसे सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। सिरसा जिले में बिजली बिल अदा न करने वाले 1,39,353 उपभोक्ताओं को बिजली निगम ने डिफॉल्ट

डिफॉल्टर घोषित किया है, जिन पर 106 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। निगम ने अब बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। बिल अदा न करने वाले 32,621 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे भी गए हैं, जिनका 52,83,00,000 का बिल बकाया था। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत चंडीगढ़ में पोषण, स्वास्थ्य एवं जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

बकाया था। नौवें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत चंडीगढ़ में पोषण, स्वास्थ्य एवं जागरूकता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जो एनीमिया की रोकथाम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार तथा सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित रही। मलोया कॉलोनी में पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त आहार पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में आयुष विभाग के सहयोग से एनीमिया जांच शिविर तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पंजीकरण शिविर लगाया गया। धनास में भी पात्र गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए विशेष प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत नामांकन किया गया। भिवानी में गौरक्षक दल के सदस्यों ने औद्योगिक क्षेत्र में समय पर इलाज न मिलने के कारण एक बीमार कुत्ते की तड़प तड़प कर हुई मौत के बाद उन दो ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दीआं दिलो वधाईआं।
2: फिल्म संगीत का आनंद आप उठा रहे हैं और अब आप सुनेंगे उदित नारायण आशा भोसले को फिल्म प्यार तो होना ही था मैं।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: उदित नारायण की आवाज में होगी प्यार की जीत फिल्म का ये था अंतिम गीत। संगीत दिया आनंद मिलिंद ने। फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
3: 10 साल

0: कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम से संबंधित अब एक सूचना सुनिए। आज 3:30 तक हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर शेफाली शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़। एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम का इस बार विषय रहेगा अर्थराइटस यानी गठिया रोग। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल, कोई शंका जिसका आप समाधान चाहते हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं तो आज दोपहर बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। एसटीडी कोड है 0172। हमें आपके फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इसी फिल्म में एक और गाना है याहू, है ना। ये गाना हमें बेहद पसंद आता है और जब भी हम खुश होते हैं तो इसी अंदाज में गाते हैं याहू। बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दे दिया है कि वो कौन सा गीत है। वो यही गीत है चाहे मुझे कोई जंगली कहे। और भी श्रोताओं ने लिखा है कि श्रीदेवी का हवा हवाई गाना उन्हें बहुत पसंद आता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे उल्टे पुल्टे गीतों में मुझे जब जब फूल खिले का गीत रफी साहब का है वो पसंद आता है। और फिल्म कारवां का भी जो आशा जी की आवाज़ में है कि मैं कहाँ आप फंसी, वो वाला गाना इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता को किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे सामने वाली खिड़की में उस गाने की जो शुरुआत है वो बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को यम्मा यम्मा जो गाना आर डी बर्मन की आवाज़ में है वो बेहद पसंद आता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के गीतों में अटपटे या बेतुके शब्दों जिनका शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है का इस्तेमाल बहुत पुराना है। इसके साथ साथ कुछ गीतों में दूसरी भाषा के शब्द या वाक्य का प्रयोग गीत के मीटर को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, लेकिन वे बेतुके नहीं होते और उनका अर्थ होता है, जैसा कि दो फूल का गाना है मुत्तु कोड़ी कवाड़ी हड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो निरर्थक नहीं है, लेकिन चूंकि हम तमिल गीत को नहीं समझ पाए, उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, उस वाक्य को नहीं समझ पाए, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या दिया है गीत करने, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा है जब हम समझते हैं तब पता चलता है। लेकिन उसको सुनते समय हमें लगता है कि कितना बेतुका सा शब्द लगता है, है ना। और वहीं और सारे गानों का जिक्र भी आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अभी मुंबई की उड़ान पर हूं, इसलिए आज के दिलचस्प कार्यक्रम में प्रतिभागी नहीं बन रहा हूं, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। अरे आप तो हमारे नियमित श्रोता है और लगातार लिखते हैं, अच्छी बात है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम ये उम्मीद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का अंदाज और मधुर आवाज का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में मंदाकिनी जी अपने आप में एक ऑल राउंडर उद्घोषिका हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आपने हमारी तारीफ में लिखी है कुछ चंद पंक्तियां, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता लिखते हैं कि सच में संगीत अद्भुत कला है जिसे वरदान स्वरूप इंसानों को मिला है। कई पुराने गीतों में उटपटांग शब्दों को भी इतने सुंदर तरीके से लिखा गया है, ढालकर प्रस्तुत किया गया है कि आश्चर्य भी होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर गीतों से सजे हुए सुरीला सफर में कई दोस्तों को नमस्कार लिखते हैं और हमें भी हंसती खिलखिलाती हुई। अच्छा हाँ, धन्यवाद, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में गीत शब्दों का

0: अर्थ घटन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है, चाहे टिम्बकटू हो या काठमांडू, लारालप्पा कहते हुए अपलम चपलम हो, गापूजी गापूजी हो, या फिर देखिए डमडम डिगा डिगा होता है, अगर नहीं हुआ तो इनामिना डिका होगा, और होना ही है। विविध भारती के लिए इतना जरूर कहते हैं कि आहा झमाझम प्यारे प्यारे गीत लिए, जब छोटी बहना मंदाकिनी जी आ रही है तब झिंगुर तो बोलेगा, और चिकी मिकी जब हमारी नजर टिकी हुई है घड़ी की सुई की और, तो कब एक बजने वाला है और चिल चिल के कजरी सुनने को मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है, शुक्रिया मेहरबानी।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन, ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता, वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल, वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़, कॉल 9876277700।

0: हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। आप लिखते हैं कि अजी किबला मोहतरमा ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये मोहरा फिल्म का गाना हमें पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार का फिल्म मिस मैरी का गाना गाना न आया बजाना न आया ये गाना बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमसे आंख मिलाना बीए पास करके ये गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता को किशोर कुमार जी का एक गाना पसंद है जगत नारायण की जय जय बोलो और नगद नारायण छोड़ो, उसमें भी बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, शब्द आते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हैं। वहीं एक श्रोता को मुझे संगम फिल्म का गीत लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया ये गाना बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है आज तो आपने मेरी मनपसंद का ये सबसे मनपसंद गीत सुनवा दिया जिसमें किशोर कुमार की आवाज़ है। और मैं अभी यही बताने वाला था कि मुझे ये गीत बहुत पसंद है, आपने जो सवाल पूछे थे उसका पहला जवाब यही है कि किशोर कुमार का गाना ये गीत हमें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गीत याद आ रहा है मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू ये गीत बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता को हेलन जी पर फिल्माया गया गाना आ जाने जा इसमें जिंगा लाला हू जो शब्द आते हैं वो इन्हें बेहद पसंद आते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये शालीमार फिल्म का गाना है इसमें ये पंक्तियाँ आती हैं झिंगा लाला हुर हुर ऐसे करके आती हैं। तो आप कहते हैं कि इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया मंदाकिनी जी, लेकिन गाने का आनंद तो आप उठाते हैं ना। एक श्रोता को इलू इलू गाना जो था वो बहुत पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नीलकमल पिक्चर का गाना है खाली डिब्बा खाली बोतल ये बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता को पाँच रुपया बारह आना गाना जो है किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ वो बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन फिल्म का गाना इन्हें बेहद पसंद है, साथ ही फिल्म झुमरू का गाना आपने लिखा है जा रे जा तू मुँह धो के आ जहाँ किशोर कुमार और आशा भोंसले इस गीत को गाते हैं वो गीत बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू वाला गाना बहुत पसंद है। और एक श्रोता को पड़ोसन फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है, साथ ही एक श्रोता ने लिखा है कि डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा ये गाना हमें बेहद अच्छा लगता है।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
1: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्ध।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि इन अटपटे और अर्थहीन जैसे लगने वाले शब्दों को लोगों के दिल तक पहुंचाने में सचमुच संगीतकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत दिनों बाद ये तक धुम धुम गाना सुना, अटपटा है मगर सुर लय के कारण बहुत ही कर्णप्रिय लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई भी गाना निरर्थक नहीं होता, जो संगीत मन को भा गया वही अर्थपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कभी गीत निरर्थक नहीं होता। हमने कहा कि हमें कुछ शब्द ऐसे लगते हैं जो बेतुके से लगते हैं या निरर्थक लगते हैं, तो लेकिन उनका इस्तेमाल कितने खूबी के साथ किया गया है कि वो गीत हमारे मन में एक छाप छोड़ जाता है, तो उन गीतों का जिक्र आज हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बेतुके शब्दों से बने गीत अक्सर आपस में खेली जाने वाली अंतराक्षरी की शान होते हैं, जिसे सब बढ़ चढ़ कर गाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आप हर बार नया विषय खोजकर लाती हैं जो आपके रिसर्च वर्क को दर्शाता है। दूसरे आपकी इबारत एकदम

पीतूली है, टू द पॉइंट, कोई फालतू बात नहीं है, गागर में सागर की तरह। आज अटपटे शब्दों वाले गीत विषय पर मुझे एक अलग तरह का गाना याद आ रहा है, मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में है, और तारा रम पम पम पम करके ये गाना है जो इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हमारा दिमाग सुन्न हो गया है कुछ भी गाने समझ नहीं आ रहे हैं। अरे आप इस कार्यक्रम को सुनने के बाद तो आपको लगा होगा ना कि आज हमने किस तरह के गीतों को चुना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्य में इबारत की बात सामने आई है, आज कुछ ऐसे गीतों की बाहर है जिनके शब्दों में अर्थ भले ही हमें शब्दकोश में न मिलते हों, लेकिन उनकी धुन, सुर, लय, ताल हमारे जहन में है ना, कितनी अच्छी बात। अरे दिल तो अभी से ही हक्कू बक्कू करने लगा है। और आपने कई शब्दों का जिक्र भी किया है जो किशोर दा अपने गानों में अक्सर करते हैं, ओ पांडुबा, है ना, इस तरह के गाने किशोर दा ने बहुत गाए हैं, उनका जिक्र आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के गीतों की गणना हास्य गीतों में की जा सकती है, और हर जीवन में हास्य की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जीवन की आपाधापी में प्राय सभी के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। इस दृष्टिकोण से आज का ये इबारत प्रशंसनीय है, अपितु सराहनीय भी है। अब देखिए ना, पुराने किशोर कुमार अभिनीत फिल्म आशा में किशोर कुमार ने एक गीत गाया है ईना मीना डी का, और संजीदगी से भरा वो गीत है, लेकिन जब उसे सुनते हैं तो उसका कुछ और ही रूप नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, जब इस गाने का जिक्र हो गया है तो सुन लेते हैं यही गीत। सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है आशा।

तो किशोर कुमार और साथियों को आपने सुना, फिल्म का नाम था आशा। और ये गीत तो हमने कई बार कई जगह गुनगुनाया भी है और कई कार्यक्रमों में हमने इस गीत को बखूबी और लोगों को गाते सुना भी है। लोग कोशिश करते हैं कि इस गीत को किस तरह से हास्य से परिपूर्ण बना दिया जाए, है ना? आपने भी कोशिश की कभी इस गीत को गाने की? बताइएगा। और अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हिम्मत वाला। बताइए इसमें कौन सी पंक्ति है जो हमें थोड़ा सा अटपटी लगती है लेकिन बड़ी मजेदार है?

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संगीत की उस अनोखी दुनिया की ओर ले जाती है जहां हर बात का अर्थ होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका कोई स्पष्ट मतलब नहीं मिलता, फिर भी वे धुन के साथ मिलकर यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे ही गीतों से जुड़ा है आज का ये कार्यक्रम और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र भी किया है जिनमें हमें ये अटपटे और चटपटे शब्द सुनाई देते हैं और वो गीत हमेशा के लिए यादगार बन भी जाता है। फिलहाल आज का कार्यक्रम यहीं तक और फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment.

श्रोताओं नमस्कार, त्रिवेणी में आपका स्वागत है। हम सूर्य को अक्सर एक पिता की उपाधि देते हैं, जो अपने बच्चों के जीवन को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए लगातार जलकर इस धरती को प्रकाशमान और जीवित रखता है। किंतु सूरज की इन जीवनदायी किरणों में कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी शामिल हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिता के प्यार के साथ उनका गुस्सा। और उस समय याद आती है माँ। यहाँ सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाने के लिए एक माँ की तरह हमारी ढाल बनती हैं ओजोन परत, जो इन पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुँचने ही नहीं देती और हमारी रक्षा करती हैं।

ओजोन की ये परत तो हमारी रक्षा करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफार्म जैसी कई खतरनाक रसायनों के लगातार प्रयोग से हमने इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है और ये पतली हो गई है, जिसे ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहा गया। इसका नुकसान ये हुआ कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचने लगी हैं और त्वचा के कैंसर, असमय मोतियाबिंद, कमजोर होती इम्यूनिटी के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन देर से ही सही, हमने ओजोन परत के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाया, क्योंकि हमें इसका महत्व समझ आ चुका है।

ओजोन परत के संरक्षण की ओर जागरूकता का परिणाम ये हुआ कि अब ओजोन होल कुछ हद तक बंद होने लगा है और हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रभाव भी कम होने लगे हैं। इस जागरूकता को बनाए रखने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हम प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयासों से अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे पुराने फ्रिज एयर कंडीशन की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहें, उपयोग न होने पर एसी न चलाएं, हानिकारक रसायनों वाले हेयर स्प्रे और अन्य पदार्थों का प्रयोग न करें, पुराने उपकरणों को रिसाइकल के लिए दें यूं ही ना फेंकें, वाहन का इस्तेमाल तभी करें जब अति आवश्यक हो, अन्यथा सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, सीएफसी मुक्त उपकरणों को ही खरीदें। इस तरह ओजोन परत के संरक्षण की ओर कदम बढ़ाएं ताकि प्रकृति से मिले अनमोल उपहारों का केवल लाभ ही ना उठाएं बल्कि इनके महत्व को भी बनाए रखें, क्योंकि इनके बिना जीवन संभव नहीं।

तो प्रकृति के उपहारों का लाभ उठाने के साथ साथ कीजिए उनका संरक्षण भी, ताकि बनी रहे जिंदगी। इस संदेश के साथ आज की त्रिवेणी संपन्न होती है। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
1: The question should not only be
2: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
0: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर

0: समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा है। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रूपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
3: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा

0: क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
4: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु की मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवे चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भगवान ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य

0: समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान की नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौजी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी थी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम आरती, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन।

ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे। फिल्म का नाम था आरती। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आशिक, आवाज मुकेश की, शब्दकार शैलेंद्र हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत SH बिहारी का लिखा हुआ, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम अपना बना के देखो।

0: अपना बना कर देखो।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है माँ बेटा। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और मुकेश। गीत रचना प्रेम धवन की और संगीत हेमंत कुमार का है।

0: हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब सुनते हैं फिल्म रंगोली का 2 गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। इसे शैलेंद्र ने लिखा है और तर्ज शंकर जयकिशन की है।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: सुनिए,
4: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: सुनिए,
4: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
4: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों।

0: को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: सखी सहेली
1: सभी सुनने वालों को, सखियों को, सहेलियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
2: और सभी श्रोताओं को, हमारी सखियों को, दीपा माहेश्वरी का, चंचल आपको भी,
1: दीपा माहेश्वरी का आपको भी
2: हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ जी, हेल्दी नमस्कार। और त्योहार आते हैं ना, तो उस वक्त हम इतने कई बार मसरूफ हो जाते हैं ना कि सेहत की तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं, रात को देर से सो रहे होते हैं, और खाने पीने का समय है वो भी अनियमित हो जाता है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी कुछ गड़बड़ा जाती है।
2: बिल्कुल, और खासतौर पर जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि सबको देने में, सबके लिए ध्यान रखने में, और जो घर में मेहमान आते हैं उनका ख्याल रखने में कहीं अपना ख्याल पीछे छूट जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले जो आगंतुक हैं, मेहमान हैं
2: जी,
1: हमारे अतिथि हैं, उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको पहले परोसा जाए, और सबका करते करते इतनी देर हो जाती है कि जो दोपहर के भोजन का समय होता है, 1 से 2 के बीच का, 3 बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं।
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कुछ होता है। और आज तो बहुत कुछ होने वाला है हमारे कार्यक्रम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें हम निभा रहे हैं
2: जी।
1: और यही अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे पाएंगे।
2: बात तो बिल्कुल सही है, और बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर के हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है, इसीलिए बात होगी। पहला विषय जो है हमने चुना है आज के लिए कि त्यौहार हमारी धरोहर, हमारी परंपरा, इस पे आप क्या सोचते हैं और आप कितना इसको आगे बढ़ाने में इसकी कोशिश जारी रख रहे हैं।
1: बिल्कुल, अगर कोई चीज को आगे बढ़ाना है, हमारी धरोहर को, तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है ना।
2: अरे बिल्कुल,
1: क्योंकि जब तक हम चीज कोई किसी को देंगे नहीं, वो उसको ग्रहण कैसे करेगा, और वो ग्रहण करेगा तभी तो आगे पहुंचाएगा, यही तो होता है आदान प्रदान।
2: बिल्कुल सही कहा। और देखो ना भाई, आदान प्रदान अच्छी चीजों का हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप पर्यावरण में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ लगातार अगर निकालते चले जा रहे हैं, तो फिर देखिए ओजोन परत के संरक्षण में गंभीर विषय अब बन चुका है वो, और उसमें कई सारी तकलीफें आ रही हैं। और यही बातों को समझने के लिए आज हम

0: ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: इस पर भी विस्तार से बात होगी और हमारे सुनने वाले शायद इस बात को समझ रहे हैं कि हम सीधे सीधे विषय नहीं बता रहे हैं, लेकिन बातों से उन्हें अंदाजा हो गया कि हम किन चीजों के बारे में, किन विषयों को लेकर आज बात करने वाले
0: अरे
1: हैं।
0: भाई इतना देखिए, गंभीर ना हो जाइएगा, आज व्यंजन भी है क्योंकि मोदक के कई सारे प्रकार चंचल हमें बनाने हैं और बहुत सारे संदेश आए हैं और बड़े मजेदार कुछ रेसिपीज भी हमारी सखियों ने लिख भेजी
1: तो
0: है।
1: तुमने ओजोन दिवस की जब बात की तो मुझे याद आया कि और भी दो महत्वपूर्ण दिवस आज हम मना रहे हैं। एक तो है हृदय में हस्तक्षेप द्वारा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर्स इसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस कहते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2022 में घोषित किया गया था और इसी दिन 16 सितंबर यानी 2077 को डॉक्टर एंड्रियास ग्रुटिजिक ने पहली बार एक सफल एंजियोप्लास्टी की थी, और इसीलिए दिल की जो बीमारियां हैं, जो सर्जरी है, उसके बारे में जागरूकता हो, इसलिए दिवस हम मना रहे हैं।
0: बिल्कुल। और ये दिवस के साथ याद आया चंचल, एक और मुख्य दिवस है आज, है दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सितंबर 2023 में इस दिन के आयोजन का फैसला हुआ था और 9 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव पारित करके 16 सितंबर को ये आधिकारिक दिवस घोषित किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करना, ताकि गरीबी, असमानता या जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और ये देश पीछे कहीं ना रह जाए।
1: बिल्कुल, जलवायु की बात होती है तो ओजोन की बात भी होती है, हम विस्तार से इन सब को लेकर बात करेंगे, लेकिन पहले गीत सुन लें।
0: गीत भी सुनेंगे भाई, साड़ियों का जो लगाव है उससे कैसे हम पीछे
1: अरे
0: छूट
1: हाँ भाई,
0: सकते
1: विषय
0: हैं।
1: बताते बताते हम ये तो भूल ही गए कि आज साड़ियों की बात भी होनी है, तो आज कौन सी खास साड़ी की बात होगी?
0: आज हम करेंगे मोठड़ा साड़ी। आप बताइएगा कौन से प्रदेश से आती है ये साड़ी।
1: जी

0: यशुदास की आवाज़ में बहुत खूबसूरत ही गीत हम सुन रहे थे। और गीत से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस की भी हमने बात की, इन्हीं में से एक है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और ओजोन दिवस भी कहते हैं इसे हम।
1: बिल्कुल,
0: सूरज की प्रकाश, सूरज का जो प्रकाश है ये हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन जो ओजोन परत है वो जीवन के रूप में से संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। और ओजोन परत गैस की एक बहुत नाजुक ढाल की तरह होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह से ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी बहुत मदद करती है।
1: बिल्कुल, और अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती।
0: हाँ।
1: ये समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चंचल, ओजोन परत यूवीबी जो नाम की यूवी प्रकाश के जो हिस्से हैं उसे अवशोषित कर लेती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा में अल्ट्रा वायलेट रेज को जानते हैं,
1: जी।
0: तो वो सीधे हम तक ना पहुंचे, इसीलिए बहुत झिल्ली जैसी एक लेयर होती है।
1: हाँ, तो ये कई तरह से कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव हम पर डालती है, और शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन
0: हाँ,
1: है
0: सही
1: ना।
0: कहा।
1: और इस दिवस का आयोजन करने के कारण भी ये खास है। ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान खींचना बहुत आवश्यक है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ओजोन परत जो है जो हमारी सुरक्षा कर रही है उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इस बारे में ध्यान खींचा जा रहा है। और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इसे खतरनाक गैसों से बचाना है। सबसे ज़्यादा खतरनाक गैसों में कुछ हैं CFC, जिसे क्लोरोफ्लोराइड कार्बन के नाम से हम जानते हैं, हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन और मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। और जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला कि मानवता इस सुरक्षा कवच में छेद कर रही है, यानी कि हम ही लोग इसको बिगाड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने इसके प्रति चिंता जताई कि इस तरह से अगर ये होता रहेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और हमारा हम जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनसे जो गैस निकलती है ना, ये वही गैसें हैं जो इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं।
1: बिल्कुल, और जो हमारे जो निजी साधन है परिवहन के, उनका अधिक उपयोग करने से भी बचना है, और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने का प्रयास कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल, जो बहुत ही अच्छे ये समाधान है। इससे पहले हम घर में भी काम कर सकते हैं।
0: हाँ
1: वो कैसे कि भाई, अगर आप हर कमरे में एयर कंडीशन चलाकर हर
0: जी,
1: परिवार का एक एक सदस्य अलग अलग कमरे में
0: जी
1: बैठेगा और हर रूम का अलग अलग AC चलाएगा, तो बताइए कि कितना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: वो गैस कितनी ज़्यादा हवा में फैल रही है। इसके अलावा आपका भी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है, तो दोनों ही नुकसान को हम बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप AC को एक या तो कमरे में चला लीजिए, फिर भी ना संभव है तो कुछ इस तरह से कीजिए कि सारे लोग एक वक्त तो एक ही जगह
0: जी
1: पर बैठें। उसके साथ में बहुत ज़रूरी है कि आप खिड़की दरवाजे थोड़ी सी देर खुले रखिए, स्वच्छ और शुद्ध हवा का
0: जी
1: आवागमन भी घर के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में ओजोन परत के बचाव को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके, इसे संरक्षित करने के संभावित उपाय खोजे जा सकें। इसे देश दुनिया ओजोन परत पर बातचीत करती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं ताकि इसकी सुरक्षा हो सके।
1: बिल्कुल, और चंचल ये दिन हमें याद दिलाता है कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना हमें आज से ही जारी रखना होगा।
0: बिल्कुल, जिस तरह से हमारे लिए हवा पानी ज़रूरी है, सूरज की किरणें भी ज़रूरी हैं, तो सूरज खुद जलकर हम तक ये रोशनी, प्रकाश और बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंचाता है। वो जलता रहे लेकिन उसे कोई नुकसान ना पहुंचे।

0: तो भाई सूरज की सुरक्षा के लिए, यानी कि हम सब सूरज की जब रोशनी हमें मिलती है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हम तक ना पहुंचे, उसकी सुरक्षा के लिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है,
0: और
1: और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी
0: हमारे
1: है।
0: श्रोता भी इसी बारे में बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि ये एक महत्वपूर्ण परत है और शहकारी पदार्थों का उपयोग कम करना जरूरी है, पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाना होगा, लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, ओजोन परत की रक्षा हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की रक्षा करना है। ये
1: जी
0: लगभग सभी
1: सभी
0: हमारे
1: के,
0: श्रोताओं ने
1: हाँ
0: लिख कर
1: जी हाँ
0: भेजी है।
1: बिल्कुल इसी तरह के आए हैं। और देखिए ना, जब ये सारी बातें होती जागरूकता की, तो एक चीज़ की और जागरूकता आ जाती है कि जब त्यौहार आ रहे हैं तो मन कैसे एकदम जागा जागा सा रहता है, बिल्कुल है ना, खुश खुश रहता है, और घर में सारा चहल पहल लगी रहती है। सुबह जल्दी उठना है कोई परिवार का सदस्य, क्योंकि कुछ तैयारी करके देर से सोया है, तो कुछ परिवार के सदस्य जल्दी उठ करके उसकी तैयारी कर रहे होते हैं।
0: ये देखिए ना,
1: और
0: ये जो सावन का महीना आता है ना,
1: जी
0: इसमें तीज, फिर रक्षाबंधन, फिर खत्म होते होते फिर ये जो आते हैं गणेश चतुर्थी, और महाराष्ट्र में तो चलिए बहुत धूमधाम से मनाया ही जाता है, अब तो देश के हर हिस्से में ये
1: बिल्कुल
0: बहुत धूमधाम से मनने लगा है।
1: जी।
0: इसके
1: और
0: खत्म होते होते कुछ दिन बाद ही फिर नवरात्रि आ जाएंगे, फिर दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और यूं जो सिलसिला है ना, अभी रुकने नहीं वाला है।
1: बिल्कुल, वो इसलिए रुकने नहीं वाला है चंचल, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं। और जीवन में त्यौहार ये सिर्फ कैलेंडर पे आने वाली तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं से जुड़े खूबसूरत अवसर होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और हमारे देश में अगर त्योहारों का देश कहा जाए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये
0: हाँ
1: अलग अलग धर्म है, भाषाएं हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हर त्यौहार के पीछे एक भावना दिखाई देती है, खुशियां बांटना और लोगों को एक दूसरे के करीब लाना।
0: देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार तो होते ही हैं दीपा, लेकिन एक ही त्योहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं खान पान का थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं पहनावे का, तो कुछ कुछ रीति रिवाजों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें होती मिलती जुलती ही हैं, जो उनका मतलब है, अर्थ है, वो एक ही होता है।
1: जी
0: अब दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरुपर्व, पोंगल, गणेश उत्सव, नवरात्र, हर त्यौहार का जो है अपना एक अलग रंग होता है।

0: स्वाद होता है और एक संदेश लेकर भी वो आता है।
1: बिल्कुल
0: त्योहारों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो अपने जड़ों से जुड़ती हैं, रीति रिवाजों को जानती हैं और जो हमारे पूर्वज हैं वो बड़े प्यार से इन चीज़ों को संजो कर रखते हैं।
1: और त्योहारों की सबसे सुंदर बात चंचल ये लगती है कि इसमें परंपरा के साथ अपनापन जुड़ा होता है। और त्योहार आते ही देखो ना, घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है, तरह तरह के पकवान बनते हैं, फिर घर भी सजता है, रिश्तेदारों को और मित्रों को हम जो मिलने मिलाने का एक सिलसिला सा शुरू हो जाता है, कहीं पर हम आमंत्रण दे रहे हैं, कहीं पर हम आमंत्रित हैं, इस
0: जी
1: तरह की बातें भी होती है। और कई बार तो त्योहारों का इंतजार इसलिए भी होता है कि इसी बहाने परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और फिर वो पुरानी यादों को फिर से जिया जाएगा।
0: बिल्कुल, जब हम दिवाली मना रहे हैं तो पिछली दिवाली पर क्या हुआ था ये याद करते हैं,
1: हाँ
0: इस साल जब हम गणेश उत्सव मना रहे हैं तो याद
1: जी
0: करते हैं कि पिछले साल मूर्ति कैसी थी, कौन कौन मेहमान आए थे, किस तरह से धमाल मस्ती हुई, क्या पकवान घर में बनाए गए थे। ये पिछली जो बातें होती है ना वो यादों की एक फहरिस्त तैयार होती जाती है।
1: बिल्कुल। और परंपराएं केवल पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं होती हैं, इनसे पीछे जीवन को बेहतर बनाने की सीख भी छिपी होती है चंचल। जैसे दीपावली हमें अंधकार पर प्रकाश का विजय का संदेश देती है, होली आपसी भेदभाव भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने की सीख देती है, फिर देखिए ना ईद हमें भाईचारे और साझेदारी का संदेश देती है, तो क्रिसमस प्रेम और करुणा की भावना हमें जगाता है हमारे अंदर। यानी हमारे त्यौहार हमें हर साल याद दिलाते हैं मानवता, प्रेम और सद्भाव ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: और हमारे एक संदेश में हमें बताया गया है कि त्यौहार हमारी धरोहर और हमारी परंपराएं हैं। हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि पूरे साल हम विभिन्न त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाते हैं जो हमारी धरोहर हैं और हम परंपरा के अनुसार इन्हें मनाते हैं। जैसे इस समय हम गणेश उत्सव मना रहे हैं, हमने घर में पूजा के कमरे में मिट्टी से बने हुए गणेश जी की स्थापना की है। 11 दिनों तक सुबह और शाम घर के सभी सदस्य आरती में उपस्थित रहते हैं। एक बेटी है जो कि बाहर जॉब करती है, बाहर उसकी पोस्टिंग है, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल के माध्यम से इस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है। और यही हमारी धरोहर है, हमारी परंपरा है। कई सालों से इस परंपरा को हमारे घर के सभी बड़े निभा रहे हैं, इसे हमने भी कायम रखा है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं ना कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को पूंजी के रूप में इन चीज़ों को सौंप कर जाने वाले
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारे जो हमारी सखी है उन्होंने कुछ अलग अंदाज में लिखा है, वो कहती है, आए त्योहार खुशी की बहार, दीप जले सजे घर के द्वार, रंग बिरंगे उमंगों का मेला, रह न जाए कोई अकेला, मिलकर गाएं खुशियां मनाएं, प्यार का संदेश हम सब पहुंचाएं।
0: तो बस हर दुख छोड़कर, हर चीज को भुलाकर हम भी खुशियों की रंगरेलियां मनाएं।
1: चलिए।

0: भाई चंचल, देखिए गम छोड़ना तो चाहिए बिल्कुल, त्योहारों में मिलने का जो असली अर्थ तो वही है। साथ में हम ये परंपराएं क्यों मनाते हैं, क्यों ये हमारी धरोहर है, अपने आने वाली पीढ़ी यारे हमारे बच्चों को ज़रूर इस बारे में बताना चाहिए। क्यों विशेष व्यंजन बनते हैं, जैसे कि प्रकृति के अनुरूप जो जो उस वक्त उपलब्ध होते हैं,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: आप धान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए, फल सब्जियां जो भी उपलब्ध होती हैं उस वक्त प्रकृति के हिसाब से, जो भी वो पैदावार होती है,
1: जी
0: उनसे जुड़ी हुई व्यंजन जब बनते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे क्यों ये बनाया जाता है, इस पे
1: हाँ
0: विचार विमर्श हो, उस पे डिस्कशन घर में बैठ के कीजिए, आप देखिए इतना आनंद आएगा और बच्चों में जो ज्ञान वर्धन होगा उसके बाद वो वाकई में हमारी परंपराओं और हमारी इन धरोहरों की जो असली महत्वपूर्ण इसकी
1: जी
0: महत्ता है उसको समझेंगे।
1: बिल्कुल। बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि भाई आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो चावल के आटे वाला ही मोदक क्यों
0: क्यों
1: लगाते
0: लगाते
1: हैं,
0: हैं?
1: अन्नकूट पर पूजा करते हैं तो क्यों उस समय ये वाली ही सब्जियां बनती हैं। जैसे
0: जी
1: बहुत सारे, जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और जो त्यौहार हैं वो भी कृषि प्रधान बहुत सारे होते हैं, बैसाखी है, अन्नकूट है, पोला है, ऐसे ना जाने कितने त्यौहार हैं
0: बिल्कुल
1: जो कृषि पर ही निर्धारित होते हैं। जब नई फसल आती है ये अक्टूबर के महीने में,
0: जी
1: तब जो भी फल सब्जियां या धान उगाए जाते हैं उन सबका भोग लगाया जाता है अन्नकूट में।
0: जी
1: इसी तरह से बैसाखी में जब सरसों की खेती होती है, सरसों काटी जाती है, गेहूं कटता है और जो भी अनाज कटते हैं, तो उनकी उनकी वो खुशियां मनाई जाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और उन्हीं से ही जुड़ी हुई चीजें बनती हैं घर में, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: इसी तरह से संक्रांति आती है, तो क्योंकि सर्दियों में हमारे शरीर को गर्माहट की जरूरत होती है, तो तिल का
0: तिल का
1: विशेष रूप से
0: विशेष रूप ग्रहण किया जाता
1: जी
0: है, बिल्कुल। और आखिर त्योहार की असली खुशी तभी है ना चंचल, जब हमारे चेहरों के साथ साथ किसी और के चेहरे पे भी मुस्कान आए, तो त्योहार की खुशियां उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
1: इसी तरह से एक संदेश में हमारे श्रोताओं का कहना है कि त्यौहार पहले भी हमारी धरोहर थे और आज भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, सब साथ मिलकर खुशियां मनाते थे, त्यौहार मनाते थे, खूब आनंद आता था। आज क्योंकि एकाकी परिवार हो गए हैं और अलग अलग हो गए हैं सब, लेकिन छोटे परिवार हो गए हैं, त्यौहार हम आज भी मनाते हैं, तो ये बात
0: बिल्कुल
1: सही है। महानगरों में जगह की कमी के चलते एकल परिवार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार होता है तो भले हम 4 दिन एक साथ ना बैठे, लेकिन उस दिन जब त्यौहार मनाया जा रहा है तो घर पर पूरी चहल पहल होती है। वो जो छोटा सा भी घर हो ना तो पूरा मेहमानों से भरा पूरा लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है, ये कहते हैं कि वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे त्योहारों का मूल स्वरूप और पवित्रता बनी रहे।
1: इन बातों को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है।
0: जी
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा नु पसंद।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सखी सहेली, और कार्यक्रम हम फिर से लेकर आ गए हैं अंतराल के बाद, है ना?
3: जी बिल्कुल। चंचल, सृष्टि की रचना जब हुई, ऐसे हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि तब से मनुष्यों ने खास अवसरों पर मिलजुल कर जो कार्यक्रम संपन्न किए वे कालांतर में त्योहारों का उन्होंने रूप ले लिया, और आने वाली पीढ़ियों ने नित नए प्रयोग कर उसमें कुछ जोड़ भी दिया, और अब ये कहती हैं कि उसी लोग उन्हें उसी बातों को ही आधार मानकर एक निश्चित दिन पर ऐसे आयोजनों की परंपरा करते चले आ रहे हैं, और हम आज भी पूर्वजों की जो राह है उस पर चलते हुए उन सभी परंपराओं का पालन करते हुए हम नियत तिथि पर होली दिवाली रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाते चलते आ रहे हैं।
2: और भाई जिस तरह से एक नियमित क्रम चलता रहता है त्योहारों का, हमारे कार्यक्रम में भी हमारी बातें कुछ जानकारियाँ और गानों का एक क्रम चलता रहता है, तो गाना सुन ले।
3: चलिए सुनते हैं।
4: ये तो कहो

0: तो भाई जब हम घर पर बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे नहीं पूछते हैं कि वो कौन है, क्योंकि हम सबको जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ अजनबी चेहरे भी आते हैं और वो भी हमारे चिर परिचित बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और त्योहारों के बीच में जब अगर एक सुंदर सी साड़ी पहनने को मिल जाए ना घर की महिलाओं को, घर की एक महिला को, जो उसकी जो चेहरे की मुस्कान जो होती है, वो जो खुशी होती है, वो एक अलग ही होती है। और ऐसे में अगर मोठड़ा साड़ी मिल जाए राजस्थान के प्रसिद्ध, तो फिर तो बात ही क्या है।
0: बिल्कुल, और राजस्थान की बहुत कहते हैं ना कि डिमांड वाली साड़ियों में से ये एक है, और लहरिया का ही एक वर्जन भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा लहरिया होता है ना उससे मिलता जुलता ही ये होता है। लहरिया में बस सीधी सीधी लहरें होती हैं, लेकिन जो मोठड़ा साड़ी है उसमें जो लहरें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई थोड़ी सी आड़ी तिरछी, और फिर वो चौकोर बन जाती हैं आड़ी तिरछी जब काटती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दो लहरिया साड़ी एक के ऊपर एक चढ़ा दी गई हो, और इसी की वजह से इसका जो डिजाइन है वो ज्यादा भरा भरा और आकर्षक लगता है।
1: बिल्कुल, कुछ और खास बातें हैं चंचल इस मोठड़ा साड़ी की, जैसे लहरिया से थोड़ी अलग बनाती है इसको। लहरिया में एक साथ दो रंग होते हैं, पर मोठड़ा में जहां दो रंग मिलते हैं वहां तीसरा रंग अपने आप बन जाता है। जैसे लाल और पीला मोठड़े के बीच में नारंगी आपको दिखेगा, और यही इसका असली आकर्षण भी है।
0: बिल्कुल, और मोठ राजस्थानी में किसी दाने या गांठ को कहा जाता है, और क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसे बांधने के समय गांठें लगाई जाती हैं, और मोटी मोटी गांठें लगाई जाती हैं, इसीलिए इसका नाम मोठड़ा साड़ी पड़ गया। और ये साड़ी बंधेज की तकनीक से ही बनाई जाती है। इसमें कपड़े को दो बार अलग अलग दिशा में बांध कर रंगा जाता है, पहले एक रंग में रंग कर सुखाया जाता है, और फिर दूसरी दिशा में बांध कर दूसरे रंगों में इसको रंगा जाता है।
1: बिल्कुल, और पहले ये साड़ियाँ सूती कपड़ा माने कि कॉटन में बना करती थी, लेकिन आजकल अब तो शिफॉन में भी बनने लगी है, जॉर्जेट में भी बनने लगी है ये वाली साड़ियाँ। और क्योंकि शिफॉन बहुत हल्की होती है और आप चाहें तो रोज़मर्रा में भी इसको पहन सकते हैं, इस वजह से ही इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा होने लगी है बाजार में।
0: हाँ, लहरिया और मोठड़ा जो है ना ये ज़्यादातर इसी मौसम में पहना जाता है, और ये होते हैं थोड़ी चिपचिपी गर्मी वाले दिन
1: जी।
0: तो क्या होता है कि जो ऐसी हल्की फुल्की साड़ियाँ हों जो हमें तकलीफ ना दें, हमें बहुत आराम महसूस कराए, इसीलिए सूती जॉर्जेट शिफॉन ऐसे कपड़े में इन साड़ियों की डिमांड जो है वो ज्यादा
1: होने लग जाती है। और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रंग भी इसमें है, जैसे कि पिंक रानी जो गुलाबी कलर
0: होता है, गहरा वाला होता ना, रानी महारानी की पिंक जिसे कहते हैं।
1: बिल्कुल, और साथ में लाल पीला हरे रंग का एक अलग अलग रंग के कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करती है महिलाएं। तो ये गोटा पट्टी वाला मोठड़ा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में रक्षाबंधन पर जो सोगी की रस्म में गोटा वर्क वाला मोठड़ा उपहार में भी दिया जाता है।
0: और राजस्थान में मोठड़ा को सुहाग और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। दीपा, नई दुल्हन जब पीहर से आती है तो उसका जो पहला सावन का तोहफा आता है उसमें मोठड़ा साड़ी भी कई बार रखी जाती है, और कुछ कुछ जगह पर इसका जरूरी भी माना जाता है। सावन, तीज, रक्षाबंधन मैं तो पहनते ही है, इसके अलावा शादी ब्याह में भी बहुत पहनी जाती है मोठड़ा साड़ी। और राजस्थान में मान्यता ऐसी है कि सावन में लहरिया मोठड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है।
1: बिल्कुल, और एक संदेश आया है, ये कहती है कि ये पारंपरिक हस्तकला है राजस्थान की, इसमें कपड़े को एक दिशा में मोड़ने के बाद दूसरी दिशा में भी लहरिया लाइन काटी जाती है। साथ में इन्होंने भी यही कहा है कि शिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, कोटा, डोरिया जैसे हल्के मुलायम कपड़ों में पहना जाता है। इसमें गोटा पट्टी, जरी, आरी तिरी वर्क और खूबसूरत बॉर्डर का भी काम किया जाता है, जिससे पहनने पर ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है।
0: अभी महिलाओं को कई बार लगता है ना कि हमारे वार्डरोब में साड़ी नहीं है तो ले ली जाए, कई बार हमारा बजट भी हमें लगता है कि रोक देता है, तो ये साड़ी जो है क्योंकि हल्की फुल्की भी आती है और वर्क वाली भी आती है, तो 300-400 रुपए से शुरू होकर 4-5 हजार तक आप जैसी कीमत में लेना चाहें वैसी साड़ी आप ले सकती हैं इसमें। और प्लेन गोटा वर्क वाली

और इन्हीं के अनुसार इनकी जो कीमत है वो अलग अलग मिल सकती है बाजार में। जब भी मोटर साड़ी लेनी हो तो थोड़ी सी पहचान जो है इसकी वो कर ले, और पहचान करने के लिए क्या करना है कि असली मोटरा जो है वो हाथ से बनाया जाता है, उसके जो रंग की किनारी है वो थोड़ी सी अनियमित मिलेगी आपको, और पीछे की तरफ जो है रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दिखेगा। मशीन प्रिंट वाली जो साड़ी होती है उसके पीछे सफेद रंग रहता है, तो थोड़ी सी पहचान करके आप साड़ी लीजिए और बस उत्सवों पर, त्योहारों पर और किसी भी खास मौके पर पहन लीजिए।

0: खुदा की कसम ये खुदाई न होती।
1: चंचल देखिए त्योहार आए हैं, घर में बहुत साज सज्जा भी कर ली है, बहुत सारी चीजें भी बन गई हैं, कुछ आदान प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे तोहफों का?
2: तोहफों का भी होता है, और कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं हमारे पास पड़ोस में वहाँ भी वही उत्सव मनाया जा रहा है, तो कई बार जो बहुत सारे पकवान घर में बनते हैं उनका भी आदान प्रदान होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का भी आदान प्रदान होता है। अगर मान लीजिए मेरे घर में आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी कढ़ाई मेरे घर में नहीं है, बहुत बड़ा भगोना मेरे घर में नहीं है, कितनी सामग्री बनाई जा सके, तो वो भी हम पड़ोस के घर से ले लेते हैं कई बार। और बहुत सारी चीज़ें सजावट की भी कई बार आदान प्रदान होती हैं, और जो घर में मेहमान होते हैं उनके साथ में आपसी प्रेम भावनाएं, इनका आदान प्रदान
1: होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आदान प्रदान ये विनिमय प्रथा का एक प्रकार है, जिसमें लेन देन या अदल बदल की एक प्रक्रिया है, जिसमें दो पक्षों के बीच वस्तुओं के अलावा अपने अपने विचारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। अब वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सखी सहेली इस फेसबुक पेज पर हमारे द्वारा लिखी कमेंट उद्घोषिकाएं हमारी पढ़ती हैं, यानी सहेलियां पढ़ती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी विचारों का

0: वर्चुअल आदान प्रदान होता है।
1: क्या
0: बिल्कुल
1: बात है?
0: सही कहा आपने भाई, आप अगर संदेश नहीं लिखेंगे हाँ। तो फिर ये कार्यक्रम की खूबसूरती कैसे बनेगी और ये आदान प्रदान कैसे पूर्ण होगा।
1: और ये बहुत जरूरी आदान प्रदान है। और इसी को लेकर एक और संदेश है, इसमें लिखा गया है कि रिश्ते एक सुंदर आदान प्रदान है, जहाँ कोई अपना समय देता है, कोई विश्वास, कोई प्रेम बांटता है, कोई मौन में भी साथ निभाता है। इन छोटे छोटे हिस्सों में जीवन की बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं।
0: बिल्कुल, एक संदेश और आया है, वो कहते हैं कि पहले आदान प्रदान पड़ोसी में चीजों का होता था, चीजों के बीच भावनाओं और विचारों का भी हो जाता था, मन की बातों का आदान प्रदान होता है। ये रिश्ते कभी कभी इतने अंतरिम हो जाते हैं कि अपनी राज की बातें भी हम पास पड़ोसियों से कर लेते हैं। शायद इसी आदान प्रदान से रिश्तों में अपनापन आता है। पर अगर कभी मतभेद हो जाए तो यही राजदार अपनी बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आदान प्रदान तो करें, साथ में उन्होंने एक सावधानी दी है कि थोड़ा संभल कर करें, ये हमारा अनुभव है।
1: एक अन्य संदेश में एक बात कही गई है, आदान प्रदान हमारी आवश्यकता भी है, कर्तव्य भी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं जहां हमें तमाम जरूरतों के लिए एक दूसरे से लेना भी पड़ता है और उनकी जरूरत होने पर उन्हें देना भी पड़ता है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजें अपनी सामर्थ्य से हम खरीद लाते हैं या उत्पादित भी कर लेते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो हमें अक्सर सबसे ज्यादा आदान प्रदान में लेना देना पड़ता है। जैसा कि हम सब एक शादी में तमाम पैसे खर्च करने के लिए एक दूसरे लोगों से मदद ले लेते हैं, बाद में उन्हें वो लौटा भी देते हैं, इसी तरह से उनकी डिमांड पर कई बार उनके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हैं और वो आदमी भी हमें बाद में भुगतान कर देता है। तो बिल्कुल इस तरह का जब आदान प्रदान होता है तो रिश्तों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए और हमारे कार्यक्रम का जो तालमेल है वो ना बिगड़ जाए, इसलिए गाना सुन लेते हैं।
0: चलिए सुनते हैं।

0: भाई हमने बहुत सारे त्योहारों की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आदान प्रदान की बात भी कर ली, जो त्योहार हमारे धरोहर हैं परंपरा इनकी बात भी कर ली, हम क्या पहनेंगे मोढ़ा साड़ी उसकी बात भी कर ली।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
0: जो खास तौर पर महाराष्ट्र

0: में इन्हीं मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा को।
1: जी ये बता रही हैं कि चावल के आटे के आवरण और ताज़े नारियल गुड़ की भराई वाले ये मोदक भाप में पकाए जाते हैं। उसके अलावा तले हुए मोदक भी होते हैं। इन्हें गेहूं के आटे या मैदे से बनाकर तेल या घी में आप तल के बना सकते हैं। फिर मावा यानी कि जिसे खोया बोलते हैं वो मोदक भी होते हैं। तो इसमें चीनी और मेवों को झटपट तैयार किए जाने वाले ये मोदक होते हैं। मतलब अंदर जो फीलिंग है वो मावे के साथ चीनी और सूखे मेवों की होगी। और बेसन के भी मोदक बनते हैं जिसमें भुने हुए बेसन और घी से लड्डू की तरह बनाए जाने वाले मोदक होते हैं। चॉकलेट मोदक भी होते हैं जिसमें चॉकलेट के स्वाद वाले आधुनिक और इंस्टेंट मोदक बनाए जाते हैं। साथ में हमारी सखी बता रही हैं कि ड्राई फ्रूट्स के भी बन सकते हैं जिसमें अंदर जो भरावन है वो ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम पिस्ता इन सब का भी आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रकार बता दिए।
0: इसी तरह से प्रकार ही बताने के लिए एक और संदेश आया है, और इन्होंने बताया कि बहुत सारे प्रकार के मोदक बनाए जाते हैं। सभी के घर में मोदक का स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है, बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए मोदक अलग अलग तरह के स्वाद में नजर आते हैं। चावल के आटे के आवरण वाले, नारियल की गुड़ की भरावन वाले मोदक होते हैं। तले हुए मोदक में मैदे गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं, और भरावन नारियल या ड्राई फ्रूट्स की जाती है, और ये घी में तले जाते हैं। मावा मोदक भी बनते हैं जिनमें मावा, चीनी और मेवे से के मिश्रण से इन्हें बनाया जाता है। चॉकलेट मोदक में, चॉकलेट मोदक जो है बच्चों के बड़े लोकप्रिय होते हैं, जो चॉकलेट और मावा से बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट के मोदक में काजू, पिस्ता, बादाम इस तरह की चीज़ों से इनको बनाया जाता है। तिल और गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं, और तिल गुड़ से पारंपरिक स्वाद वाले मोदक बन जाते हैं। खोया पनीर या दूध वाले मोदक भी होते हैं जो दूध से बनी सामग्री से तैयार किए जाते हैं।
1: जी हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोदक के कई प्रकार होते हैं पर हम कैसे बनाते हैं वो बता रही हैं कि हम मावा में सभी प्रकार के सूखे मेवे डालकर और चीनी मिलाकर घी में तलकर बनाते हैं। अगर चीनी मावा में न डालें तो इसकी चाशनी बनाकर मोदक को घी में तलकर इसे चाशनी में डाल देते हैं और मोदक को चाशनी में लपेट देते हैं। तो वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं इनके घर में। इस तरह से हमारी सखी ने लिखा है और साथ में बता रही हैं कि बच्चों और युवाओं के बीच में ये चॉकलेट मोदक है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें चॉकलेट और बिस्किट का या फिर नट्स जो आप सूखे मेवे हैं उसका मिश्रण भरकर मोदक का आकार दे सकते हैं। फिर एक मोदक का प्रकार बताया है रसवंती या रसमलाई मोदक।
0: क्या
1: इसमें
0: बात है,
1: ताज़े पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और केसर पिस्ता के मिश्रण से बनने वाला है ये मोदक। बहुत नरम और स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा मावा और पनीर मोदक भी बनता है जिसमें मावा और यानी खोया, चीनी, इलायची पाउडर मिलाकर आसानी से जो मोदक का मोल्ड होता है ना उससे उसकी मदद से बन जाता है। फिर एक और है जिसमें कि बेसन सूजी वाला, जैसे कि हमारी एक और सखी ने लिखा था कि बेसन और बारीक सूजी को घी में भूनकर और चाशनी या बूरा मिलाकर सांचे में आप इसे तैयार कर सकते हैं।
0: तो चलिए ये तो हुई बहुत सारे मोदक की बात, अब एक गीत सुन लिया जाए।
1: चलिए।

बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: आज के मेहमान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जो साहित्यकार हैं, कथक की नृत्यांगना और कथक पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है और वायुसेना से भी उनका अच्छा खासा जुड़ाव रहा है और यायावरी उनकी विशेषता है। वो है जानी मानी साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्ते ममता, बहुत आभार आपका।
0: मनीषा जी, चलिए आपको हम बचपन के गलियारों में ले चलते हैं जहां से आपने रेडियो में कदम रखा था और मेरे ख्याल से राजस्थान आकाशवाणी, तो किस जगह पर आपने पहली बार अपनी आवाज रेडियो पर सुनी दी और कैजुअल अनाउंसर के रूप में थी?
1: बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और अगर मैं बचपन में कहूँ तो बच्चों के कार्यक्रम आते थे तो हम स्कूल की तरफ से आकाशवाणी में जाते ही थे। और उदयपुर की बात है, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी तब कैजुअल अनाउंसर्स के लिए एक विज्ञापन निकला था और हमारा कॉलेज और हॉस्टल और आकाशवाणी एकदम पास पास ही थे तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और मैंने ऑडिशन दिया और हो गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई एमफिल नहीं कर लिया तब तक मैं आकाशवाणी से जुड़ी रही। आकाशवाणी उदयपुर की बात है ये
0: जी। तो लेखन में कैसे आपने कदम रखा?
1: मजेदार बात बताऊं तो आकाशवाणी ही वो एक योजक रहा मेरे और साहित्य के बीच में। हुआ ये कि क्योंकि मैंने बीएससी किया था और आकाशवाणी में आने के लिए और वहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको अच्छी हिंदी की जरूरत होती है और अच्छी किताबें, वहां की लाइब्रेरी बहुत रिच थी, तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी आके मुझे लगा कि मुझे हिंदी में एमए करना चाहिए और मुझे अपनी हिंदी पे काम करना चाहिए।
0: क्या बात है?
1: तो मैंने बीएससी के बाद सीधे हिंदी में एमए किया और साहित्य से जुड़ाव मेरा वहीं से शुरू हुआ और एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है?
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: तो पहली बार आपने कविता लिखी या कहानी लिखी?
1: पहली मैंने कविताएं लिखी। कविताएं तो मैंने बचपन से लिख ली, जब मैं किशोरावस्था में थी तब माँ कहती थी कुछ लिखो, क्योंकि मेरी माँ को भी साहित्य में बहुत रुचि थी और वो कविताएं लिखती थी तो मैं माँ की डायरी देखती थी तो मुझे लगता था मैं भी कविताएं लिखूं। तो मैंने किशोरावस्था में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम में जो मछली है उसको और एक किशोरी लड़की की जो मानसिकता है उसको कंपेयर करते हुए बचपन में एक कविता लिखी थी, एक्वेरियम।
0: जी जी
1: हाँ, बस ये कि मेरा मन इस एक्वेरियम में मचलती हुई मछली जैसा है, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी और तब मैं 12 साल की थी तो मैंने कविताएं पहले लिखना शुरू किया लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे कविताओं में ज्यादा जगह नहीं मिल पाती अपने आप को अभिव्यक्त करने की तो मैं कहानी की तरफ आई।
0: जी, तो पहली कहानी छपने की बड़ी लोगों को खुशी होती है और इंतजार भी होता है, तो पहली कहानी छपने का वो इंतजार और वो खुशी साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के
1: बिल्कुल
0: साथ।
1: बिल्कुल ममता, मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मैं भेजा करती थी, साक्षात्कार एक पत्रिका होती थी, भैरव जी उसके संपादक थे, हंस में मैं बहुत सारी कहानियां भेजती थी और तुम हैरत में पड़ जाओगी कि तब संपादक बड़े कड़क होते थे और मेरी बहुत सारी कहानियां वापस आ जाती थी।

0: और उस निराशा को मेरे जो सहयात्री हैं अंशु वो देखते थे, तो कई बार वो जो खेत सहित पत्र आता था ना उसको ऑफिस में ही फाड़ देते थे, आके
1: ओ
0: बताते
1: अच्छा
0: नहीं थे कि
1: क्या
0: कहानी लौट आई है।
1: बात
0: लेकिन
1: है।
0: एक कहानी ऐसी थी जिसको स्वीकार किया, मतलब 5-6 कहानियों के खेत सहित वापस आने के बाद एक कहानी प्रेत कामना राजेंद्र यादव जी ने स्वीकार की, और जब वो छपी तो मेरी खुशी का पारावार नहीं था। और सच पूछो तो मैं साहित्य की दुनिया में बस एक कहानी के लिए आई थी।
1: क्या
0: वो
1: बात है।
0: अलग बात है कि साहित्य की दुनिया ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो कहानी छपी उसके बाद मेरे पास फोन आया कि अगली कहानी कब। तो मुझे लगता है कि आपकी जो नियति होती है वो निश्चित कर लेती है कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि मैंने तो कथक भी चुना था अपने लिए, मैंने उसके अलावा बहुत सारी रेडियो में भी जाने का सोचा था, लेकिन उसके बाद ये हुआ क्योंकि वायुसेना अधिकारी की पत्नी थी तो मेरे पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं थे, क्योंकि हर 3 साल बाद सामान बांधो और चल पड़ो।
1: जी
0: तो मुझे लगा कि लिखना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहानी लिखी और वो छपी।
1: आपने जिक्र किया अंशु जी का जो आपके पति हैं, और
0: जी
1: वायुसेना का जिक्र किया कि वायुसेना अधिकारी, तो वायुसेना में पति होना बहुत ही कड़क मिजाज होता है और माहौल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो कैसे आपने साधा, अपने जीवन को कैसे जोड़ा
0: मैं
1: अपने
0: सच
1: सूत्र को?
0: बताऊं ना तो मैं जितने सैन्य अधिकारियों से मिली हूं उनसे नरम मिजाज कोई नहीं होता। वो होते होंगे अपनी
1: डिसिप्लिन्ड
0: कार्यशैली
1: माने
0: में
1: जाते हैं।
0: डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन होता है, समय की एक सीमा रेखा को वो समझते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत औपचारिकताएं भी होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सेना में पत्नियों का सम्मान बहुत है, और क्योंकि हम बहुत सारे समय अकेले रहती हैं तो आपस में एक परिवार की तरह रहता है। तो अंशु से तो मतलब अगर मैं बात कहूं तो उनसे बड़ा मेरे लिए सपोर्टर कोई नहीं रहा। उन्होंने मुझे हमेशा उत्साहित किया कि मैं लिखूं, और तुम्हें याद होगा कि मैं एक हिंदी नेस्ट नाम से एक साहित्यिक
1: मैगजीन,
0: पत्रिका, वेब
1: डिजिटल
0: पोर्टल,
1: मैगजीन जी।
0: जो कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल है, वो हमने शुरू किया था। वो अंशु ने ही चाहा था कि मैं साहित्य में इस तरह से इन्वॉल्व हूं, तो मैंने उनकी सहायता से उसे आरंभ किया था।
1: जी
0: तो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा, कड़क वो नहीं है बिल्कुल भी, और अनुशासित है।
1: वैसे तो बहुत नरम दिल लगते हैं बातचीत
0: जी
1: में, क्योंकि हमारी भी
0: होता है।
1: मुलाकात हो चुकी है,
0: जी
1: और आपकी जो एक कार्यशाला है उस कार्यशाला में बाकायदा वो सहयात्री से नजर आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पति का साथ आपकी निजी जिंदगी में तो होता ही है, लेकिन आपकी व्यावसायिक जिंदगी में जहाँ पे आपका लेखन है वहाँ पर अगर पति पूरी तरह समर्पित हो तो ये बड़ी बात है, तो इसके लिए आप को बहुत बहुत बधाई।
0: बहुत शुक्रिया उनका।
1: और अब बात चल रही है अंशु जी की, आपके जीवन साथी की, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक गाना होना चाहिए उनके नाम।
0: बिल्कुल, मुझे याद है कि जब हमारी सगाई हुई थी तो मुझसे कहा गया कि कोई गाना सुनाइए, तो मुझे उनकी आंखें देखकर एक ही गाना याद आया, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं।
1: तो सुनते हैं घर फिल्म का ये गाना।

0: गाने के बाद मनीषा जी, हम आपकी साहित्यिक दुनिया पर दस्तक देते हैं। आपके 7 उपन्यास पूरे हो चुके हैं और अपने साहित्य की दुनिया में उपन्यास लिखना बहुत चुनौती की बात होती है, तो कहाँ से शुरू करें हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी लेखन यात्रा बहुत लंबी है। हम शिगाफ से शुरुआत करते हैं। कैसे आपके जहन में ये विचार आया? विस्थापन की बातें हैं इसमें।
1: बिल्कुल ममता, अगर मैं कहूँ तो कश्मीर हम लोग रहे हैं तो,
0: और कश्मीर का पूरा परिदृश्य है।
1: हाँ, कश्मीर मेरा रहना हुआ और वहाँ के अनुभवों को देखना हुआ। तो मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि जब भी कोई एक पेड़ गिरता है तो दूसरा पेड़ भी उस विस्थापन को झेलता है। तो जब वहाँ से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने ही उस आतंकवाद का सारा दुख झेला है। जो लोग रह गए थे और उन लोगों ने भी अपनी खुली जड़ों के साथ उस विस्थापन को झेला है वहीं रहकर। तो कश्मीर शिगाफ जब मैंने लिखा तो वो एक दरार की बात है, एक जमीन के भीतर पड़ जाने वाली दरार की बात है जिसका भरना मुश्किल होता है
0: जी।
1: तो मैंने उसको आंखों से देखा था तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो पूरी घटनाएं देखी, काफी घटनाएं देखी। वो एक ऐसा समय था जब आपकी अगर श्रीनगर या अनंतनाग या अवंतीपुर पोस्टिंग होती है तो आपको सशस्त्र गाड़ियों में स्टेशन से सिर्फ वहां जाते थे, और मैंने कोई कश्मीर नहीं देखा था। तब पोस्टिंग हुई 1-1.5 साल और बस वहां रहे और आ गए, ऐसा मतलब कोई कश्मीर देखने की जो उत्साह था वो देख नहीं पाए। लेकिन उसके बहुत सालों बाद जब मैं लेखक बन गई, तो जब मैं युवा लेखक थी तो साहित्य अकेडमी की एक कार्यशाला हुई थी
0: अनुवाद की। युवा लेखक हैं आप कोई कह नहीं सकता कि आप
1: तो उस कार्यशाला में दोबारा से पहलगाम जाना हुआ, तब मेरी बहुत सारी चीजें ऐसे मेरे जहन में आई कि मैं उनको लिखूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और वो ब्लॉग का जमाना था तो ब्लॉग पे काफी चीजें, मेरे को लगता था कि ब्लॉग को एक फॉर्म बना के शिगाफ नाम से उपन्यास लिखा जाए, तो मैंने उसको लिखा दो सहेलियों के बहाने से।
0: तो और ये उपन्यास बहुत चर्चित हुआ, लोगों ने इसे एक पाठशाला की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके और हम सबके बाद की पीढ़ी के युवा लेखक आते हैं तो वो उपन्यास लिखने के लिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी उसे इसलिए पढ़ा कि देखती हूँ उपन्यास लिखने की शैली कैसे होती है और उसमें से क्या कुछ सीखा जा सकता है, तो मेरे लिए भी बहुत ये बड़ी बात है और इस उपन्यास को मैंने भी बहुत पसंद किया है। अब हम आपके उपन्यास स्वप्नपाश की बात करते हैं, जो मानसिक तनाव की और एक तरह से मानसिक रोग की बात भी है उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो कैसे आपने लिखा, क्या किसी डॉक्टर से सलाह ली, क्या आपके जहन में कहाँ से आया किरदार ये?
1: दरअसल सिज़ोफ्रेनिया शब्द पहले शिगाफ में आया था
0: जी।
1: तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, पर मुझसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, वायुसेना में ही थे डॉक्टर दीक्षित, उन्होंने पूछा क्या तुम जानते हो सिज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता कैसे है। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने मुझे कुछ केसेस पढ़ने के लिए दिए
0: जी।
1: तो मैं चौंक गई कि ऐसे भ्रम होते हैं लोगों को कि उनसे कोई बात कर रहा है, उनके सामने कोई बैठा है जो कि है ही नहीं, एक काल्पनिक पात्र उनके जीवन में हमेशा, या कई कई काल्पनिक पात्र हमेशा साथ चलते हैं। तो ऐसा होना, जब मैंने वैसे केस हिस्ट्रीज पढ़े तो मुझे लगा कि मुझे ये किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में मनोविदलन या मानसिक जो विक्षेप है उन पे बहुत कम किताबें हैं। तो क्योंकि मैं फिर यहाँ विज्ञान काम आया, क्योंकि मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो मेरी उत्सुकता थी इस मनोविकारों के बारे में जानने की, तो मैंने काफी रिसर्च किया, मैंने कुछ पात्रों से मिली, मैं
0: जी
1: एक ऐसे पात्र से मिली जो बिल्कुल ही देसी एक आदमी था, उसके बारे में मैंने जाना कि वो रास्ते में चल रहा था और रास्ते भर बात करता जाता था, सामने से हट जाओ नहीं तो तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे, तो वो अपने आप से बात करता था। हम पहले कहा करते थे ना कि ये लोग पागल हैं या ये लोग, उनके ऊपर कोई साया है, तो वो सब नहीं होता था। तो मैंने बहुत गहरे से पढ़ा, तो जो सिज़ोफ्रेनिक होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं और उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे होता ना कि हमारी कोई अखबार छप के आया, उसमें डबल छपाई आ जाती है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा है जिससे दिमाग में भ्रम पैदा होते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे भ्रमों के साथ जीना कितना मुश्किल होता होगा, तो मैंने गुलनाज फरीबा नाम के एक कलाकार को लिया
0: जी,
1: क्योंकि अक्सर कहते हैं कि बहुत

0: बहुत प्रतिभाशाली लोगों में सिजोफ्रेनिया होता है। अगर हम देखें तो बहुत सारे पेंटर्स वॉन गॉग सहित सिजोफ्रेनिया के शिकार रहे हैं, तो
1: जी
0: तब मैंने उसको एक पेंटर बनाया और उसके जीवन को लिखा। तो ये लिखना मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, इतना आसान नहीं था।
1: और पढ़ना भी बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो कुछ घटनाएं बहुत लोमहर्षक, मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे वो बचपन की जो कुछ बातें उस कैरेक्टर की, लड़की कैरेक्टर है, उसके बचपन की यादें जो आपने ताज़ा की, करवाई कि मतलब डॉक्टर पूछ रहा है सवाल और वो अपनी यादों में जाती है, तो वो सब भी लगता है कि वो लड़कियों के साथ अमूमन ऐसी घटनाएं घटती हैं कि पुरुष किसी न किसी बहाने स्पर्श करते हैं, तो वो बड़ा
0: बिल्कुल,
1: त्रासद होता है। तो
0: अवांछित
1: हाँ,
0: स्पर्श।
1: और वो समाज को एक संदेश भी देता है उपन्यास। ऐसे ही एक उपन्यास है पंचकन्या, जिसे आपने लिखा है, जिसमें स्त्री पात्र हैं, तो क्या
0: बिल्कुल
1: स्त्री पात्रों के जरिए कुछ समाज को संदेश भी देना चाहती हैं क्या?
0: बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती थी कि जो हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, जिसको हम आयात कर लेते हैं, हम
1: जी
0: इसको पाश्चात्य दुनिया से लाते हैं कि हम सिमोन द बाउवार और वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट जो पाश्चात्य उसमें हुई हैं
1: जी जी
0: दार्शनिक, तो हम उसको हूबहू भारत पे लाके लागू कर देते हैं। वहीं मैंने एलिस वॉकर को देखा, उन्होंने कहा कि हम लैटिन अमेरिकन औरतों का फेमिनिज्म पाश्चात्य आधुनिक स्त्रियों से अलग है, क्योंकि हम नाचना पसंद करती हैं, हम श्रृंगार करना पसंद करती हैं, और अगर
1: गहने
0: आप
1: पहना
0: गहने
1: पहना हो।
0: पहनना, और
1: हाँ
0: वहां पे अगर पाश्चात्य बिल्कुल यूरोपियन अगर हम फेमिनिज्म की तरफ देखें, तो वहां तो वो सजने को पुरुष के लिए मान लेती हैं। तो मुझे लगा कि हमारा अपना फेमिनिज्म कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भी रहा होगा, ऐसे ही तो नहीं हमारे यहाँ गार्गी और मैत्रेयी जैसी या लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां हुई हैं। तब मैंने एक लेख पढ़ा था, पंचकन्याओं द वुमेन ऑफ सबस्टेंस, एक आईएएस अधिकारी थे प्रदीप भट्टाचार्य जी, उन्होंने इन पंचकन्याओं पे लेख लिखा था कि ये वे स्त्रियां हैं, ये पांचों जो कन्या कही गई, लेकिन इनसे एक से अधिक पुरुषों से इनके संबंध रहे। तो मैं चौंक गई कि ऐसे फिर क्यों कन्या कहा गया होगा। तो उनका कन्या होना उन पुरुषों की छाया में होने से नहीं था, वो अपने आप में कन्या थी,
1: जी जी
0: कि मतलब उनका पुरुष की छायाएं उनके ऊपर नहीं थी सतियों की तरह, वो अपने आप में आजाद स्त्रियां थीं। और पुराणों में कहा जाता है इन पांचों स्त्रियों के स्मरण मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं। ये स्त्रियां कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इन सब के पैरेलल मैंने आधुनिक स्त्रियों को गढ़ा और इस उपन्यास को लिखा। तो ये मेरा शिगाफ के बाद दूसरा उपन्यास था जिसे लिख के मुझे संतुष्टि हुई।
1: जी, और आगे भी उपन्यास की यात्रा जारी है। यहाँ पर हम एक विराम देते हैं और एक गाना सुनते हैं। कौन सा गाना?
0: बिल्कुल, एक गाना मुझे गृह प्रवेश फिल्म का बड़ा पसंद था,
1: हाँ
0: आप अगर आप न होते तो भला क्या होते, लोग कहते हैं कि पत्थर के खुदा होते।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना।

0: आप अगर आप न होते तो क्या होते, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप एक साहित्यकार न होती तो क्या होती, क्योंकि आपने कथक की दुनिया में भी कदम रखा था और विशारद किया है,
1: बिल्कुल,
0: तो बताइए क्या।
1: मैं बहुत कुछ होना चाहती थी ममता। मैं यकीन नहीं करूंगी, मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाना
0: क्या बात
1: चाहती थी लेकिन
0: है
1: पापा के एक थप्पड़ ने और डांट ने कहा नहीं, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय नैतिकताओं का जमाना था, लड़कियों को बहुत सुरक्षित रख के चलने का जमाना था। और मैं एक बहुत छोटे शहर राजस्थान के एक बहुत छोटे कस्बे से आती हूँ, चित्तौड़गढ़ से,
0: जी
1: तो जहाँ पे सोच पाना भी मुश्किल था कि आप मुंबई जाओगे और मॉडलिंग करोगे। उसके बाद फिर मेरे को डांस मेरा दूसरा पैशन था, तो कथक मैंने सीखा। तो आधा कथक मैंने शादी से पहले कॉलेज टाइम में सीखा और आधा शादी के बाद बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज के दोबारा सीखा,
0: जी
1: तो
0: जी
1: मैंने अपना विशारद पूरा किया।
0: जी
1: तो बहुत सारे ऐसे सपने थे, लेकिन अंततः मेरे हिस्से में एक डेस्क आई और पेन आया और कलम आई कि मुझे लिखना है। तो कथक की ये बातें कि मुझे संयोग से ग्वालियर में रायपुर घराने के एक टीचर मिल गए थे,
0: जी
1: तो मणिका जी थी, और तो मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मैंने अपना विशारद पूरा किया।
0: जी तो बात कथक की चली है, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कथक में जब कोई इस तरह मतलब विशारद किया है तो बड़ी बात है, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूँ और कोई बड़े आयोजन में भाग लूँ, हिस्सा लूँ
1: वही बात फिर यायावरी की आ जाती है ना, कि जैसे ही ऐसा अवसर आया कि 3 साल हो, मतलब मेरे को सीखते हुए 6 साल हो गए,
0: हाँ
1: तो ट्रांसफर का फरमान आ गया। और होता ही है कि आप अपने गुरुजी के साथ ही आप सामूहिक कथक एकल तो होता ही है, और आरंभ में आपको सामूहिक प्रस्तुतियां देनी होती हैं। तो ट्रांसफर हो गया और हमारा जो समूह था उससे मेरी दूरी हो गई, तो वो कथक वहीं छूट गया। लेकिन मैंने छोटे बच्चों की क्लासेस ली और छोटे बच्चों के लिए मैंने कुछ कोरियोग्राफीज की।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: वाह।
1: मुझे याद है कि मैं अपने जो मनिका मैम थी उनके यहाँ जाती थी, तो मैं कथक पे भी किताबें पढ़ना पसंद करती थी। वो कहती हम लड़कियों को कहते रहते हैं किताबें पढ़ो, जो कथक का इतिहास है, तुम ही एक हो जो ढेर ढेर सारी किताबें ले जाती हो। तो तब तक मैंने, जब तक विशारद किया, मैं ना बहुत सारा कथक का इतिहास, बहुत सारा विश्लेषण वो पढ़ चुकी थी। और अगर मैं कहूँ कि उस इतिहास और विश्लेषण के चलते फिर मैंने बिरजू महाराज पे एक किताब लिखी, बिरजू लय,
0: जी
1: तो मेरा सारा फिर वो रिव्यू और समीक्षा और कलात्मक समीक्षा, कलात्मक वैचारिक की तरफ ध्यान चला गया।
0: जी
1: फिर मैंने प्रेरणा श्रीमाली जी का लंबा इंटरव्यू किया, बिरजू महाराज पे किताब लिखी, तो मेरा जो कथक करने का और मंच का जो शौक था
0: पूरा हुआ
1: वो
0: यहाँ पर।
1: लेखन की तरफ चला आया। और आज भी मैं अगर कला वैचारिकी पे कथक पे लिखूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी।
0: बिल्कुल, और ये जो आपने कहा ना कि मेरे हिस्से में लेखन आया, मेरे ख्याल से कि अगर ये ना आता तो हम सब लोग वंचित रहते। और आपने लेखन की दुनिया में अपना नाम दर्ज किया विशिष्ट तरीके से।

0: और महिलाओं के लिए खासतौर से ये प्रेरणा की बात है। यहाँ पर हम एक गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि बात कथक की चली है और कोई गाना ना हो जिसमें नृत्य वाली बात ना हो तो फिर
1: हाँ,
0: अधूरा सा
1: मुझे
0: लगे।
1: आम्रपाली फिल्म बहुत पसंद थी और मैं उसमें वैजयंती माला के डांसेस देखती ही रह जाती थी। और मुझे जो बहुत पसंद था, और मैंने कॉलेज में इस गाने को एक प्रतियोगिता में किया भी था और प्रथम पुरस्कार मिला था मुझे, नील गगन की छाओं में
0: क्या
1: दिन
0: बात
1: रैन
0: है,
1: गले से मिलते हैं, मन पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है। वैसे कथक सीखा है आपने तो निश्चित रूप से डांस के साथ थोड़ा थोड़ा तो गुनगुनाती होंगी, और हमने सुना है अगर ये गुनगुना के आप सुनाए तो हमें ज्यादा अच्छा
1: ये
0: लगेगा।
1: तो बहुत ऐसा क्लासिकल गाना है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नी

0: मनीषा जी, आपकी कौन सी कृति आपके सबसे दिल के करीब है?
1: निश्चित तौर पे मल्लिका।
0: मल्लिका।
1: हाँ,
0: हम जानते थे, क्योंकि साहित्य की दुनिया में, अपने श्रोताओं को बता दें जो साहित्य में दखल नहीं रखते, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ को इन दिनों साहित्य की मल्लिका कहा जाता है।
1: अरे,
0: तो आप मल्लिका के बारे में बताइए, कहाँ से इंस्पायर हुई, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यास है।
1: बिल्कुल, हुआ ये कि साप्ताहिक हिंदुस्तान में बहुत पहले मल्लिका पे एक आलेख आया था जिसे मैंने पढ़ा था। उसके बाद कथादेश पत्रिका आती है, उसमें मल्लिका पर एक अंक निकला था, मल्लिका और
0: जी
1: भारतेंदु
0: जी
1: हरिश्चंद्र जी पे। तो मैं बहुत उत्सुक हो गई थी कि मल्लिका पत्नी तो नहीं थी, अगर हम उनको कहें कि वो उनकी प्रेरणा थी, तो उनका भारतेंदु जी पे असर और मल्लिका पे जो जितने आलेख मैंने पढ़े, तो मुझे उसने बड़ा आकर्षित किया कि ये मल्लिका कैसी रही होंगी जिन्होंने भारतेंदु जी के लिए पहले अनुवाद किए बंगला से हिंदी में, और फिर हिंदी में खुद उपन्यास लिखे और कुछ पत्रिकाएं संपादित की, और लगातार भारतेंदु जी के साथ में वे बनी रही। तो उनका एक फोटो भी उसमें छपा करता था,
0: जी
1: बड़ी
0: जी
1: बड़ी आंखों वाली एक हल्की सी उदास स्त्री जो बाल विधवा रही थी। तो मुझे मल्लिका के इस चरित्र ने सालों सालों सालों हॉन्ट किया, मेरे अंदर रही और हमेशा मुझे कुरेदती रही। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी किताबें मंगाई, बहुत सारी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उनकी जीवनियां, आत्मकथा तो वो नहीं लिख सके थे, जीवनियां जो थी वो मंगवाई मैंने, श्याम सुंदर दास जी की और ब्रजरतन दास जी की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन किताबों में

0: हुई कि जहां मल्लिका का जिक्र था उन अध्यायों का नाम था चंद्र में कलंक और
1: गजब।
0: गुलाब में कांटा।
1: हाँ
0: तो ये बात मुझे आहत कर गई। तब मैंने मल्लिका का लिखा हुआ पढ़ा,
1: हाँ
0: जितने भी उनके आधे अधूरे कुछ पूरे उपन्यास हैं वो मैंने पढ़े। और जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि मल्लिका के अंदर एक कमाल का पोटेंशियल था लिखने का, और उनकी दृष्टि उस समय में, स्वतंत्रता से पहले, उस समय में इतनी सुलझी हुई और खुली हुई थी कि वो बहुत अच्छे से स्त्री अधिकारों पे लिख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं मल्लिका के जीवन पे लिखूं। लेकिन सबसे मुश्किल ये थी कि मल्लिका का बचपन, मल्लिका के बनारस आने से पहले का जीवन किसी को कुछ नहीं मालूम था। वो सब मुझे कल्पनाओं से और थोड़े तथ्यों से बुनना पड़ा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो बंकिम जी के ही कुल से कहीं दूर से संबंधित थी, तो मैंने उसमें बंकिम जी को भी एक पात्र के तौर पे
1: जी
0: रखा।
1: जी
0: और मल्लिका काफी करीब,
1: हाँ
0: उनको बताया कि मल्लिका उनसे प्रेरणा लेती थी। और मजेदार ये बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बंकिम के उपन्यासों का मल्लिका की सहायता से अनुवाद भी। और एक और जो बात है, उपन्यास शब्द हिंदी साहित्य में प्रेमिका के जरिए आया उपन्यास, क्योंकि अपने आप बंगला में नॉवल को उपन्यास कहते थे, बाकी गुजराती और मराठी में नवल कथा, हिंदी में आख्यान ही कहा जाता था। तो जब मल्लिका आई तो ये इस पूरी विधा का नाम अपने साथ लाई।
1: क्या बात है। ये जो सूक्ष्म बातें बताई हैं, लेखन के साथ जो लेखन की जो परतें होती हैं वो लेखक ही बता सकता है, पाठक उसे पढ़ता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म बातें हैं वो एक लेखक ही बता
0: और
1: सकता है।
0: मल्लिका लिखने के दौरान ना मुझे बड़े अजीब अजीब अनुभव हुए। जैसे कि मैंने उसमें एक सीढ़ियां रची, क्योंकि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर कभी पहले नहीं देखा था, तो मैंने ऐसी सीढ़ियां रची जिनसे होके मल्लिका सीधे भारतेंदु जी के कमरे में जाती थी बिना उनकी पत्नी को पता चले। और भी लेखक उसी से जाते होंगे, मैंने ऐसी कल्पना की। और जब मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जब मल्लिका का वहां पे विमोचन हुआ और मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर पे गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो सीढ़ियां वहां थी।
1: गजब, क्या बात
0: तो
1: है।
0: ऐसे ऐसे, अगर मैं कहूं कि इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी
1: बिल्कुल।
0: कथा।
1: और वो उपन्यास खूब चर्चित भी हुआ, सराहा भी गया। निश्चित रूप से जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें पढ़ना चाहिए, तो जो आपकी बातें हैं उन बातों से तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे और एक खास बात पता चलेगी कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवन के बारे में उपन्यास के माध्यम से जानना एक अलग तरह का अनुभव होता है। आपकी अन्य कहानियों में भी मनीषा जी सूक्ष्म परिदृश्य होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो शब्दों के माध्यम से दृश्य देखते हुए चलते हैं, और स्त्री पुरुष संबंधों को भी बहुत गहराई से आपने छुआ है। आप अपने शब्दों में बताइए कि कौन सी वो कहानियां हैं जिनमें ये सूक्ष्म दृष्टांत हम देख सकते हैं।
0: सबसे पहले तो कठपुतलियाँ ही, जिसे मेरी प्रतिनिधि कहानी कहा जाता है।
1: जी
0: तो कैसे एक ग्रामीण लड़की की शादी एक कठपुतली वाले से हो जाती है, और वो अपने आप को महसूस करती है कि उसके तो धागे बांध दिए हैं। और उसकी विवाह से पहले का एक प्रेमी होता है, वो उसे
1: जी
0: मिलती है। ऐसी कहानी है जिसमें कोई विलन नहीं था, उसमें समय विलेन है। तो वो लिखने में मुझे आनंद आया क्योंकि मैं मरुस्थल के उन दृश्यों से वाकिफ हूँ। मैंने वो आंधियाँ देखी हैं, पीली आंधियाँ जिनमें घिर के मटके से पानी भर के लाने वाली स्त्रियाँ घिर जाती हैं और खो जाती हैं।
1: क्या बात है,
0: तो वो
1: राजस्थान में खासकर से
0: राजस्थान,
1: ना।
0: तो मैं मरुस्थल रचना चाहती थी, मैं
1: हाँ
0: वो दृश्य रचना चाहती थी जो हिंदी के पाठक ने नहीं पढ़े थे। तो मैंने इसलिए भी कठपुतलियाँ लिखा। और खाप पंचायतों का दौर था, तो वहाँ पर क्योंकि वो अनचाहा गर्भ है उसे सुगना को, तो उसके पर इल्ज़ाम लगता है और उसकी हथेलियों पे गर्म ईंट रखने का एक दृश्य है, तो वो मैंने रचा। एक आंधी का दृश्य रचा। तो कठपुतलियाँ मेरी आरंभिक कहानियों में से है। तब मुझे पता चला कि कहानी में दृश्यात्मकता की कितनी आवश्यकता और कितना महत्व होता है, क्योंकि वो दृश्य आपको उनमें एक छोटी सी खिड़की खोलते हैं और कहानी में प्रवेश देते हैं। तो बतौर पाठक भी मुझे वो कहानियां पसंद आती हैं जिनमें सूक्ष्म दृश्यात्मकता हो। जैसे उसमें एक सांप है जो टेढ़ा चलने वाला सांप है, जिसको साइड वाइंडर कहते हैं। तो वो सांप, क्योंकि वो मरुस्थल में ही मिलता है, वो टेढ़ा टेढ़ा चलता
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: तो आप सूक्ष्म प्रकृति को भी वहां पे पात्र बनाएं। और कोई भी दृश्य रचे तो हमेशा कहा जाता है ना, कहानी लिखिए नहीं, दिखाइए। तो मैं इस बात में बहुत गहरा यकीन करती हूं कि कहानी को दिखाया जाए।
1: क्या बात है। तो आपकी बातों को सुनते हुए हमें खुद लग रहा है कि मैं एक खुद पाठक

0: बन गई हूँ और आपकी कहानियों को याद कर रही हूँ, वो दृश्य मेरे सामने चल रहे हैं कि सचमुच लिखते समय ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारे लेखन की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक मास्टरपीस है ये बातें, और पाठशाला की तरह ये, और रेडियो सुन सुन के तो बहुत कुछ सीखा जाता है, तो आपकी ये बातें सुनकर हमें लगता है साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने वाले लोग सीखेंगे। या अब हम आपके इस पर आते हैं, शाल भंजिका, तो शाल भंजिका के बारे में भी बताइए कि कैसे आपके मन में विचार आया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको लिखने की।
1: शाल भंजिका की प्रेरणा, क्योंकि शाल भंजिका तो एक प्रेम कथा है, तो कोई इसके लिए एक खास किस्म की ऐसे प्रेरणा या इस किताब ने मुझे लंबा अपने भीतर रखा और उसके बाद मैंने रचा, ऐसी बात इसके साथ नहीं थी। इसको मैं सीधे ही लिखती चली गई, क्योंकि मेरे पास
0: मुश्किल होता है प्रेम कहानी लिखना।
1: रविंद्र कालिया जी का फोन आया था कि मुझे तुम्हारा एक लघु उपन्यास चाहिए जो मुझे ज्ञानोदय में छापना है पूरा का पूरा। तो उस दबाव के तहत तब मैं देखती थी कि फिल्म मेकर्स, तब नए नए फिल्म मेकर्स आए थे और उनकी हिंदी फिल्म में ही और विदेशी फिल्मों में भी वो अलग तरह से स्त्रियों को अपनी कहानियों में ला रहे थे। तो मैंने एक फिल्म मेकर और उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसको वो रचना चाहता है, वो अपनी फिल्म में लाना चाहता है, उसके लिए वो जीवन भर भटकता है, ढूंढता है वैसी ही कोई पात्र। तो मुझे लगा कि ये जो तलाश है इसको मैं लिखूं, और ये अनायास ही ऐसे ही लिखी गई छोटी सी किताब है। और सब इसको पढ़ते हैं तो पूछते हैं शाल भंजिका नाम क्यों, क्योंकि शाल भंजिकाएं वो होती हैं जो एक डाल को पकड़ के खड़ी होती हैं, बौद्ध काल की मूर्तियों को कहा जाता है, जो उर्वरता का प्रतीक है। इसमें जो मेरी नायिका पद्मा है, हमेशा एक पेड़ की डाल पकड़ के फोटो खिंचाती है।
0: अच्छा।
1: तो वो जो फिल्म मेकर है वो हमेशा कहते हैं, तो हमेशा फोटो खिंचाते हुए शाल भंजिका क्यों बन जाती हो। तो एक सिंबॉलिक तरीके से इसका शीर्षक आया है
0: जी। और कितनी सारी परतें खुल रही हैं आपके आपके लेखन की, क्योंकि पढ़ते समय ये बातें हमारे जहन में नहीं आती हैं। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, एक गाना है मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ।
0: क्या बात है, हम सबका पसंदीदा गाना फिल्म तुम्हारे लिए, लता दीदी की आवाज, सुनते हैं यही गाना।

0: मनीषा जी, एक साहित्य के अलावा आप में जो गुण हमें दिखाई देता है बतौर एक पाठक और सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आपके भीतर एक यायावरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, मुझे लगता है सच होगी। और आप विदेशों की यात्रा बहुत की है, वहां से भी कुछ उपन्यास आपने जहन में लाया है, त्रिमाया और किनाया की हम बात करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल ममता, मेरी देश में जो एक खास किस्म की यायावरी रही, तो हुआ ये कि मेरे लास्ट जो 3 पोस्टिंग्स थी संयोग से ऐसी हुई कि मुझे मात्र सत्तात्मक समाजों का पता चला।
0: अच्छा।
1: जल्दापारा हमारी पोस्टिंग थी, वहां पे हाथियों की मात्र सत्ताएं थी, और मैंने हाथियों के रेस्क्यू सेंटर और हाथियों के झुंड के जरिए वहां जाकर पहली बार जाना कि इनके झुंड का मुखिया हाथी नहीं, हथिनी होती है। और बड़ी सूझबूझ से वो हथिनियां अपना परिवार बड़ा बड़ा 50-50, 60-60 हाथियों का लेकर चलती हैं। वो पोस्टिंग हुई, उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई शिलोंग। शिलोंग में खासी समाज था जहाँ पे मातृवंशी प्रणालियां होती हैं, वहाँ स्त्री मुखिया होती है और स्त्री की जितनी जायदाद है उस सबसे छोटी बेटी को मिलती है।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद हमारी तीसरी पोस्टिंग हुई त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में वहाँ नायर समाज था जहाँ पे लंबे समय तक मातृवंशी प्रणाली चली थी समाज की। तो मुझे लगा कि ये चीज कुछ मुझे कह रही है कि मैं मात्र सत्तात्मक समाजों और मातृवंशी समाजों के बारे में पढ़ूं और जानूं और लिखूं। तो मैंने हाथियों से शुरू किया पढ़ना और मैंने देखा कि हमारी मातृवंशी प्रणालियों को तो बहुत चुनौतियां हैं।
0: जी जी।
1: जैसे नायर जो मातृवंशी प्रणाली थी उसे तो समाप्त कर दिया गया था पुरुषों के इंटरवेंशन से, क्योंकि उनको शर्म आती थी कि उनके पिता कौन है उन्हें नहीं पता।
0: बिल्कुल।
1: तो जब वो ब्रिटिश राज्य आया और बरतानवी नैतिकता, जो जिसे हम विक्टोरियन नैतिकता कहते हैं, वो आई, तो नायर समाज ने अपने आप को बदलने का ठाना और रानी सेतुलक्ष्मी के हस्ताक्षर से मातृसत्ता समाप्त कर दी गई।
0: जी जी।
1: तो यही खासी समाज भी एक आजकल झेल रहा है कि इनकी जो मातृवंशी प्रणाली है इसको समाप्त करने की बार बार आंदोलन होते हैं, लेकिन हाथियों में सदियों सदियों सदियों से अभी तक कुल माताएं हैं, उनको कोई नर हाथी आके चुनौती नहीं देते कि तुम अपना ये कुल खत्म कर दो।
0: जी।
1: तो इसके बरक्स मैंने मनुष्यों और हाथियों के व्यवहार को और मात्र सत्तात्मक समाजों के अच्छाइयों और बुराइयों को दोनों को त्रिमाया उपन्यास में लिखा। तो एक तो यायावरी मुझे यहाँ काम आई।
0: यहाँ पर हम आपको रोक रहे हैं, मुझे बताइए कि त्रिमाया जो हाथियों की ये जो बातें आप बता रही हैं इतनी गहरी और सूक्ष्म बातें, तो ये आपको कहाँ से पता चली, किस तरह का रिसर्च किया आपने और कहाँ से? दूसरी बात कि ये कितना चुनौतीपूर्ण था ये?
1: बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले तो शौकिया मैंने रिसर्च किया क्योंकि मैं जल्दापारा में थी, वहाँ रेस्क्यू सेंटर था हाथियों का, तो वहां पे एक लैला नाम की हथिनी थी और ढेर सारे अनाथ हाथियों के बच्चे थे। उन सबको लैला ने बड़ा किया और लैला ने अपना एक झुंड बना लिया और वो जंगल में विचरने लगी और कई बार रेस्क्यू सेंटर आती थी और जंगल में चली जाती थी, उसका अपना झुंड था। तब मैंने जानना शुरू किया, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े हाथियों के कॉरिडोर्स के बारे में, मैंने रिसर्च किया कि कैसे हम मनुष्यों ने हाथियों के कॉरिडोर चाय बागानों में और खेतों में बदल डाले हैं और वो आज भी वहीं से गुजरना चाहते हैं क्योंकि वो सदियों से उनकी जो स्मृति में संचित है। तो वो बड़ा संघर्ष है जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको भी मैं इस किताब में लाई हूँ। तो रिसर्च की, लेकिन ये बड़ी आनंदी रिसर्च थी और लिखते समय बड़ा आनंद आया क्योंकि मुझे अपने अंदर एक हाथी को उतारना पड़ा, मुझे महसूस करना पड़ा मेरे एक सूंड है।
0: जी जी जी।
1: जो प्रेम में कैसे काम आती है, भूख में कैसे काम आती है।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे हाथी वाला चैप्टर लिखने में, जो माया है, माया द एलिफेंट, उसको लिखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। हालांकि माया मार्गरीटा और माया को लिखने में भी आनंद आया, लेकिन ये सबसे तो पूरा रिसर्च बेस्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोधात्मक उपन्यास लिखते हैं उसको

0: बर्फ के नीचे जैसे झील होती है ना, तो वो जो झील का पानी है वो शोध हो, ऊपर बर्फ रहे, तो ऊपर रचनात्मकता रहे, कहानी रहे, शोध अंदर से झांकता रहे।
1: क्या बात है।
0: तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शोध, मेरे ज्यादातर उपन्यास शोध परक हैं, स्वप्नपाश भी, मल्लिका भी और पंचकन्या भी और अब त्रिमाया, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि शोध कहानी पे हावी ना हो।
1: बिल्कुल। तो वो जो सूक्ष्म बातें हैं और जो मर्म है वो बचा रहे, और ये तो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और आपने बताया भी कि सूंड के जरिए प्रेम करना, कैसे ये कल्पना भी करना कितना मुश्किल होता है कि आप उस हाथी के भीतर उसके मन में घुस के
0: परकाया प्रवेश।
1: परकाया प्रवेश। और शोध परक मुझे लगता है एक और उपन्यास है आपका, जो यायावरी पर ही किनाया
0: जी बिल्कुल
1: और
0: घूमता।
1: विदेशों की यात्रा के दौरान, उसमें तो बहुत सारे राइटर्स भी हैं जो
0: नहीं,
1: विदेशी
0: वो
1: लेखक।
0: घुमक्कड़ी वो अलग है, वो घुमक्कड़ी
1: अच्छा
0: अंग्रेजी
1: जी जी
0: साहित्य के
1: हाँ
0: गलियारों
1: हाँ
0: से, वो तो यात्रा वृत्तांत ही है।
1: हाँ
0: लेकिन किनाया मैं तुर्की गई थी, तो तुर्की की यात्रा के दौरान मैंने ये महसूस किया कि वहां पर जितनी आजादी है उतना ही अपनी परंपराओं से एक जुड़ाव है, खास किस्म का स्त्रियों का। तो मैंने वहां स्त्रियों को बहुत उन्मुक्त भी देखा और उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े हुए भी देखा। दरअसल मैं गई थी अपनी बहन के साथ जो कि एक पर्यावरणविद है,
1: जी
0: वो सॉल्ट लेक पे काम करती है, वो सॉल्ट लेक सोसाइटी की एनुअल मीट थी। तो मेरी दीदी मुझे एक अपने साथी की तरह ले गई थी। तो वहां पे सारे साइंटिस्ट थे जो पर्यावरण की चिंता करते थे, और सुबह वो बोलते थे कि एक दिन पानी सिर्फ आंख में रह जाएगा, और
1: ओ
0: शाम को
1: क्या
0: जम
1: बात
0: के डांस करते
1: है।
0: थे, मस्ती करते थे। तो मैं यही कहती थी, आप लोग सुबह तो इतना डरा देते हो और शाम को आप लोग पार्टी करते हो। तो उनमें से किसी ने मुझे पूछा कि तुम में हम में से कोई नायक नायिका मिला क्या, क्या तुम कुछ लिखोगी क्या? तो मैंने कहा आप सब तो मिडिल एज्ड हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मिडिल एज्ड रोमांस नहीं करते? तो इस कथा में, क्योंकि मैं टर्की की जो यात्रा थी
1: ये हिस्सा
0: उसको
1: आपकी किताब में भी है, मैंने पढ़ा भी है। हाँ
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तो मैं इस तुर्की की यात्रा थी, मैं इसको केवल यात्रा वृत्तांत में नहीं ढालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मध्य वयस्य स्त्री पुरुषों के बीच के प्रेम की जो एक गहनता है, एक अनुभव है, और वो जो मनोविज्ञान है, उसको मैं इस उपन्यास में यात्रा के साथ लेके आऊं। तो इसमें समूची आपको तुर्की घूमने को भी मिलेगा, और दो मध्य वयसीय, एक जो इतिहासकार है और एक पर्यावरणवादी स्त्री है, दोनों के बीच का प्रेम, एक परिपक्व प्रेम जिसको हम सच में जिसे मैच्योर प्रेम कहते हैं, वो इसमें मिलेगा।
1: उस प्रेम से मतलब वो देह से आगे है वो प्रेम, हमें लगता है।
0: देह है उसमें, लेकिन देह से आगे वहां पर उस तरह की खींचतान नहीं है जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेम में हम बहुत खींचते हैं एक दूसरे को और अधिकार जमाते हैं, वहां वो अधिकार वाली भावनाएं नहीं है। एक दूसरे को उन्मुक्त छोड़ के, एक दूसरे के ऊपर बिना बोझ बने जो वो प्रेम है वो उसकी है कि तुम दोनों आजाद भी हैं, हमारी वो आजादी भी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये प्रेम से ज्यादा मित्रता और साथ और एक उन्मुक्तता की बात भी है।
1: बहुत बढ़िया लग रही है बातें आपकी, और ऐसे लग रहा है कि वो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये प्रेरक बातें हैं। किनाया हमारी भी अधूरी छूट गई है, तो इसलिए मुझे अब लग रहा है कि अब किसी तरह से ये किताब लेकर कहीं से पढ़ूंगी। और पर्यावरण की बात आप कर रही थी मनीषा जी, और ये जो त्रिमाया है, हाथियों का पूरा समूह है, तो आप पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाती हैं, उसके बारे में बताइए।
0: बिल्कुल ममता, सबसे पहले तो मेरा पूरा परिवार बायोलॉजिस्टों का परिवार है, उनमें से मेरी बेटी तक चला आया है वो पूरा जीनोटाइप। मेरे ताऊजी बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन पूरी कॉन्फ्रेंसेस में पूरे विश्व भर में जाते थे। मेरी बहन जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके साथ मैं सॉल्ट लेक सोसाइटी में गई, मेरी बेटी, मेरे भाई हैं वो असद रहमानी जी के साथ काम करते हैं और वो पक्षी वैज्ञानिक हैं। तो
1: जो
0: हम
1: रेडियो से बहुत प्रेम करते
0: रेडियो
1: हैं।
0: से जो आपकी आवाज से ममता प्रेम करते हैं
1: शुक्रिया
0: मनोज
1: सखी
0: कुलश्रेष्ठ उनका
1: जी,
0: नाम है, तो वो
1: सखी सहेली उन्होंने
0: सखी सहेली
1: सखी
0: उनका प्रिय कार्यक्रम है।
1: जी जी
0: तो उन सबके सानिध्य में मैं रही बचपन से, पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम रही घर में। कोई ना कोई, कभी जयपुर में मेरे भाई का काम चल रहा होता था, कभी मेरी बहन सांभर लेक के पक्षियों पे काम कर रही होती थी, तो ये सारा माहौल घर में रहा। तो इस मुहिम को एक अपरोक्ष तौर पे मैं चलाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जमीनी काम तो नहीं कर पाती हूँ कि मैंने
1: जी
0: जमीनी काम किए हों और मैंने कहीं जमीन पे कोई आंदोलन किए हों, लेकिन मेरे लेखन में और लगातार जब मैं लिखती हूँ पर्यावरण पे, तो उसके

0: बहाने मेरा एक काम चलता रहता है और सोशल मीडिया पे भी मेरी उपस्थिति रहती है। और कभी भी इस तरह जयपुर में अगर कोई जंगल कट रहा है तो मैं वहां जरूर जाके खड़ी होती हूँ। और मेरे लेखन में ये बड़ी शिद्दत से आता है, तो किनाया में भी आया है कि कैसे सॉल्ट लेक सिमट रहे हैं।
1: बात इसकी विदेशी जो लिखी आपने तुर्की के बारे में, तो वहां कुछ साहित्यकारों को आपने देखा, जैसे मैंने आपकी किताब में पढ़ा था घुमक्कड़ी, तो उसमें शेक्सपियर का नाम है, वर्ड्सवर्थ
0: हाँ,
1: का
0: तो
1: नाम
0: वो
1: है,
0: एक
1: केट्स।
0: अलग मुहिम थी। हुआ ये कि 3 बार मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, एक बार अवार्ड फंक्शन था, उसके अलावा भी 2 बार मुझे और जाना पड़ा इंग्लैंड। तो हुआ ये कि पहली बार में मैं फ्रॉयड के घर गई, कीट्स के घर गई, तो मुझे लगा कि मैं पूरा यूनाइटेड किंगडम घूम के, उसमें आयरलैंड जो इंग्लैंड का हिस्सा है वो वाला हिस्सा भी घूम के, इस पूरे देश के लेखकों को जिनको हम सब बहुत क्लासिक की तरह पढ़ते आए हैं, उसमें वर्ड्सवर्थ भी है तो
1: जी
0: जेम्स जॉयस भी है, तो इन सबको पढ़ा जाए, मतलब इन सबके घरों में जाया जाए। और मजेदार बात यह है कि उन सबके घरों को बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम्स में बदला हुआ है और उनको ट्रस्ट चला रही है। और वो जो पूरे शहर है, जैसे अगर मैं बात कहूं तो जेन ऑस्टन का म्यूजियम है, वहां पे बिल्कुल माहौल बनाया जाता है कि आप जाएंगे तो मिस्टर डार्सी आपको मिलेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के वो वस्त्र पहने हुए, और जेन ऑस्टन के चीजें मिलेंगी। तो जब एक यात्रा में ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे जुनून आ गया। मैंने कहा अब मैं स्कॉटलैंड भी जाऊंगी और मैं नदर्न आयरलैंड भी जाऊंगी और हो सका तो डबलिन भी जाऊंगी। तो मैंने ऐसे करके पूरी यात्रा की 3 बार में, और मैंने सारे जितने भी इंग्लैंड के और यूनाइटेड किंगडम के लेखक थे उन सबके, जितने संभव हो सकते थे थॉमस हार्डी तक, सबके घर जा जाके वहां उस माहौल को महसूस किया और उस पे किताब लिखी घुमक्कड़ी, साहित्य के गलियारों से।
1: क्या बात है। तो लिखने के मकसद से आप गई थी या घूमने गई थी
0: पहली
1: बातचीत?
0: बार तो मैं घूमने गई थी, और संयोग से मैं, जैसे अब मैं कोलकाता भी जाती हूँ तो मैं ठाकुरबाड़ी जरूर जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं गई थी। तो मैंने कहा कीट्स हाउस तो जाएंगे, कीट्स को इतना पढ़ा है हमने, तो कीट्स के घर गए। तो मुझे लगा कि यार ये जुनून है, इस जुनून को तो पूरा किया जाए,
1: क्या
0: और
1: बात
0: फिर वो
1: है।
0: जुनून बन गया। शुरुआत में तो मैं ऐसे घूमने ही गई थी।
1: तो लिखने को इतना तवज्जो देती हैं, इसलिए आपका लेखन संसार इतना विराट है। आप मनीषा जी अपने श्रोताओं को बता दें कि राजस्थान की रहने वाली हैं, जहाँ पर लोक संस्कृति, लोक कला बेशुमार है। आपके लेखन में क्या आप इस्तेमाल करती हैं आप अपने लेखन में?
0: बिल्कुल, शुरुआत में तो मेरी जितनी, अगर कहें कि सारी जो कहानियां जिनको लोग याद करते हैं, कठपुतलियां, कुर्जा, स्वांग, ठगिनी, सब में राजस्थान आया है। किरदार कहानी है जिसमें जयपुर के अंदरूनी इलाके आए हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं राजस्थान के माहौल को एक अलग ढंग से, सब अलग अलग तरीके से अपने जमीन को याद करते हैं, सब अलग अलग ढंग से उसके दृश्य गढ़ते हैं, तो मैंने अपने ढंग से अपने राजस्थान को अपनी कहानियों में रखा है।
1: क्या बात है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल
1: राजस्थान को याद करते हुए सुनाएंगे या कोई और
0: हाँ,
1: गाना?
0: तो राजस्थान को याद करते हुए वो जो
1: पीतल की
0: साथ
1: मुरी
0: हिंदुस्तान,
1: गागरी।
0: हाँ बिल्कुल, पीतल की
1: तो
0: मोरी गागरी, चलो
1: चलते हैं राजस्थान की ओर और सुनते हैं यही गाना।

0: इस गाने के बाद मनीषा जी कुछ कहानियों का जिक्र छूट गया है, तो वो कौन सी कहानियां हैं जो आपकी बहुत पसंदीदा कहानियां हैं? वैसे मुझे लगता है 60-70 कहानियां हो,
1: ज्यादा ही है ममता, 100 से ज्यादा कहानियां लिख ली है।
0: तो कुछ पसंदीदा कहानियों का जिक्र कीजिए आप।
1: मेरा अभी अभी एक कहानी संग्रह आया वन्या, उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले और बहुत उसको प्रशंसा मिली, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट को हम भूल जाते हैं।
0: जी जी,
1: हम जब आदिवासी समाजों की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कहानियां हैं उसमें हैं। तो चाय बागानों में बहुत रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में मेरा रहना हुआ, तो वहां से जो चुन के मैं कहानियां लाई थी, तो वन्या में वो कहानियां हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं।
0: और दो चार कहानियों का जिक्र कीजिए जो आपके दिल के करीब।
1: जैसे उसमें वन्या में एक कहानी है नीला घर, वो मेरे दिल के करीब है, और एक कहानी है नर्सरी, वो एक गेंद कहानी कह रही है कि गेंद है तो कैसे बच्चों की नर्सरी से निकल के चाय बागान में घूमती है और उससे पूरा का पूरा चाय बागानों का आपको जो एक सामाजिक ढांचा है वो समझ में आ जाता है, आर्थिक ढांचा भी।
0: जी, और अपने श्रोताओं को बता दें कि तकरीबन 100 कहानियां हैं, मनीषा जी के 7 उपन्यास हो चुके हैं, यात्रा वृत्तांत, कथक पर कुछ किताबें, ये सब अनगिनत है। तो एक हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक इतने विशाल विराट साहित्यकार से हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बचपन के संसार में ले चलते हैं। बचपन में कैसी थी, पढ़ाई के दिनों में शरारती या फिर सीधी सादी, क्या वहीं से बीज पड़ गया था?
1: बहुत शरारती, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा कहानीकार जरूर बनता है जिसे बहाने बनाने आते हैं। तो मैंने बहुत कहानियां सुनाई हैं अपनी मम्मी को होमवर्क नहीं करने की, और मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी कि मैंने ना पढ़ाई में बहुत झंडे गाड़े हों।
0: अच्छा,
1: क्योंकि विज्ञान वैसे भी एक कठिन विषय होता है, तो लेकिन हिंदी में मुझे गोल्ड मेडल मिला
0: जी।
1: तो मैं शैतान बच्ची थी लेकिन बहुत जिज्ञासु थी, और साहित्य से मेरा प्रेम था और बचपन से मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था।
0: जी, मनीषा जी विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं कि हमें लग रहा है कि अभी और आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे लगता है जो लोग लिखना चाहते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी मिला तो। लेकिन अब बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर कभी एक लंबी बातचीत करेंगे आपसे। इस वादे के साथ आज यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी बातचीत को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी कहानीकार, उपन्यासकार और कवियत्री मनीषा कुलश्रेष्ठ से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

FM 107.2 MHz पर ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। शाम की 5 बजने को हैं श्रोताओं, बस थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में आने वाले कर्मचारियों के

0: लिए मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इस निर्णय से सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने हमेशा बड़े विजन के साथ काम किया और सत्ता की चिंता किए बिना सब्सिडी खत्म करने का निर्णय लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विशेष महत्व वाले शहर मक्का के नजदीक ये घटना चिंताजनक है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निरागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उनहालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग HS1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। मोना को व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी को कांस्य पदक मिला। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए हैं श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलों वधाइयां।
3: आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

आपने योगेश की ये रचना सुनी मुकेश की आवाज़ में, धुन सलिल चौधरी की, फिल्म का नाम था आनंद। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, छोटी सी बात फिल्म के लिए। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अगला गीत सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ, किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अमर प्रेम। इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

फिल्म संगीत आप सुन रहे थे विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से। 5:20 हुए हैं श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए एक प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रम का उपयोग है. ब्रांड पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए marketers social networking का उपयोग करते हैं. लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है. इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे. आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों. सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सब

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियां, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज्यादातर 18 या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए

0: साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी जिंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त।
1: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में।

0: बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नज़र एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है। पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओ, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
1: हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम गुड मैम।
1: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
2: यस मैम, आई लाइक इट।
1: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
4: I see beautiful

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन। इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है।
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का

0: मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का

0: होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिम्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नज़दीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।
3: गणपति बप्पा बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल

0: कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੀਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कल पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की जन सेवा को नमन करेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल महेंद्रगढ़ में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने फरीदाबाद में स्कूलों के दौरे के दौरान बच्चों के समग्र विकास पर बल दिया और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया।

0: सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इस पर सरकार का लगभग 11,339 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कल पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की जनसेवा को नमन करेगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में मीडिया को जारी एक संदेश में प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि कल शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए

0: तय की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इस पर सरकार का लगभग 11,339 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होने का अनुमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कल पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की जनसेवा को नमन करेगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में मीडिया को जारी एक संदेश में प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि कल शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अपने अपने घरों में आशीर्वाद का दिया अवश्य जलाएं।
2: 17 सितंबर हमारे लिए एक विशेष अवसर है। यह वह दिन है जब हम नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के साथ साथ राष्ट्र और समाज की सेवा में उनके 25 वर्षों के समर्पित सार्वजनिक जीवन को नमन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित रहा है। आइए इस अवसर पर हम उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर यश की कामना करें। शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने अपने घरों में आशीर्वाद का दिया जलाएं।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की जन सेवा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व पद से नहीं बल्कि सेवा और समर्पण से पहचाना जाता है। श्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा से विशेष आत्मीय रिश्ते का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के अब तक हरियाणा के 18 दौरों के दौरान प्रदेश को 86,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं मिली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ ही महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाले विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया जाएगा। आज चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि इस तरह योजना का लाभ और अधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी अवसर पर श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र श्रमिकों को भी लाभ प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 10 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और दौलताबाद के राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक स्कूल का दौरा किया। राज्यपाल ने इन स्कूलों में शिक्षा, पेयजल, साफ सफाई, बिजली सहित सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्कूलों की प्राथमिक विंग में बच्चों से सीधा संवाद किया और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने तथा जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बच्चों के समग्र विकास पर बल दिया और कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में किताबों के अलावा खेल, स्वास्थ्य, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने इसके लिए अभिभावकों और शिक्षकों को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने दोनों स्कूलों में आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थियों को वजीफा देने और स्कूलों में विकास कार्य के साथ विभिन्न सुविधाओं के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि केवल स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत बनाने का सपना साकार कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज रेवाड़ी जिले के महेश्वरी गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हर नागरिक से अपनी सेहत का ध्यान रखने और नशीले पदार्थों व अन्य नशों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने जिले के हर नागरिक से हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के तुरंत बाद श्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा शुरू की। उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकारी अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से युक्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अब नागरिकों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने महेश्वरी गांव में 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने मीरपुर गांव में ग्रामीणों की शिकायतें भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या

0: समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदनलाल खीचड़ ने आज आकाशवाणी समाचार को बताया कि आज रात्रि से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।
1: अभी जो मॉनसून ट्रफ है जो पहले फुटेल पर बढ़ी हुई थी अभी वो नीचे आई है, तो संभावना है कि आज रात्रि से मौसम में बदलाव देखने को मिलने की संभावना है। 17 और 18 सितंबर के दौरान हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की हवाओं में गरज चमक के साथ होने की संभावना है।
0: श्री खीचड़ ने कहा कि इसके बाद पश्चिमी हवाओं के चलने से मौसम शुष्क रहेगा और दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, परंतु सुबह शाम हल्की ठंड देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बारिश फसल के लिए फायदेमंद रहेगी।
1: अभी जो बारिश की संभावना है वो विशेषकर जो लेट धान लगा है वो उसके लिए फायदेमंद रहेगी, और नरमा कपास की चुनाई चल रही है तो उसमें ज्यादा बारिश का कोई प्रभाव रहेगा नहीं। किसान भाइयों को यही है कि नरमा कपास की चुनाई जल्दी जल्दी पूरी करें। सब्जियों, फलदार पौधों और अन्य फसलों में ये बारिश फायदेमंद रहेगी और सरसों की बिजाई में ये बारिश फायदेमंद रहेगी।
0: स्वास्थ्य विभाग ने सिरसा में परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के तहत आज नागरिक अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. पवन कुमार ने कहा, दंपतियों के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार और छोटे एवं खुशहाल परिवार के लिए पुरुषों की सहभागिता बेहद जरूरी है। उन्होंने पुरुष नसबंदी को परिवार नियोजन का सुरक्षित और प्रभावी विकल्प बताते हुए लोगों से इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की अपील की। फरीदाबाद में आगरा कैनाल रोड पर आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में चोरी की वारदातों में वांछित सोनू और राहुल नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति सामान्य है। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 19 सितंबर को करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय में उद्यान मेला एवं हॉर्टिक एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कल पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र को समर्पित सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की जनसेवा को नमन करेगा। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपे लैण देण ते हुण नहीं लगेगा कोई चार्ज। युद्ध नशिया विरुद्ध ते नशा मुक्ति मुहिम तहत मलोट विखे करवाया गया राज पद्धरी समागम। इस मौके डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि नशिया के खात्मे लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी। सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि सरकारी रिंदरा हस्पताल विखे स्थापित किया जा रहा है 300 बैड का ट्रोमा सेंटर। मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने दसिया कि खेडां वतन पंजाब दियां विच पहली बार शामिल की गई टैनिस बॉल टिकट ते मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच भारी मीह पैण की पेशगोई की। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपे लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होवे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे तहत आने वाले लैण देण ते व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान की मुफ्त रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चार्ज सिर्फ 2000 रुपए तो वे व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते ही लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई ऐप प्रदाता प्लेटफार्म फीस या लुकमें खर्चे नहीं वसूले जाएंगे। मंत्रालय ने बैंकों को हदायत की है कि वह यकीनी बनाने कि व्यापारी यूपीआई भुगतान

सुनिए फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को प्रीति शर्मा का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह देशभक्ति गीत के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म मिशन मजनू से। इसे गाया है सोनू निगम ने, इसे लिखा मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है रोचक कोहली ने।

0: शौक से अब मुझे गुनगुना लीजिए।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गटले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: गणपति बप्पा।
7: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग अंतराल के उस पार।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
4: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
4: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
5: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: फौजी साथियों, अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं फिल्म लम्हे का ये गाना, लता मंगेशकर, इलारून और साथियों की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिव हरी का।

आज की हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी नाटिका पर्दाफाश। निर्देशक हैं पुरुषोत्तम दारवेकर।

0: वो आ रही है।
1: कौन?
0: निष्कामिनी। किधर?
1: वो देखो।
0: आई भी नहीं कि चली गई।
1: चली गई? रोजी की कसम यार, मिस कामिनी जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने भी जिंदगी में नहीं देखी।
2: खास तौर पर उसकी काली खनेरी रेशमी जुल्फे।
3: इसे तो हीरोइन होना चाहिए उस्ताद।
0: ऐसा मत बोल यार।
1: ठीक कहते हो यार।
4: बातें करते हैं ये काली घटाएं लगती हैं।

ओह, कामनी अभी तक नहीं आई। ओह कामनी, तुम्हारी रेशमी जुल्फों का क्या कहना है? उन मचलती महकती लहराती रेशमी जुल्फों के मादक साये में सोते हुए सारी उम्र काट देने की तमन्ना है। ओह गॉड, सात तो कब के बच चुके, अभी तक नहीं आई।

0: समरेश।
1: हेलो कामनी, तुम आ गई? कितनी देर लगा दी तुमने, मैं इंतजार करते करते थक गया।
0: देर क्यों, मैं तो ठीक समय पर आई हूँ। 7 बज रहा है मेरी घड़ी में, और तुम्हारी घड़ी में
1: 7:03।
0: 3 मिनट इधर या उधर, इसे देर कहते हैं
1: कामनी।
0: तो अब गुस्सा थूक दो, मैं आ गई हूँ।
1: तुम्हारी हंसी जैसे चांदनी रात में सितार बजता है, तुम्हारी मुस्कुराहट जैसे मंदिर में चिराग झलमलाता है, तुम्हारी ये बाल,
0: ये बाल
1: ये रेशमी काली खनेरी जुल्फें तो बस कयामत ही है, आकाश से उमड़ती हुई काली काली घटाओं जैसी।
0: सच? क्या मेरे बाल इतने अच्छे हैं?
1: हाँ, सच कामनी।
2: हेलो समरेश। समरेश, गुड इवनिंग।
1: ओ रजनीकांत, ग्रेट, गुड इवनिंग। आओ भाई।
2: नहीं यार,
1: अरे भाई आओ ना।
3: अरे भाई समरेश, आजकल ईद का चांद हो गया है यार, दिखाई भी नहीं देते।
1: लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ईद का चांद तो तुम हो रहे हो यार।
3: और सुनाओ, कैसी कट रही है आजकल?
1: बस चकी चक है। अपनी सुनाओ।
3: बस तुम्हारे दया से सब ठीक ठाक है।
1: अच्छा, इनसे मिलो रजनीकांत जी। आप हैं मिस कामिनी।
3: ओहो,
1: तुम्हारी होने वाली भाभी।
3: ओहो, आपके दर्शन हुए, परम सौभाग्य है मेरा, बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे। नमस्ते भाभी जी।
0: नमस्ते।
1: इन्हें पहचानती हो कामिनी? नहीं, ये हैं मिस्टर रजनीकांत, मेरे दोस्त और हिंदुस्तान के उभरते हुए मगर होनहार कलाकार, ग्रेट आर्टिस्ट।
3: अरे नहीं यार।
0: अच्छा।
1: क्या बात है कामनी?
0: कुछ नहीं।
3: अच्छा समरेश, अच्छा मैं चलता हूँ।
1: अरे क्यों?
3: नहीं मैं चलूँगा।
1: भाई बैठो ना।
3: नहीं यार,
1: कुछ बातें होंगी, बहुत दिनों बाद मिले हो।
3: नहीं भाई, चलता हूँ।
1: नहीं भाई, नहीं। ओहो, अरे सुनो तो, रजनीकांत। ओहो मिस्टर रजनीकांत, रजनीकांत चला गया। कामनी, ये क्या बदतमीजी है?
0: ये तुम्हारा रजनीकांत ग्रेट आर्टिस्ट है?
1: बेशक, विश्वास नहीं तो खुद चलकर उसकी पेंटिंग्स देख लो।
0: बस देख लिया।
1: क्या देख लिया?
0: सीरत का अंदाजा सूरत देखकर मिल जाता है, ढोल के भीतर पोल होगा ये ढोल देखकर ही पता चल जाता है।
1: अच्छा, तो तुम उसकी सूरत देखकर हंसी थी?
0: सूरत से तो चिड़ी का गुलमुटा था ही, खैर बात यहाँ तक तो होती तो गनीमत थी, पर उसे तो इतना भी ख्याल नहीं था कि बाहर घूम रहा है या अपने घर में है।
1: मतलब?
0: आपने देखा नहीं, नाइट सूट पहने ही घूम रहा था।
1: तो ठीक है, एक कलाकार को अपना ख्याल कम रहता है, वो कला के ख्यालों में खोया रहता है, मगर तुम्हें उसके सामने इस तरह हंसना नहीं चाहिए था, वो बुरा मान गया।
0: मान जाए, मेरी बला से।
1: तुम कलाकार की कद्र करो ना करो, कम से कम उसे मेरा दोस्त समझकर कुछ ख्याल करना चाहिए था।
0: आई एम सॉरी।
1: अब इससे क्या होता है, वो तो फील करके चला ही गया।
0: तो आप उनसे माफी मांग लीजिएगा।
1: हाँ, वो तो करना ही होगा, तुमने उसका कितना अपमान किया, मुझे उससे माफी मांगनी ही चाहिए।
0: जरा अच्छी तरह माफी मांगिएगा, साष्टांग दंडवत करके नाक रगड़ते हुए, वरना क्या पता माफी ना बख्शे, ग्रेट आर्टिस्ट जो ठहरे।
1: कामनी, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होकर भी कलाकार की इज्जत करना नहीं जानती।
0: मैं? इज्जत किसकी? उस चिड़ी की? के की?
1: कामनी, मैं कहता हूँ हंसी बंद करो। कामनी,
3: कौन है भाई?
1: रजनीकांत जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ समरेश।
3: आया भाई, आया।
1: गुड मॉर्निंग।
3: मॉर्निंग, आओ भाई आओ। अच्छा ये बताओ कि आज सवेरे सवेरे आना कैसे हुआ?
1: रजनीकांत जी, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया था।
3: माफी? हाँ। और मुझसे? कमाल है, मगर किस बात की?
1: कल कामनी ने जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ।
3: अरे भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर ताकत वाला कमजोर पर हंसता है, हर अमीर गरीब पर हंसता है, हर खूबसूरती बदसूरती पर हंसती है। कामनी जी खूबसूरत हैं, हसीन हैं, मुझ लंगूर पर हंस ली तो कौन सी नई बात हो गई?
1: वो बेवकूफ है, नादान है। आप कलाकार हैं, समझदार हैं, मुझे उम्मीद है उसकी बेवकूफ

0: दोस्ती पर आप ध्यान नहीं देंगे।
1: नहीं यार,
0: मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं यार, ये माफी आफी क्या, बैठो बैठो, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ।
0: तोहफा?
1: बैठो तो सही, एक मिनट।
0: अच्छा, कितना सरल आदमी है, कैसा दरिया दिल आदमी है।
1: लो भाई समरेश,
0: ये पैकेट, इसमें क्या है भाई?
1: मेरी बनाई हुई एक तस्वीर।
0: मगर पैकेट में बंद क्यों?
1: इसलिए कि तस्वीर तुम अकेले ना देख सको। पैकेट कामनी जी के सामने खोलना, ताकि तस्वीर पर तुम दोनों की नजरें एक साथ पड़े।
0: ओह, लेकिन तस्वीर किसकी है?
1: एक बेहद खूबसूरत लड़की की।
0: कामनी की?
1: हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका खूबसूरत लगती है।
0: तो फिर किसकी है?
1: कामनी जी की।
0: मेरा अंदाज कितना सही था, मानते हो ना?
1: मानता हूँ, वही मानता हूँ।
0: तो फिर ये पैकेट यहीं खोलता
1: हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कामनी जी के सामने। और देखो तुम्हें कसम में, जो रास्ते में भी खोल कर देखो, सिर्फ कामनी जी के सामने।
0: ओफो यार, तुम तो सस्पेंस का शीश महल बना रहे हो।
1: सस्पेंस का भी अपना अलग मजा होता है।
0: इसीलिए तो कहता हूँ शादी कर लो यार, भाभी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा।
1: अरे भाई, अपनी ऐसी सूरत कहाँ की कोई लड़की हमें पसंद करे।
0: रजनीकांत, हर लड़की कामनी नहीं होती।
1: अरे नहीं यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब,
0: तुम्हारा मतलब मैं समझ गया यार। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय बाय।
1: ओके बाय बाय।
0: कामनी, कामनी।
2: कौन? समरेश, मैं आती हूँ।
0: तो फिर जल्दी करो ना।
2: अरे बाबा, तुमने तो आफत मचा दी। लो बाबा, आ गई। अब दिखाओ कौन सी नियामत लेकर आए हो।
0: इधर आओ, यहाँ मेरी बगल में बैठो।
2: लो बैठ गई, अब बोलिए।
0: ये पैकेट खोलो।
2: इसमें क्या है?
0: एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर।
2: अच्छा,
0: तुमने ये नहीं पूछा कि वो लड़की कौन है।
2: कौन है?
0: तुम।
2: मैं?
0: हाँ तुम। और आप पूछो तस्वीर बनाई किसने है।
2: किसने बनाई है?
0: चित्रकार रजनीकांत।
2: कौन? उस चिड़ी के गुलमुटे ने? तब तो बड़ी फूहड़ तस्वीर होगी। सत्यानाश कर दिया होगा उसने मेरी सूरत का, यही दिखाने के लिए इतनी दूर से आए थे।
0: लो, तस्वीर देखी नहीं और मुंह बिगाड़ना शुरू कर दिया, हो ना अहमक।
2: मैंने बिना देखे ही देख लिया है। अब आप देखिए और ये पैकेट भी आप ही खोलिए।
0: अच्छा लाओ, मैं ही खोलता हूँ। कागज की परत पर परत निकलती आ रही है।
2: देखो ना,
0: तस्वीर का कहीं नामोनिशान नहीं।
2: जी, आपको बेवकूफ बनाया है उसने। इसमें तस्वीर असीर कुछ नहीं, पैकेट में कागज ही कागज भर दिए हैं।
0: ये आठवीं परत हो गई, ये क्या मजाक है?
2: जनाबे आली, ये मजाक नहीं, मजाक का बदला है।
0: अच्छा ये बात है, तो मैं भी उसे देख लूंगा।
2: अब आप क्या देखेंगे, बड़े अच्छे दिन पर फूल बनाया है आपको।
0: ये दसवीं परत। अरे नहीं नहीं, तस्वीर है कामनी। हाँ
2: है तो?
0: बाप रे, 10 परतों के नीचे छिपा कर रखी है पट्टे ने। ये कलाकार है या किसी ग्लास फैक्ट्री का पैकर? मगर ये क्या, ये तो तुम्हारी तस्वीर नहीं। वो कहता था तुम्हारी तस्वीर है।
2: दिखाओ दिखाओ, मैं देखूं तो।
0: ये लो देखो, सूरत शक्ल तो तुम्हारी ही लगती है, पर ये बाल कहाँ गए? तुम्हारे सौंदर्य के सबसे सुंदर अंग बनाना वो कैसे भूल गया? उसका मतलब क्या है? उसने तस्वीर में तुम्हें गंजी क्यों दिखाया? इस तस्वीर के जरिए अगर उसने तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश की है, तो मैं भी उसे समझ लूंगा, समझ लूंगा। लेकिन कामनी, तुम इस तरह खामोश क्यों हो गई? तस्वीर को इस तरह घूर कर क्यों देख रही हो? तुम क्या सोच रही हो कामनी?
2: यही, यही कि ये तस्वीर कितनी सच है।
0: क्या बक रही हो, ये तस्वीर सफेद झूठ है, सरासर बकवास। या तो रजनीकांत इस तस्वीर को अंजाम देना भूल गया है, या उसने जानबूझकर तुम्हारा अपमान किया है।
2: न उसने भूल की है और न अपमान, उसने झूठ के पर्दों में छिपे सच का पर्दा फाश किया है।
0: क्या कह रही हो तुम कामनी, समझ पे नहीं आता। कहां तुम, रूप का लहराता हुआ सागर, तुम्हारे बाल,
2: ओह माय गॉड,
0: उमड़ती हुई घटाओं का हुस्न, और कहां ये तस्वीर की

0: खूबसूरत कंची लड़की।
1: और यही झूठ के पर्दों में छिपा हुआ वो सच है जिसे रजनीकांत के सिवा और कोई ना देख सका।
0: कामिनी।
1: हाँ समरेश, मेरी जिन मचलती महकती लहराती रेशमी जुल्फों के मादक साए में सोते हुए सारी उम्र काट देने की तुमने तमन्ना की थी, उन फरेबी जुल्फों को सिर्फ रजनीकांत पहचान सका, तुम नहीं, तुम भी नहीं।
0: तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे बालों की खूबसूरती को कौन छुटला सकता है?

0: छिपी जुल्फों को सिर्फ रजनीकांत पहचान सका, तुम नहीं, तुम भी नहीं।
1: तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे बालों की खूबसूरती को कौन छुटला सकता है? या तो वो अंधा होगा या पागल।
0: वो कलाकार रजनीकांत है समरेश, मैं सचमुच गंजी हूं। देखो देखो
1: कामिनी।
0: सच देखकर डर गए?
1: तुम्हारे बाल नकली हैं।
0: ये बालों का वेग मैंने विलायत से मंगवाया था।
1: तुम वाकई गंजी हो? ओह माय गॉड।
2: पर्दाफाश। हवा महल में अभी आप कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी यह नाटिका सुन रहे थे। निर्देशक थे पुरुषोत्तम दारवेकर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: इस प्रोग्राम दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
2: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: हर जोखिम का दावा, घटो घट प्रीमियम ते वधेरे भुगतान का वादा। नजदीकी कृषि दफ्तर, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकारित बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र विच अपनी इच्छा नाल रजिस्ट्रेशन करवा सकते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तुहाडियां फसलां दा संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: किसान वीरों ते भैणों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम बिपल सुमन, लेके हाजिर हो चुका प्रोग्राम फार्म टू सिटी। ते अज दे साडे इस प्रोग्राम दा विशा है किसानां नूं सिद्धे खपतकार नाल जोड़ना। हुण किसान खपतकार दे नाल जुड़ना चाहुंदा है, पर रस्ते च बहुत सारियां मुश्किलां आउंदियां ने। बहुत सारिया सरकारी स्कीमा भी होंगे ने जिन्हों के बारे जाते किसान नूं नहीं पता होंदा, ते या उन्हां दे नाल जुड़ना किवें है इस बाबत जानकारी नहीं होंगी। सो इस सब दे बारे दे विच जानकारी सांझी करन दे लई साडे नाल अज स्टूडियो दे विच माहर मेहमान जुड़ चुके ने जी, जिन्हां दा नाम है डॉक्टर खुशदीप तरनी जी, जो कि प्रोफेसर ने बिजनेस मैनेजमेंट पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे। डॉक्टर खुशदीप जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम फार्म टू सिटी दे विच।
7: बहुत बहुत जी धन्यवाद सारे स्रोतों ने मेरे वालों निघी ते सत्कार भरी सत श्री अकाल
6: जी। सो डॉक्टर साहब, समय समय दे नाल साडे खेती संबंधी लोड़ींदे बदलाव आए ने, सो इस बदलाव दे बारे दे विच ते सब तो पहला असीं चाहुंदे आ कि तुसीं जानकारी साडे स्रोतों नाल सांझी करो
7: जी। बिल्कुल, देखो समय दे नाल हर एक खेती दे विच बदलाव जरूरी हो जाते हैं, तो जिहड़ी गल है खेती खेत्र ते भी लागू होंदी है। खेती संबंधी जिहड़ियां समस्यावां ने उहदे च सानूं वड्डी चुनौती इस समय दी है कि किसान वीरां दी आमदन दे विच इजाफा किवें कीता जावे। इस मंतव की पूर्ति लई कई सारे उपराले दरकार ने, जिवें कि खेती तो खेती व्यापार तक का सफर, जिहदे तहत असीं किसान वीरां नूं खेती संबंधित फैसलों में व्यापारक नज़रिया अपनाउण की सलाह दिंदे आ। देखो जिहड़े कम्म ने खेती वाले रह जाणे ने, कम्म नहीं उहनां नूं कोई अपना बदल लैणा, पर आप जिहड़े भी फैसले लैने खेती संबंधित उह सानूं व्यापारक नज़रिया जरूर अपनाउणा चाहीदा है। इस तों इलावा जिहड़ा दूसरा सफर है वह है कि खेती जिनसां तों खेती उत्पाद तक का सफर, जिहदे तहत असीं किसान वीरां अते खेती व्यापार उद्यमियों नूं खेती जिनसां विच मुल वधेरा करके खेती उत्पाद

0: एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम फार्म टू सिटी दे विच। साडा अज दा विशा है किसानां नूं सिद्धे खपतकार नाल जोड़ना। सो इस बाबत साडे नाल जानकारी सांझी कर रहे ने डॉक्टर खुशदीप गरनी जी। सो डॉक्टर साहब तुसीं दस्सिया कि किवें असीं प्रोसैसिंग कर सकते हैं फूड की, उस तो बाद असीं वधिया तरीके नाल उसकी पैकेजिंग भी करनी है, पर हुण इत्थे मसला यह हो जाता है कि किसान वीर ते भैणां सोचदियां ने कि इहदे लई कि सानूं कोई सबसिडी या कोई सरकारी स्कीमां भी ने जिन्हां दे जरिए सानूं थोड़ी जी होर सौखाई हो जाए ते असीं आसानी नाल खपतकार तक पहुंच सकीए।
1: बिल्कुल जी, देखो इस खेते दे विच किसान वीरां नूं सपोर्ट करने लई बहुत सारियां स्कीमां साडे कोल हैगियां ने। उहदे विच सानूं पहली गल आउंदी साडे कोल, असीं कहिंदे ई नैम, इलैक्ट्रॉनिक नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जाणी कि राष्ट्रीय किसान मंडी। तां इह जिहड़ी ई नैम है इहदी शुरुआत अप्रैल 2016 दे विच होई, तां इहदी जिहड़ी तर्ज सी कि इक मंडी इक देश दी तर्ज ते इह प्रोग्राम शुरू कीता गया, जिथे असीं इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दे राहीं अपने आप नूं रजिस्टर कर सकदे हां ते अपनी चीज सिर्फ पंजाब दे विच नहीं सगों बाहरले सूबियां तक भी वेच सकते हैं
0: जी।
1: तां इह जिहड़ी साडी ई नैम स्कीम हैगी है, इह इस समें देश दीआं लगभग 1656 मंडियां इहदे नाल जुड़ियां होईआं ने ते 247 खेती जिनसां ने उहदा इत्थे वपार असीं कर सकदे हां, जिहदे विच कणक हो गया, चौल हो गया, मक्की हो गई, अगे कणक दा आटा हो गया, बेसन हो गया जां सरों दा तेल हो गया, तां इह सारे 247 खेती जिनसां ने जिहदा असीं वपार कर सकदे हां ते पंजाब दे विच भी लगभग 156 मंडियां ने जिहड़ियां इस प्रोग्राम तहत जुड़ियां होईआं ने। ते जे आपां गल करिए FPO दी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उह बहुत वधिया जरिया है। उहदे विच जिहड़े FPO दे मैंबर ने उह अपनी FPO नूं, असीं उहनूं कहिंदे जी ONDC, ओपन नैटवर्क फॉर डिजिटल कमर्स, तां उह असीं उहदे च रजिस्टर कर सकदे हां ते सिद्धे ही असीं खपतकार तक पहुंच कर सकदे हां। ते कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां ई नैम दे विच शामिल नहीं, तां उह चीज़ां भी असीं जिहड़ी साडी ONDC उहदे ते कर सकदे हां। इह तों इलावा PMFME स्कीम है जी, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसैसिंग एंटरप्राइजेस, उहदे तहत असीं खपतकार तक पहुँच कर सकते हैं। तो नवाड एजेंसियां ने जिहड़ियां उह चलाउंदियां ने कि आपां ट्रेड फेयर कह लो जां मेले ला कह लो, तां उहदे च किसानां नूं सिद्धे तौर ते खपतकारां तक जोड़दियां ने
0: जी।
1: तां साडे कोल कई सारियां स्कीमां मौजूद ने। अपनी मंडी दी आपां गल करदे हां कि उहदे च जिहड़े किसान वीर ने अपने फल ते सब्जियां सीधे तौर ते खपतकारां नूं जाके वेच सकदे ने
0: जी।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे हैं,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य

0: अर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने।
1: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
1: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल

0: रुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੇ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
2: ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ। ਫਿਲਮ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਵਾਇਫ, ਗੀਤ ਹਸਨ ਕਮਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਰਵੀ ਕਾ।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना, गीत SH बिहारी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गाना भूपेंद्र हजारिका की आवाज में है। फिल्म का नाम है रुदाली, गीत गुलजार का है, संगीत भूपेंद्र हजारिका का।

0: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम कहानी फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: शर्म आती

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के ज़माने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

की लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राण लाल मेहता और दीपक बाहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूज़िक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत

प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडू हवलदार या माला घीवन जाला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, सोच रही थी कि उसके आने से पहले मेरी जिंदगी कैसी थी। एक रेगिस्तान जैसी, बेरंग, खामोश और खाली। लेकिन जब से वो आया, मेरे खामोश दिल में जैसे किसी ने सितार छेड़ दिया। वो जो उदासी के बादल थे, वो छट गए हैं अब। अब जब तुम मेरे साथ हो, जिंदगी में बहार ही बहार है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए शाम के समय समुद्र की उस सुगंध की तरह है, जो एक शांत खिड़की से अंदर आती।

जिंदगी को परिभाषित करना मुहाल है, पर मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। कहीं रंगीन सा ख्वाब है तो कहीं कभी ना खत्म होने वाली एक रूमानी यात्रा। हाँ, जो तुमसे शुरू हुई है और तुम्हीं पर आकर खत्म। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी भावनाओं को महसूस करने के लिए एक अतिरिक्त दिल की जरूरत है।

इस रूमानी सफर का हर मोड़, हर नजारा अब सिर्फ तुम्हारे होने से हसीन है। सिर्फ तुम और मैं और हमारी ये हसीन यात्रा। कहते हैं हम सफर प्यारा हो तो सफर का मजा मंजिल पाने से ज्यादा होता है, और हसीन सफर का हर पल इबादत बन जाता है। मैं तुमसे उसी तरह प्यार करती हूँ जिस तरह मैं चांद से प्यार करती हूँ जिसकी आत्मा से प्रकाश निकलता है।

शायरी गीत के सफर में आप हैं मंदाकिनी के साथ। इस हसीन यात्रा के साक्षी हैं ये गगनचुंबी देवदार के पेड़, जो मानो हवाओं के साथ लहराकर अपनी खुशी बयां कर रहे हों। हवाओं का ये शोर और पक्षियों का ये कलरव, आहा, देवदार, हवाएं, पक्षी और वो चांद, ये सभी इस यात्रा के हमसफर हैं। कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में ये सफर हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ को छू रहा है। पता है ना, इसी तरह आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं।

शायद तुम अनजान हो, पर मैं हर रात शाम की तन्हाई में भोर की पहली किरण में तुम्हारा नाम गुनगुनाती हूँ। हाँ, गुनगुनाती हूँ। मैंने अपनी बंद आँखों से तुम्हें महसूस किया है। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी उल्फत की यह कशिश कभी महसूस होती है?

हाँ, हमें रिश्तों की नुमाइश नहीं चाहिए थी, वो जुड़ाव चाहिए था जो भीतर तक ठहर जाए। मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारी भुजाओं की चौड़ाई नहीं नापी, तुम्हारे भीतर की कोमलता को महसूस किया, संवेदनशीलता देखी, तुम्हारे मौन को सुना। और हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे को खुरच खुरच कर देखा, है ना? भीतर से निकली मिट्टी को जांचा है हमने, परखा है हमने, तब जाकर एक दूसरे को चुना है हमने।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ Sector 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: प्रोग्राम सुरसांझ तक अगला गीत सुनोगे इस छोटे जे ब्रेक तो बाद।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: गणपति बप्पा
5: बप्पा नूं पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानूं गणेश उत्सव दीआं लख लख वधाईआं।
0: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां नाल सजिया प्रोग्राम सुरसांझ।

0: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰਸਾਂਝ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय

0: और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। श्रोतियों 11:05 हो चुके ने ते हुण साडे केंद्र तों अज दी सभा दे प्रोग्रामां दा प्रसारण इत्थे खत्म हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते अपने प्रोग्रामां नाल हाजिर होवांगे। हुण दिओ इजाजत। जय हिंद।